0: visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
1: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
0: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
2: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
3: मिस इंडिया लाए हैं लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
2: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
4: Did you see my new couch? We picked it up from Incanto in Italy. And that dining table? It's from Catalan Italia.
5: Ye Mrs. Chopra na keeps showing off her furniture just because her husband's business picked up recently. When did she visit Italy? Chopra saab, so how was Italy?
6: Italy? Oh, all the stylish furniture is from Italmode Furniture on 685 New Jersey, 17 South in Paramus, New Jersey. They carry stylish premium Italian brand like Estero Milano, Pietro Costantini and much more.
5: What? Italmode Furniture in Paramus? Aji sunte ho? To abhi chalo, Italmode Furniture pe. Agli party, hamare ghar pe.
7: Italmode Furniture, 685 New Jersey, 17 South, Paramus, New Jersey. Or shop online at italmodefurniture.com and have it delivered anywhere in the US.
8: जय गुरुदेव। गायत्री चेतना सेंटर पिस्कैटवे आपने अने आपना परिवार ने गुरु पूर्णिमा अने रुद्राभिषेक महोत्सव मा स्नेह भर्यु आमंत्रण आपे छे। शनिवार 1 ऑगस्टे सवारे 10 वागे शिवजी रुद्राभिषेक अने सांजे 5 वागे विराट दीप यज्ञ। रविवार 2 ऑगस्टे सवारे 10 वागे 251 कुंडिया गायत्री महायज्ञ। शांत कुंज हरिद्वार ना पूज्य संतो द्वारा वैदिक विधि मुजब अनुष्ठान अने डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी नी पावन उपस्थिति। 732-357-8200। जय गुरुदेव।
9: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
10: Tera kya hoga, Kalya?
11: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
10: Ab mirchi kha.
12: Radio Mirchi, it's hot.

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: आपने अपने बॉयफ्रेंड को उसके चीज केक में कुत्ते के बिस्किट बनाकर दिए एंड आपके बॉयफ्रेंड को पता नहीं चला, आपको शर्म नहीं आई?
2: The secret box.
1: जो भी आपका सीक्रेट कन्फेशन होता है ना, उसे मैं जब रोशिफाई कर देती हूँ तो वो नॉर्मलाइज हो जाता है. और अगर आप अपनी गंदी गंदी हरकतों को नॉर्मलाइज करना चाहते हो, व्हाई डोंट यू हिट मी अप एंड वी विल टॉक अबाउट इट, क्योंकि मैं हूँ आपकी ब्रोशी, मेरा नाम है मिर्ची रोशी और मेरे साथ है मेरी मिस्ट्री कॉलर. हाय बेब.
3: हाय,
1: हाउ आर यू?
3: आई एम डूइंग फाइन नाउ.
1: इतने दुखी क्यों साउंड कर रहे हो? यू आर लाइक, हाय रोशी, मैं क्या बताऊँ मेरे साथ क्या क्या हो रहा है, हुआ क्या?
3: एक्चुअली मैं बहुत नर्वस हूँ क्योंकि मैंने ये चीज कभी आज तक किसी से कन्फेस नहीं की. तो
1: I totally get it, but you know what? You can like totally tell me your confession, और मैं आपको judge भी नहीं करूँगी and at the end of it आपको roastify भी कर दूँगी, ठीक है?
3: I know. Okay. I just don't want to get judged because मैंने मेरा एक boyfriend था, ex boyfriend actually. तो मैंने उसको, हमने काफी time date किया और फिर मुझे पता चला वो एक number का बीट था और उसने मुझे चीट किया काफी सारी लड़कियों के साथ. तो मैंने उसके ऊपर रिवेंज लेने के लिए उसकी सिस्टर के बॉयफ्रेंड को सेड्यूस किया और हम दोनों ऐसे एक कैजुअल डेट पे भी मिले थे और उसको इवेंचुअली ये चीज पता चली कि उसकी सिस्टर का हार्ट ब्रेक. तो इसलिए
1: मैं आई एम सो स्पीचलेस. ये आपके दिमाग में आया कैसे? कौन सी वाहियात गंदी पिक्चर देख रहे थे आप, जापानीज, कोरियन या फिर यूरोपियन? क्योंकि इंडिया में तो किसी का दिमाग ऐसे नहीं चलता है ब्रो.
3: मैं एक्चुअली उसके सिस्टर को और उसके बॉयफ्रेंड को दोनों को फॉलो करती थी इंस्टाग्राम पे. तो वहां से मुझे लगा कि मुझे इसको ऐसे पेन देना है जिसे याद रखे लाइफ टाइम.
1: ब्रो देख, आई एम वेरी हैप्पी कि मैं स्टेट हूँ और सिंगल हूँ, ताकि मुझे कहीं तुम मिल भी गई तो हम कभी डेट नहीं करने वाले, क्योंकि ऐसा रिवेंज तो मैं हैंडल नहीं कर सकूंगी. ऐसे स्मोकिंग हॉट रिवेंज के लिए आपको रोशिफिकेशन चाहिए. आपकी सोए हुए कॉन्शियस, क्योंकि आप गिल्टी तो फील नहीं कर रहे हो, तो सोए हुए गिल्ट कॉन्शियस के लिए श्योर यू हैव इट.
4: यू've been roshified.
1: बेबी, जो तूने मेरे को जूसी कन्फेशन बताया ना, सीरियसली किसी और को मत बताना, ठीक है?
3: नहीं बताऊंगी.
1: सीरियसली मत बताई हो. और अगर आपकी भी जिंदगी में ऐसे ही कोई कन्फेशन है, ऐसे वाला, दिस हॉट बर्निंग कन्फेशन, आई डू वॉन्ट टू नो योर स्टोरी मॉर्निंग ग्लोरी एंड टेल मी अबाउट इट. हिट मी अप इंस्टा पर या FB पर. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. सो डू व्हाटएवर यू हैव टू डू, लेकिन कहीं मत जाना, क्योंकि वापस तो यहीं है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: But Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
1: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
2: मिस इंडिया लाए हैं लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
1: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
3: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लायन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
4: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
5: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
4: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
6: Oh no!
7: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट, ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स।
8: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
9: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइंस की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का, साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इसलिन, न्यू जर्सी।

0: की गल करनी है?
1: तेरे मेरे बारे
0: की?
1: बचपन तो लेके आज तक तू ही है।
0: बचपन की बात कोर्सी।
1: अरे 10 साल हो गए।
0: अच्छा मैं लेट हो रही हूँ, फोन से गल करती हूँ।
1: अच्छा चल फिर फोन नंबर दे दे।

0: Hot Jeeturaj. Only on Mirchi. It's hot.
1: Hi, my name is Peter Parker.
2: Okay then, Spider-Man brand new day aa gayi hai and for God's sake please theater mein ja kar hi dekho is what Jeeturaj will tell you kyunki is film mein kahi chhoti chhoti aisi cheeze hain especially jab characters aapas mein baat karte hain to unki whispers unka pyar unka gussa wo theater mein jo maza deta hai wo kahi bhi nahi dega and for God's sake kisi se bhi story mat suno don't take any spoilers film mein kahi aisi cheeze hain jo tere ko itna surprise kar jayengi
3: spoilers have free life cycle
2: I just can't begin to tell you I'll tell you the biggest thing. Spider-Man में विलन कौन है? यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर सफोकेट होने लगता है? क्यों स्पाइडरमैन अपने आप में घुटने लगता है? ये रीजन उस विलन पर जाकर रुकता है। I'm not going to tell you who it is. Also, तेरे में से कई लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात जेकब बैटनो, also MJ अर्थात जेंडाया and Peter Parker यानी टॉम हॉलैंड. In this film, it's a little different. In fact, I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो ऑल्सो देयर इज अ पर्टिकुलर सीन बिटवीन जॉन बर्नथॉल अर्थात फ्रैंक कैसल एके पनिशर एंड टॉम हॉलैंड अर्थात पीटर पार्कर जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा ऑल्सो इफ यू हैव किड्स अराउंड यू एंजॉय इट फुल्ली क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं तालियां बजाते हैं एंड इट्स ऑल रिक्वायर्ड इन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बट आई मस्ट गिव यू अ डिस्क्लेमर अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्म नहीं देखी है तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतूराज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माय रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतूराज जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई है जीतूराज ने वो क्या है ओके आई टोल्ड यू इंस्टाग्राम मिर्ची जीतूराज फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बाय द वे कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या जेंडाया एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है फॉर गॉड्स सेक ब्रो अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रेकमेंडेड बाय जीतूराज विद फोर मिर्चीज
0: साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
4: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
5: प्यारी ब्राइड्स क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर
6: मिस इंडिया लाए हैं लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज
5: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इसलिन
7: दिस ड्राइव टाइम इज ब्रॉट टू यू बाय तनिष्क ज्वेलरी हर ड्राइव बनेगी यादगार
8: तेरा क्या होगा कालिया
9: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार
8: अब मिर्ची खा
10: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: उनो तो आपने खेली होगी एंड यू नो व्हाट रिवर्स उनो डज. आप एक पत्ता फेंकते हो, आपका अपोनेंट एक पत्ता फेंकता है एंड बोथ योर मूव्स आर कैंसल्ड आउट. बट दैट्स व्हाट हैपेंड इन रियल लाइफ. दिस हैपेंड विद अ लैटिन अमेरिकन वुमन. उनका नाम काफी कंफ्यूजिंग है बट इफ यू रियली मस्ट नो इट इज यादिरा गुलेर्मो गार्सिया. इनके पति को एक ऑर्गेनाइजेशन ने किडनैप कर दिया विच वॉज एन अंडरवर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन. शी डिडंट रीच आउट टू द पुलिस और एनीथिंग. इस अंडरवर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के गैंग लीडर की माँ को इन्होंने ढूंढा और उसे किडनैप कर दिया. शी कॉल्ड द गाय एंड सेड इफ यू सेंड माई पति सेफ आई विल सेंड योर मम्मी सेफ. एनीथिंग हैपन्स टू माई पति तेरी माँ के साथ भी वही हश्र होगा. दोनों में डायरेक्ट नेगोशिएशन हुई एंड बोथ द मदर एंड द हस्बैंड वर रिलीज्ड अनहार्म्ड. दैट इज कॉल्ड बीइंग अ रियल क्वीन. और अगर आपने अपने रिलेशनशिप में अपने बंदे के लिए या बंदे के अगेंस्ट आफ्टर ही चीटेड ऑन यू यू डिड समथिंग दैट ड्रास्टिक लाइक रिवर्स उनो, व्हाई डोंट यू हिट मी अप एंड वी विल टॉक अबाउट इट. मेरा नाम है मिर्ची रोशनी. नाम की स्पेलिंग है ROCHIE एंड आई एम द गर्ल इन लव विद लव. फाइंड मी ऑन द ग्राम या फेसबुक एंड व्हाइल यू डू दैट कहीं मत जाना जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.
0: 92.7 FM, रेडियो मिर्ची, न्यू जर्सी. ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2. इट्स हॉट.

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: मेरा भाई और मैं रिसेंटली ये डिस्कस कर रहे थे कि जब एयर होस्टेसेस आपको बताती हैं कि सीट बेल्ट कैसे पहनना है और आगे के दो द्वार और पीछे के दो द्वार एटसेट्रा एटसेट्रा कब खुलेंगे एग्जिट इमरजेंसी में, तो आई वाज लाइक कि कोई उन्हें देखता नहीं है और उन्हें कितना खराब लगता होगा कि वो डेली डे आफ्टर डे सेम बातें कर रहे हैं और उन्हें कोई तवज्जो नहीं दे रहा है. तो ऐसे करण कितना खराब लगता होगा ना उनको, क्योंकि अगर मैं एयर होस्टेस होती तो मुझे भी खराब लगता. सो करण बीइंग करण, अब क्योंकि वो भी एक बहुत ही सेंसिटिव इंडिविजुअल है, ही सेड कि रोशी अगली बार हम फ्लाइट लेंगे ना तो मैं भी एयर होस्टेस को फुल ध्यान दूंगा. सो अब हमने फ्लाइट ली, उसने एयर होस्टेस को बहुत ध्यान दिया, वो मतलब गौर से देख रहा है एयर होस्टेस को. एयर होस्टेस को लगा कि करण उसे इसलिए ध्यान से देख रहा है बिकॉज करण को एयर होस्टेस पसंद आ गई. अब एयर होस्टेस वापस करण को द लुक दे रही है, उसे एक्स्ट्रा ग्लासेस ऑफ पानी दे रही है, एक सैंडविच पकड़ाने के बाद कहती है सर वुड यू लाइक सम मोर सैंडविचेस. और करण हमारा डोडो है, करण और एक मेंढक में ज्यादा फर्क नहीं है व्हेन इट कम्स टू इमोशनल एवोल्यूशन. सो ही इज लुकिंग एट मी एंड सेइंग ये मुझे ज्यादा खाने को क्यों दे रही है, क्या मैं मैलनरिश्ड लग रहा हूँ. आई वॉज लाइक तुझ पे लाइन मारी है बट इट्स पॉइंटलेस, तेरा कुछ नहीं हो सकता. बट यू नो व्हाट आई डिस्कवर्ड आउट ऑफ दिस एंटायर इंसिडेंट, कि अगर आप किसी को बहुत अटेंशन दे दो ना, अपनी 100% अटेंशन, तो वो इंसान जो भी होगा जैसा भी होगा जिस रिलेशनशिप में होगा उसका थोड़ी देर के लिए ही सही आप पे दिल जरूर आएगा. इसे ट्राई करके देखो, टेल मी इफ इट वर्क्स फॉर यू एंड देन आई विल पास ऑन अ थैंक यू टू करण. ठीक है, एंड टू डू दैट यू कैन फाइंड मी ऑन द ग्राम या फेसबुक. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. सो नाउ गो अहेड, डू व्हाटएवर यू हैव टू डू, लेकिन कहीं मत जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
1: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है। फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
2: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
1: मॉरल ऑफ द स्टोरी, नंबर वन सिर्फ एक ही होता है,
3: एक ही होता है।
1: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: ये जो बारिश सीन्स हो रहे हैं ना हमारी जिंदगी में, दैट इज प्रॉम्प्टिंग मी टू थिंक अबाउट ओनली एंड ओनली लव. बिकॉज ऑफ विच आई एम आस्किंग यू कि आपकी कभी जिंदगी में ऐसे लव मैरिज टाइप सिचुएशन हुई है? अगर हाँ, हिट मी अप विद योर स्टोरी मॉर्निंग ग्लोरी इंस्टा पर या FB पर. लेट्स गेट टॉकिंग. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE, एंड व्हाइल यू फाइंड मी, मुझे अक्षय मैक्सिमस ने अपना नंबर भेजा. नाउ लेट्स फिगर आउट व्हाट इज हिज लव स्टोरी. हेलो.
2: Yeah, it's Roshi, right?
1: Yes, it is. Hello, Akshay Maximus.
2: Oh my God.
1: How are you?
2: I was not expecting this call.
1: Shut up.
2: I have given no number, but I was not expecting you to call me. Oh my God, nice.
1: I'm
2: Hi,
1: here.
2: How are you?
1: I'm very good. How are you?
2: I'm good as well.
1: Where am I talking to you from? What part of the world are you in?
2: I'm from Maharashtra.
1: Okay.
2: From Pune only.
1: Oh, nice. So, आपका लव मैरिज हो चुका है या आपका लव चल रहा है या मैरिज होने वाला है? व्हाट्स द स्टोरी?
2: हो गया, वो खत्म, टाटा बाय बाय. मैरिज हो गया.
1: मैरिज हो गया, टाटा बाय बाय. लेकिन मैरिज अभी एग्जिस्ट कर रहा है या मैरिज को भी टाटा बाय बाय?
2: हाँ हाँ हाँ भाई, कैसे कैसे, आजकल का रिलेशन था यार, हो गया,
1: एग्जिस्ट कर रहा
2: है.
1: व्हाट्स द स्टोरी मॉर्निंग ग्लोरी? वाओ, कांग्रेचुलेशंस.
2: कॉलेज रोमांस.
1: अच्छा ठीक है, अब प्रॉपरली बता कि क्या हुआ तुम्हारी लव स्टोरी में.
2: तो ऑब्वियसली माय गर्ल वाज इन जूनियर फॉर मी. हम कॉलेज में थे, मैं साइंस में था, ये आर्ट्स में, नहीं सॉरी कॉमर्स में थी. तो ये पार्किंग में बैठे रहते थे, टाइम पास करते रहते थे. मैं एज यूजुअल दोपहर का कॉलेज होता था, मस्त ऐसे गाड़ी पे आता था, शाइनिंग वाइनिंग मार के. तो क्या वैसे आंखों आंखों में प्यार हुआ, प्यार हुआ. फिर कॉलेज में थोड़े झगड़े हुए, पार्किंग में मारामारी हुई लड़की के ऊपर से.
1: आर यू सीरियस? दिस इज सो फिल्मी.
2: या एग्जैक्टली. फिर बंदी को सामने रख के ऐसे कबूल किया गया, तेरे को कौन पसंद है, ये लड़का या ये.
1: Shut up.
2: भाई तब से फिर बंदी अपनी हुई है, तो अभी तक अपनी हुई है. लास्ट ईयर फिर हमने घर पे बात वगैरह चालू किया कि शादी करते हैं, हो गया रिलेशन को एक 7 साल हो गया, 7-8 साल हो गया. तो अभी आगे का स्टेप कर लेते हैं. शी इज वर्किंग, आई वॉज वर्किंग, सब अच्छे से चल रहा था. फिर क्या, थोड़ा सा वो कास्ट इशू बीच में आता है. तो एज यूजुअल वो आया. फिर फाइनली टचवुड, पापा वाज देयर. फिर उन्होंने सब बोला ठीक है, लड़की के घर वाले नहीं आ रहे तो नहीं आ रहे, लड़की तो आ रही है ना. बोले यहाँ पे भी बंदी ने साथ दे दिया. फिर मेरे पापा ने शादी कर दी मेरी, फिर खत्म. फिर अभी क्या, पुणे में प्रॉपर सेटल्ड है. वो अभी ऑफिस गई है, मेरा वर्क फ्रॉम होम है.
1: अच्छा, बट टेल मी समथिंग, तो उसके पेरेंट्स, अब तेरी शादी को 1 साल हो गया, उसके पेरेंट्स हैव दे काइंड ऑफ कम बैक एंड अभी बात नहीं?
2: हाँ हाँ, दूसरे दिन ही पलट गए उसके पापा. 1 महीने में घर में आके खाना वाना खा के कर दिए. मैं उसको टॉन्ट मार दू, तेरे पप्पा को शादी का खर्चा नहीं उठाना था, इसलिए.
1: पता है मैं एक नॉर्मल कॉल में ऐसा नहीं करती हूँ, बट आई एम गोना डू दिस.
3: यू've been roshified.
1: Oh my God, I love your love story. This is so cool. It was amazing talking to you, Akshay Maximus. And when your wife comes back home, उसको मेरी तरफ से एक बहुत बड़ी हगी पुची, everything, the works there.
2: Yeah,
4: sure. With Mirchi, fresh maal.
5: लव लॉस और होप का म्यूजिकल सफर वे जुनून.

0: इस गाने को गाया है सुबोध शर्मा ने, म्यूजिक दिया है मिथुन ने और लिरिक्स लिखे हैं सईद कादरी ने। फिल्म आवारा पंटू से सुनते रहिए बेजुनून, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: एंजॉय योर गोल्डन डेज विद कल्याण ज्वेलर्स। गेट अप टू 50% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस। विजिट कल्याण ज्वेलर्स एट ओक ट्री रोड, इज़लन, न्यू जर्सी। कंडीशंस अप्लाई।
2: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा।
3: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

है ना रात को सोया जाता है, उलझा रहता हूँ यादों में, मुझको बड़ा रोना आता है। भूल गया मैं खाना पीना, जिंदगी को हंस के जीना, तेरे चक्कर में मेरा एक बोतल रोज का पीना।

आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ. ये स्टोरी मैं सिर्फ और सिर्फ उन्हें सुनाती हूँ जिन्हें मुझे लगता है वो मेरे पोटेंशियल लवर्स हो सकते हैं. एंड इफ दे डोंट गेट एक्साइटेड विद द स्टोरी देन आई नो दैट दे आर नॉट फॉर मी. ये स्टोरी एक रियल स्टोरी है, एक सरियलिस्ट पेंटर की जिनका नाम है सेल्वाडोर डाली. ये एक स्पैनिश आर्टिस्ट हैं, थे एक्चुअली. ही पास्ड अवे ऑन द 23rd January 1989. तो अब आपको टाइम पीरियड भी समझ आ गया ये कब हो रहा था. उस समय सेल्वाडोर के एक बहुत अच्छे दोस्त थे जो एक पोएट और एक आर्टिस्ट भी थे. इनका नाम लॉर्का था और लॉर्का अपनी वाइफ और बेटे के साथ सेल्वाडोर डाली के साथ समर वेकेशन स्पेंड करने उनके स्पैनिश घर में आए. अब 2 महीने के अंदर अंदर सेल्वाडोर को लॉर्का की बीवी गाला से बेहद मोहब्बत हो गई. ये बात उन्होंने गाला से उन 2 महीने में तो नहीं कही, लेकिन व्हेन दे वर ऑल लीविंग अपने घर वापस जाने के लिए, तो गाला पूरे घर में डाली को ढूंढती रही और वो उन्हें नहीं मिले. फाइनली शी वेंट लुकिंग फॉर हिम इन द स्टूडियो जहां वो पेंटिंग करते थे. और वहां स्टूडियो के कोने में बिल्कुल अपने चेहरे को दीवार की तरफ किए वो एक चेयर पर बैठे थे. ही हैड पेंटेड हिमसेल्फ इंटायरली ब्लू और उनके कान में एक मुरझाया हुआ फूल था. तो गाला ने जब उन्हें देखकर ये पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो सेल्वाडोर, हम लोग जाने वाले हैं. ही लुक्ड इट होर मुड़कर एंड सेड कि अगर तू मुझे छोड़कर चली जाएगी तो मेरी हालत आज भी ऐसी है और जिंदगी भर ऐसी ही रहेगी. तो अगर सच में तू मुझे खुश देखना चाहती है और कहीं तेरे दिल में मेरे लिए प्यार है तो प्लीज रुक जा. एंड गाला ने उसी वक्त जाकर लॉर्का से कहा कि यार आई नो कि मैं तुम्हारे बेटे की माँ हूँ एंड आई लव आवर चाइल्ड, लेकिन मैं डाली को इतनी मोहब्बत करती हूँ कि मैं ये सब छोड़ दूँ. एंड इवेंचुअली गाला एंड डाली बिकेम लवर्स फॉर लाइफ. इनफैक्ट गाला जब पास्ट अवे, क्योंकि वो डाली से काफी बड़ी थी, तो वो सेल्वाडोर डाली की बाहों में ही मरी थी. अब आप मुझे बताओ कि क्या आप एक ऐसी लव स्टोरी जानते हो विच इज एज ब्यूटिफुल एज दिस वन. अगर हाँ, देन हिट मी अप विद योर नंबर एंड आई विल कॉल यू राइट अवे. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. फाइंड मी ऑन द ग्राम या फेसबुक एंड व्हाटएवर यू डू. कहीं मत जाना जाना, क्योंकि अगर तुम चले जाओगे तो आज भी ऐसी हूँ, जिंदगी भर ऐसी रहूंगी, उदास और अकेली तुम्हारे बिना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: बंदा आपकी दूसरी डेट पर आपसे कॉन्वर्सेशन कर रहा है, लेकिन आपसे बात करते करते उसके हाथ उसके पॉकेट में चले जाते हैं. एंड दैट काइंड ऑफ मींस कि वो अब आपसे कॉन्वर्सेशन तो कर रहा है, लेकिन उसका माइंड कहीं और चला गया. बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट्स के हिसाब से जब कोई इंसान, इट कुड बी अ गर्ल और अ गाय, आपके सामने अपने आर्म्स फोल्ड करते हैं अक्रॉस देयर चेस्ट या फिर अपने हाथों को पॉकेट्स में डालते हैं, इसका ये मतलब होता है दैट वो आपसे क्लोज्ड ऑफ है, दूरी बनाकर रहना चाहते हैं. और अगर ऐसे इंसान को आपको लग रहा है यू आर गोइंग टू टेक देम टू द बेडरूम, यू विल रियली हैव टू यूज अ लॉट ऑफ टिप्स एंड ट्रिक्स. लेकिन यू नो व्हाट, मेरी बेस्टी को ऐसे लोग बहुत पसंद आते हैं, बिकॉज उसके लिए ये एक चैलेंज है कैसे एक क्लोज्ड इंसान को एक खिला हुआ कमल बना दे. दैट जस्ट साउंड्स सो रॉन्ग. अगर आपने भी अपनी डेट पर किसी को ऐसे क्लोज्ड बॉडी लैंग्वेज यूज करते हुए देखा है एंड यू वांट टू टॉक अबाउट इट, व्हाई डोंट यू हिट मी अप इंस्टा पर या FB पर, बिकॉज माय बॉडी लैंग्वेज फॉर यू विल Never be closed. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. So go ahead baby, hit me up, do what you're so good at doing. लेकिन कहीं मत जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, it's hot.

0: कालिया
1: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
0: अब मिर्ची खा।
2: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
3: मिर्ची फ्रेश माल।
4: इमरान हाशमी के सॉन्ग्स और प्लेलिस्ट हिट्स दोनों का रिश्ता पुराना है। उनकी अगली म्यूजिकल ऑफरिंग है ये आवारा।

इस गाने को आवाज दी है अरिजीत सिंह ने, म्यूजिक दिया है अमाल मलिक ने और लिरिक्स लिखे हैं रश्मि विराग ने। आवारापन 2 से सुनते रहिए ये आवारापन, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: आपने अपने बॉयफ्रेंड को उसके चीज केक में कुत्ते के बिस्किट बनाकर दिए एंड आपके बॉयफ्रेंड को पता नहीं चला, आपको शर्म नहीं आई?
2: The secret box.
1: जो भी आपका सीक्रेट कन्फेशन होता है ना, उसे मैं जब रोशिफाई कर देती हूँ तो वो नॉर्मलाइज हो जाता है. और अगर आप अपनी गंदी गंदी हरकतों को नॉर्मलाइज करना चाहते हो, व्हाई डोंट यू हिट मी अप एंड वी विल टॉक अबाउट इट, क्योंकि मैं हूँ आपकी ब्रोशी, मेरा नाम है मिर्ची रोशी और मेरे साथ है मेरी मिस्ट्री कॉलर. हाई बेब.
3: हाई,
1: हाउ आर यू?
3: I'm doing fine now.
1: इतने दुखी क्यों साउंड कर रहे हो? You are like, hi Roshi, मैं क्या बताऊँ मेरे साथ क्या क्या हो रहा है, हुआ क्या?
3: Actually, मैं बहुत nervous हूँ क्योंकि मैंने ये चीज़ कभी आज तक किसी से confess नहीं की, तो
1: I totally get it. But you know what? You can like totally tell me your confession और मैं आपको judge भी नहीं करूँगी and at the end of it आपको roshify भी कर दूँगी, ठीक है?
3: I know. Okay. I just don't want to get judged because मैंने मेरा एक boyfriend था, ex boyfriend actually. So मैंने उसको, हमने काफी time date किया और फिर मुझे पता चला वो एक number का beep था और उसने मुझे cheat किया काफी सारी लड़कियों के साथ. तो मैंने उसके ऊपर revenge लेने के लिए उसकी sister के boyfriend को seduce किया और हम दोनों ऐसे एक casual date पे भी मिले थे.

0: क्या खा लिया
1: सरदार? मैंने आपका नमक खाया सरदार।
0: अब
2: मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: लिस्नर है, मैं बैक टू बैक गाना सुनेगा,
2: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
3: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: ये एक ऐसा फ्रूट है जिसकी सिर्फ शेप ही सजेस्टिव नहीं है, ये फ्रूट इट्सेल्फ आपकी बहुत मदद कर सकता है, स्पेशली अगर आपके रिलेशनशिप में पैशन की कमी है. इंसिडेंटली मेरी जिंदगी में आजकल बहुत सारे लोग हैं जिनकी जिंदगी में पैशन है ही नहीं. केला खा लो आप एक, और वैसे भी ये बहुत ही सस्ता फ्रूट है. आई टेल यू व्हाई, क्योंकि बनाना में ना बहुत ज़्यादा पोटेशियम होता है और उसके अलावा बहुत सारे दूसरे केमिकल्स भी होते हैं जो आपके मूड को लिफ्ट कर सकते हैं. इट कैन मेक यू मोर कॉन्फिडेंट, और आपके अंदर जो एनर्जी बूस्टिंग हॉर्मोन्स होते हैं उसे भी हाई कर देता है. बेसिकली ऑल यू नीड टू डू इज ईट अ बनाना, और उसके बाद All you have to do is eat a banana and then love banana. That makes no sense. Just eat a banana. It's really good for your relationship. And uske baad bhi agar aapko tips and tricks ki zarurat hai, why don't you hit me up Insta par ya FB par. Mera naam hai Mirchi Roshi. Naam ki spelling hai R-O-C-H-I-E. Achha, aur agar aapko banana pasand hai ya nahi, doesn't matter. Kyunki jiske paas love hai, uske paas sab hai. And I love you loads.

92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: Surin ke saath, only on Mirchi. It's hot.
2: The show starts in 5, 4, 3, 2, 1, go.
3: Hər Friday Bollywood ke liye is a new start. Ek nayi kahani, lekin hər kahani नई याद बन के नहीं रहती, और शायद इसलिए आज हम एक अजीब ईरा में जी रहे हैं। फिल्में भी वापस आ रही हैं, कैरेक्टर्स भी वापस आ रहे हैं, सॉन्ग्स भी वापस आ रहे हैं, क्योंकि इंडस्ट्री को भी पता है यादें बनाना उन्हें दोबारा बेचने से कई ज्यादा मुश्किल होता है। अगस्त शायद इसी सवाल का जवाब लेकर आ रहा है। यू गॉट टॉक्सिक, यू गॉट आवारापन, यू गॉट बंटवारा 1947, तो क्या 2026 सिर्फ हिट्स देगा या फिर हमें कुछ ऐसी फिल्में और गाने भी देगा जिनके बारे में हम 10 साल बाद भी बात करेंगे। इसी होप के साथ वेलकम टू द मिर्ची टॉप 20, इंडिया का डेफिनेटिव बॉलीवुड म्यूजिक काउंटडाउन, एंड आई एम सुरेन सुंदरम।
4: नंबर 20।

0: a banger by Jasmine Sandler's on number 20 from Dhurandhar. Aur number 19 par debut kar raha hai Aankhon Se Tune Ye Kya Keh Diya. एक ऐसे गाने का रीमेक इसके ओरिजिनल वर्जन को किसी मेकओवर की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। और मजेदार बात यह है कि ये जो फिल्म है भाई तेरा स्टार है, उसके अंदर हीरो राघव जुयाल डायरेक्टर से खुद पूछते हैं क्लासिक गाना रीमेक क्यों कर रहे हो, और जवाब मिलता है रिकॉल वैल्यू। बस अफसोस इतना सा है रिकॉल तो सिर्फ ओरिजिनल का रह जाएगा, नया वर्जन सिर्फ उसकी डीजे मिक्स कॉपी बन के रह जाएगी। फिर भी काउंटडाउन पर उसकी जगह बन रही है। This is आंखों से तूने क्या कह दिया from भाई तेरा स्टार है starring राघव जुयाल। इस हफ्ते गाना नंबर 19।
1: नंबर 19।

0: Gentlemen's Club. If you want to play, fall in line, little boy. Because you can't run away. There's nowhere to hide. There's nowhere to go. I've shattered the ceiling. There's blood on the floor. A fight to the finish. Or a kiss goodbye. Get your last wish, baby. Because you're gonna die.
1: Have you noticed? जब जज्बात बहुत बड़े हो जाते हैं तो लोग बोलना कम कर देते हैं, गाने चला देते हैं। पिछले कुछ दिनों में देश ने बहुत कुछ देखा, बहुत सारी आवाजें सुनी, बहुत सारे नारे सुने, लेकिन एक बात ने मुझे सबसे ज्यादा हैरान किया। हर जगह वही तीन गाने सबको सुनाई दे रहे थे, एक जो इस देश की पहचान बन गया है,

दूसरा जॉब हर मुश्किल घड़ी में इस देश को मोटिवेट करता है। और फिर ये तीसरा और आखिरी गाना जो अपने अंदर की आवाज को झंझोड़ता है। सोचिए, ये तीनों गाने आज के नहीं है, 2 दशक से ज्यादा पुराने हैं। फिर भी जब इस जेनरेशन को अपनी फीलिंग्स को आवाज देनी थी, इन्होंने कोई नया गाना नहीं ढूंढा, वापस इन्हीं गानों तक लौटाए। एक बार जो गाना आवाज बन गया, उस आवाज को दबाना मुश्किल होता है। हर जेनरेशन उन्हीं गानों को अपना लेती है जो उनके इमोशंस को उनसे बेहतर समझ ले। इस हफ्ते मेरा रीवाइंड ट्रैक ऑफ द वीक AR रहमान की वो कॉम्पोजिशन जिसने हर बार एक नई जेनरेशन के साथ फिर से जन्म लिया, फिर से उस पीढ़ी की आवाज बनी। टॉप 20 रीवाइंड।

0: ground. Goalie goes out of the ground.
1: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
2: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
1: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
3: एक ही होता है।
1: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
4: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट। नंबर 10।

0: बस यही तो कमाल है हिंदी फिल्म म्यूजिक का। कुछ सेकंड पहले तक आरी आरी जैसे गानों के साथ खून तेजी से दौड़ रहा होता है, आपके अंदर इतना एड्रेनलिन भर जाता है कि लगता है कि दुनिया जीत लोगे, और अगले ही पल अगला ही गाना उसी दिल को धीरे से पकड़ लेता है, और आज कुछ ऐसा ही होने वाला है। पिछले हफ्ते मैंने आपसे एक प्रॉमिस किया था कि आवारापन का वो गाना जिसका इंतजार सिर्फ फिल्म के फैंस नहीं पूरा म्यूजिक सर्किट कर रहा था, इस हफ्ते वो काउंटडाउन पर जरूर डेब्यू करेगा। तो बस प्रॉमिस पूरा करने का वक्त आ गया है, लेकिन उससे पहले आई नीड टू से दिस दैट आई लव अमाल मलिक। He's like my younger brother, और अमाल की कही हुई एक बात मेड मी फील सो सो प्राउड अबाउट हिम।
1: I'm the SRK of music and romance, who I believe another who soul travels just like me is Mithun. I think you know, like mere senior hai, but he's the only one I feel. And I'm har jagah sab bolta hu, and egoistically nahi ki I'm the SRK of music and romance. Main hu, so I believe the best. But someone who always hum log mein ek yani competition nahi rahega, but I think someone who touches my soul on from that level is him. Wo utni purity se he also works. So we are the only two people who are trying to do in our generation purest work.
0: यार कितनी खूबसूरत बात है। हर कंपोजर का अपना एक सिग्नेचर होता है, अपनी एक मेलेडी होती है, अपना एक इमोशन होता है, और जब एक कंपोजर दूसरे कंपोजर की सोच को इतनी इज्जत दे तो समझ लीजिए म्यूजिक सिर्फ कॉम्पिटिशन नहीं कॉन्वर्सेशन बन गया है। और इस कॉन्वर्सेशन का नया चैप्टर आज ऑफिशियली शुरू होता है ऑन द चार्ट्स, डेब्यूइंग स्ट्रेट ऑन नंबर 9 रश्मि विराग के लव्स, अमाल मलिक की कॉम्पोजिशन और अरिजीत सिंह की आवाज, ये आवारापन नंबर।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट।

शरारत की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ पता क्या है? मधुबंती बागची और जैस्मिन सैंडलर्स की आवाज नहीं, उसका मुखड़ा भी नहीं। इस गाने की सबसे बड़ी ताकत उसकी स्ट्रेंथ है उसके वो पहले कुछ सेकंड्स, जहाँ गाना बस शुरू होता है और आपका दिमाग तुरंत बोलता है, ओह यस, दिस इज शरारत।

Am I right or am I right? यार मुझे लगता है कि म्यूजिक की दुनिया चुपचाप बदल रही है। आज गाने का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा उसका हुक बन गया है, क्योंकि वही रील्स पर और शॉर्ट्स पर ट्रेंड करता है। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था, द कंपोजर्स गाने में सबसे ज्यादा प्यार उसकी शुरुआत पर खर्च करते थे। एक इंट्रो जो बिना एक भी लफ्ज बोले अपनी पहचान बना लेता था।

बस इतना ही, ना वोकल्स ना लिरिक्स। फिर भी अगर आप 2008 में थे तो आपको पता था हाथू है। शायद इसलिए कुछ इंट्रोस सिर्फ म्यूजिक नहीं होते, वो मेमोरी के फिंगरप्रिंट्स बन जाते हैं। एक बार सुन लो और सालों बाद भी इसे पहचानने में कभी गलती नहीं होगी। वैसे ही इस हफ्ते नंबर 4 पर जो गाना है उसकी पहचान भी उसका इंट्रो ही था, चुनरी चुनरी। लेकिन जिस गाने की हम इतनी बात कर चुके हैं, जिस गाने का मैं इतना जिक्र कर चुका हूं, दैट इज गोइंग टू बी माय पिक ऑफ द वीक। जन्नत की पूरी एल्बम में शायद सबसे अंडररेटेड ट्रैक, लेकिन मेरे लिए सबसे प्यारा। वही इंट्रो जो दिल पर अब भी दस्तक दे रहा है, सॉन्ग बाय माय ऑल टाइम फेवरेट सिंगर के प्रीतम दा की धुन। हाँ तू है।

हर दूसरी हिट फिल्म का सीक्वल आ चुका है वेलकम, धमाल, दे दे प्यार दे, देन यू आल्सो गॉट सम कल्ट क्लासिक्स लाइक बॉर्डर एंड गदर। एंड लगता है कि बॉलीवुड को एक ही चीज का नशा है एंड दैट इज फ्रेंचाइजेस। लेकिन इतने सारे सीक्वल्स के बीच एक नाम है जिसकी कमी हर साल और ज्यादा महसूस होती है और छुपती है। धूम जैसे फिल्म कहां थी, ये स्टाइल था, एटीट्यूड था। पहली धूम में जॉन अब्राहम ने बाइक्स को कूल नहीं बनाया, उन्हें एस्पिरेशनल बना दिया। सबको एक सुपर बाइक चाहिए थी। फिर आए ऋतिक रोशन और धूम 2 ने फ्रेंचाइज को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया। डूड, ऋतिक नेवर लुक्ड एज सेक्सी एज ही डिड इन धूम 2। एंड उसके बाद 7 साल बाद सिर्फ खामोशी। यस, आमिर खान की धूम 3 आई जरूर, लेकिन वो दीवानगी वापस नहीं आई। और हाल फिलहाल आप सुन रहे होंगे कि इस सीरीज को रीबूट करने की प्लानिंग चल रही है, रणबीर कपूर का नाम डिस्कस हो रहा है। फिर ये पता लगता है दैट स्क्रिप्ट की वजह से रणबीर भी एग्जिट कर गए। सच कहूं, मुझे नए विलन की बिल्कुल फिक्र नहीं है। मुझे सिर्फ इतना लगता है कि जिस फ्रेंचाइज ने हिंदी सिनेमा को इतना स्वैग और इतना कूल दिया, उसे सिर्फ कमबैक नहीं, ब्लॉकबस्टर कमबैक मिलना चाहिए। सो YRF, टेक योर टाइम, जितना वक्त लेना है आप ले लो, बस धूम को स्पाई यूनिवर्स वाले रास्ते ना ले जाना। तब तक YRF का दिया एक और सुपरस्टार, जिसने शुरुआत की थी विद बैंड बाजा बारात, आज बॉक्स ऑफिस पर सबकी बैंड बजा रहा है। एक बार फिर माय मोस्ट फेवरेट रोमांटिक सॉन्ग ऑफ लास्ट ईयर, इट्स स्टिल नंबर 1, दिस इज गहरा हुआ स्टारिंग रणवीर धुरंधर सिंह। नंबर 1।

0: एक और हफ्ता और गहरा हुआ फिर से नंबर वन। सच कहूं लगता ही नहीं कि धुरंधर का मैजिक बिल्कुल फेड हुआ है। इस एपिसोड में वैसे मुझे बहुत मजा आया, मेमोरीज की बात की, नई ट्यून्स की बात की और उन कहानियों की भी जो सिर्फ फिल्मों में नहीं हम सबके अंदर रहती हैं। आई होप यू लाइक द एपिसोड एज वेल। अगली बार फिर मिलेंगे हियर ऑन द मिर्ची टॉक 20। अंटिल देन सरेन ओवर एंड आउट।
1: के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

में गाओ है रेला ऊंचा पाओ यू पटका है ये देसी घमेला कैसा रहा यका यकी नाचो नाचो नाचो, नाचो।

0: 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार.
1: अब मिर्ची खा.
3: Radio Mirchi. It's hot.
4: Let's go crazy.

0: 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: Purani Jeans. Mirchi Shreya ke saath. Only on Mirchi. It's hot.
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

कौन सा वाला डायलॉग मारूं आज, पुष्पा आई हेट टीयर्स पुष्पा, या फिर मोगैम्बो खुश हुआ, या फिर ये वाला बोलूं मेरे पास माँ है, या फिर आज खुश तो बहुत होगे तुम। तो आज ना उन मूवीज के आइकॉनिक डायलॉग जो जब बड़े पर्दे पे देखे गए तो पूरे इंडिया ने सदियों तक रिपीट किए, सो इन आइकॉनिक डायलॉग्स के पीछे की कहानियां मैं लेकर के आई हूँ। ये डायलॉग्स कैसे लिखे गए, कब लिखे गए, किसने लिखे एंड व्हाट वाज द सिचुएशन जिनमें इनको लिखा गया। अब जैसे कि पुष्पा आई हेट टीयर्स, इसके पीछे की कहानी क्या है बताऊंगी। गाने सुनकर के वापस आओ, दिस इज मी श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

1972 मूवी का नाम अमर प्रेम, मूवी के हीरो राजेश खन्ना, मूवी की हीरोइन शर्मिला टैगोर। और इस मूवी में राजेश खन्ना की जुबान से निकलता है, पुष्पा आई हेट टियर्स पुष्पा, एक ऐसा डायलॉग जो आज भी तुम अपनी गर्लफ्रेंड को मारते हो या फिर वाइफ को मारते हो या दोस्तों को एक ना एक बार तो बोल के जरूर दिखाते हो। तुम्हें पता है कहानी इस पूरे डायलॉग की? सो ये जो चार अल्फाज थे, पुष्पा आई हेट टियर्स पुष्पा, ये एक्चुअली में कभी एक सेपरेट डायलॉग था ही नहीं। ये लाइन एक बहुत ही लंबे डायलॉग का पार्ट थी, लेकिन सिर्फ एक इंसान ऐसे थे जिन्होंने सिर्फ इन चार अल्फाजों में पोटेंशियल देखा, और वो थे मूवी के डायरेक्टर शक्ति सामंत। उन्होंने इस डायलॉग को काटा और एक अलग से शॉट लिया राजेश खन्ना साहब का, एकदम उनके ट्रेडमार्क स्टाइल में। और फिर क्या था, ये चार शब्द पूरी इंडिया में क्रांति ले आए। रिलीज होने के जस्ट नेक्स्ट डे हर कोई ये डायलॉग मारते हुए सुनाई दे रहा था। पुरानी जीन्स पर दिस इज मी श्रेया। अगला कौन सा डायलॉग होगा बताऊंगी वापस आऊंगी।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: लिस्नर है मैं बैक टू बैक गाना सुनेगा
2: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

ये एक ऐसा डायलॉग है जो तब भी चलता था और आज भी चलता है, कितने आदमी थे। पुरानी जीन्स पर आज बात हो रही है आइकॉनिक डायलॉग्स के पीछे की कहानियों की। सो शोले फिल्म का ये तीन वर्ड का डायलॉग कितने आदमी थे आज भी हमें जोक्स में मिल जाएगा। तुमने कभी ना कभी अपने कलीग्स पे मारा होगा, कभी फैमिली में मारा होगा। आपको पता है अमजद खान जी पे पिक्चराइज्ड इस एक डायलॉग के पीछे कितने रीटेक्स हुए थे? नहीं पता ना, इसके पीछे की कहानी बताऊंगी। लेकिन अभी नहीं, आपको मुझे ऐसे सस्पेंस में छोड़ के जाने में बहुत मजा आता है, क्योंकि तब मुझे पता होता है आप इधर उधर कहीं नहीं हिलने वाले हो। तो वापस आओ, विल लेट यू नो द एंटायर स्टोरी। पुरानी जीन्स पर मेरा नाम है श्रेया।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में। अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
2: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
1: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
3: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
1: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है, एक ही होता है। जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

पूरे 40 टेक्स लगे थे इस 3 वर्ड के डायलॉग को पिक्चराइज होने में। हाँ जी, तो आज बात हो रही है फिल्मों के आइकॉनिक डायलॉग्स की। कितने आदमी थे, डू आई नीड टू टेल यू कि ऑफकोर्स शोले फिल्म का डायलॉग था, अमजद खान पे पिक्चराइज था। फिल्म के डायलॉग्स लिखने वाले सलीम खान और जावेद अख्तर, फिल्म को बनाने वाले रमेश सिप्पी, ये पिक्चराइज होना था अमजद खान पे। अब इस एक डायलॉग में अमजद खान की आंखों में सांभा की इंसल्ट और डर दोनों को एक साथ आना था। अमजद खान ने 40 रीटेक्स दिए हैं और तब जाकर के सलीम जावेद को और रमेश सिप्पी साहब को उनके एक्सप्रेशंस पसंद आए थे। पुरानी जीन्स पर आज ऐसे ही आइकॉनिक डायलॉग्स के पीछे की कहानियां विद मी श्रेया, तो बस कहीं भी मत जाना।

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: 92.7 FM. Radio Mitri, New Jersey. South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: Purani Jeans. Mirchi Shreya ke saath. Only on Mirchi. It's hot. आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.
2: मैंने

उस जमाने की फिल्मों के आइकॉनिक डायलॉग्स के बारे में बात कर रहे हैं, जो उस जमाने से लेकर के इस जमाने तक रिपीट किए जाते हैं। हम सब ने कभी ना कभी अपने बॉस को चढ़ाने के लिए, कभी अपने दोस्त को चढ़ाने के लिए, कभी अपने भाई बहनों को चढ़ाने के लिए जरूर बोला है, आज खुश तो बहुत हो गए तुम। सो दीवार फिल्म का ये जो डायलॉग था, ये अमिताभ बच्चन जी के लिए ही लिखा गया था। ये डायलॉग एक मंदिर में शूट होना था। जब अमित जी ने इस डायलॉग को पढ़ा, उन्होंने इसको शूट करने से पहले एक शर्त रखी। वो शर्त बहुत इंटरेस्टिंग थी, जिसको यश चोपड़ा साहब मानना नहीं चाहते थे, पर क्योंकि अमित जी जिद पे अड़ गए थे तो उनको माननी पड़ी। बताऊंगी इस एक्सक्लूसिव कंडीशन के बारे में, लेकिन तुम्हें तो पता ही है वो जो मैं करती हूँ, कुछ गानों के उस पार, सो दैट यू डोंट गो एनीवेयर एल्स। पुरानी जींस पर मैं हूँ श्रेया।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

अमिताभ बच्चन जी ने जब ये डायलॉग पढ़ा, उन्हें ये समझ में आ गया था कि ये उनकी जिंदगी का सबसे आइकॉनिक डायलॉग हो सकता है। उन्हें ये समझ में आ गया था कि ये एक डायलॉग उनको ऑडियंस के दिल में जगह दिला सकता है। कैरेक्टर का नाम विजय, सीन शिव जी का मंदिर, डायरेक्टर यश चोपड़ा साहब, एन एक्टर अमिताभ बच्चन, डायलॉग आज खुश तो बहुत होगे तुम। जब अमित जी ने इस डायलॉग को पढ़ा अपनी स्क्रिप्ट में, वो इस डायलॉग से बहुत इम्प्रेस हुए। इसको शूट करने के लिए उन्होंने यश चोपड़ा साहब के सामने एक कंडीशन रखी। उन्होंने कहा कि ये बीच रात में शूट होगा और क्रू का कोई भी मेंबर इस सीन को शूट करने के लिए वहां नहीं होगा, होंगे तो सिर्फ अमिताभ बच्चन और यश चोपड़ा साहब। 15 रीटेक्स लगे जब अमित जी ने खुद के इस डायलॉग की पिक्चराइजेशन को अप्रूव किया। उन्हें ये पता था कि आज तक किसी भी फिल्म में किसी भी एक्टर ने ऊपर वाले को चैलेंज करते हुए कोई डायलॉग नहीं बोला था। ही न्यू इट वॉज गोइंग टू बी ह्यूज। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ श्रेया और आज ऐसे ही आइकॉनिक डायलॉग्स के पीछे की कहानियां चलती रहेंगी। तो बस गाने सुनकर के फौरन वापस आओ।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। 1 2

अच्छा, जब आइकॉनिक डायलॉग्स की बात ही हो रही है फिल्मों के, तो रेट्रो फिल्मों की बातें तो हो ही रही हैं। क्यों ना एक ऐसे आइकॉनिक डायलॉग की बात करें जो कि एक 90s की फिल्म का था। 1994 में आई अंदाज अपना अपना, उसका एक डायलॉग इतना फेमस हुआ कि लोग आज भी उसे रिपीट करते हैं, तेजा मैं हूँ। ये डायलॉग निकला था परेश रावल जी के मुंह से। आपको पता है, अंदाज अपना अपना की कोई भी बाउंड स्क्रिप्ट नहीं थी, एज इन एक एक डायलॉग एक एक लाइन नहीं लिखी गई थी। इनफैक्ट एक्टर्स जब एक्टिंग करते थे ना, तो कई बार उस सीन को, उस डायलॉग को इम्प्रोवाइज कर देते थे। और ये वाली जो लाइन थी, तेजा मैं हूँ, ये परेश रावल ने इस सीन को शूट करते करते ऐसे ही निकाल दिया था। फिर क्या, ये 90s की सबसे पॉपुलर फिल्म बनी, जो आज भी अगर किसी चैनल पे आती है तो हम लोग बिना देखे नहीं उठ पाते। पुरानी जींस पर आज ऐसे ही डायलॉग्स की बातें विद मी श्रेया।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: हाय माय नेम इज पीटर पार्कर।
2: ओके देन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे आ गई है एंड फॉर गॉड सेक प्लीज थिएटर में जाकर ही देखो इज व्हाट जीतू राज विल टेल यू, क्योंकि इस फिल्म में कई छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं, स्पेशली जब कैरेक्टर्स आपस में बात करते हैं तो उनकी विस्पर्स, उनका प्यार, उनका गुस्सा, वो थिएटर में जो मजा देता है वो कहीं भी नहीं देगा। एंड फॉर गॉड सेक किसी से भी स्टोरी मत सुनो, डोंट टेक एनी स्पॉयलर्स। फिल्म में कई ऐसी चीजें हैं जो तेरे को इतना सरप्राइज कर जाएंगी।
3: स्पाइडर्स हैव थ्री लाइफ साइकल।
2: आई जस्ट कांट बिगिन टू टेल यू। I'll tell you the biggest thing, Spider-Man में विलन कौन है? यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर सफोकेट होने लगता है, क्यों Spider-Man अपने आप में घुटने लगता है, ये रीजन उस विलन पर जाकर रुकता है। I'm not going to tell you who it is. Also, तेरे में से कई लोग ये expect करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात Jacob Batno, also MJ अर्थात Zendaya and Peter Parker यानी Tom Holland, in this film it's a little different. In fact, I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है, क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो। ऑल्सो देयर इज अ पर्टिकुलर सीन बिटवीन जॉन बर्नथॉल अर्थात फ्रैंक कैसल एके पनिशर एंड टॉम हॉलैंड अर्थात पीटर पार्कर, जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा। ऑल्सो इफ यू हैव किड्स अराउंड यू एंजॉय इट फुल्ली, क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं, तालियां बजाते हैं, एंड इट्स ऑल रिक्वायर्ड इन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। बट आई मस्ट गिव यू अ डिस्क्लेमर, अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म, तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा। फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतू राज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है। ओ ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माई रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतू राज, जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई है जीतू राज ने, वो क्या है? ओके आई टोल्ड यू इंस्टाग्राम मिर्ची जीतू राज। फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। बाय द वे, कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या जेंडाया एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है? फॉर गॉड सेक ब्रो, अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो। दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रेकमेंडेड बाय जीतू राज विद फोर मिर्चीज।
0: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

उस जमाने की फिल्मों के ऐसे आइकॉनिक डायलॉग्स जो इस जमाने तक चलते हैं। तुमने भी कभी ना कभी किसी ना किसी से तो ये जरूर कहा होगा, मोगैम्बो खुश हुआ। फिल्म का नाम मिस्टर इंडिया। ये डायलॉग लिखने वाले जावेद अख्तर साहब, फिल्म को डायरेक्ट करने वाले शेखर कपूर, और ये डायलॉग जिन पे पिक्चराइज था अमरीश पुरी यानी मोगैम्बो। अच्छा, शेखर कपूर इस फिल्म में हमेशा मोगैम्बो के कैरेक्टर को लेकर के ना काफी डाउटफुल रहते थे। जब जावेद अख्तर साहब ने डायलॉग लिखा मोगैम्बो खुश हुआ तो वो शेखर कपूर के पास गए और उन्होंने उनसे पूछा कि तुम्हें ये डायलॉग कैसा लगा। शेखर कपूर को ये डायलॉग कुछ खास पसंद नहीं आया। उन्होंने जावेद साहब से कहा कि मुझे इसमें कोई डेप्थ नहीं लग रही, बहुत ही सिंपल प्लेन है कि हाँ मोगैम्बो खुश हुआ। उसके बाद जावेद साहब ने शेखर कपूर से क्या कहा, विच मेड हिम कीप दिस डायलॉग इन द फिल्म, अभी बताऊंगी। वापस आओ श्रेया के साथ ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: Purani Jeans. Mirchi Shreya ke saath. Only on Mirchi. It's hot.
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: करता है।
1: मूवी के हीरो अनिल कपूर, लेकिन ज्यादा पॉपुलर हो गए अमरीश पुरी साहब, क्योंकि डायलॉग जो उन्होंने बोला था वो बन गया था आइकॉनिक डायलॉग। इंडिया का हर बंदा आज भी ये डायलॉग बोलता है, मोगैम्बो खुश हुआ। मिस्टर इंडिया का ये डायलॉग लिखने वाले थे जावेद अख्तर साहब। मूवी को डायरेक्ट करने वाले थे शेखर कपूर। शेखर कपूर इस डायलॉग से कुछ खास खुश नहीं थे, वो तो इसे रखना भी नहीं चाहते थे। जावेद अख्तर साहब गए और शेखर कपूर को ये डायलॉग बोल के दिखाया कि शेखर तुम्हें ये डायलॉग कैसा लगता है। उन्होंने कहा कि भाई मुझे तो इस डायलॉग में मजा ही नहीं आया, ये तो आप इमोशन बोल दे रहे हो, क्या मोगैम्बो खुश हुआ जैसे कि शेखर कपूर खुश हुआ। फिर पता है जावेद साहब ने क्या कहा कि जब भी कपिल देव ग्राउंड पे छक्का मारेगा तो पब्लिक चिल्लाएगी मोगैम्बो खुश हुआ। जब भी कोई तीन पत्ती खेलेगा और उसके तीन इक्के आएंगे तो वो इंसान खुश होके कहेगा मोगैम्बो खुश हुआ। शेखर कपूर को ये बात समझ में आई, फिर इस डायलॉग की डिलीवरी को अमरीश पुरी साहब तो कहां से कहां ले गए। एंड दैट्स हाउ दिस बिकेम एन आइकॉनिक डायलॉग। पुरानी जीन्स पर उस जमाने की और भी बातें और भी गानों के साथ, तो बस कहीं भी मत जाना। मैं हूं श्रेया।

0: 103.3 FM HD2. It's hot.
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

इस फिल्म की स्क्रिप्ट लेकर के सलीम साहब, जावेद साहब, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स के पास गए और सबने मना कर दिया था। पुरानी जीन्स पर हाय, मैं हूँ श्रेया और आज आइकॉनिक डायलॉग्स की बात हो रही है। दीवार की बात कर रही हूँ मैं, जिसमें था मेरे पास माँ है। अच्छा, ये स्क्रिप्ट लेकर के ना वो लोग बहुत सारे डायरेक्टर्स के पास गए, प्रोड्यूसर्स के पास गए, लेकिन उस टाइम पे सलीम जावेद साहब एक ह्यूज अमाउंट कोट कर रहे थे, क्योंकि उनकी जंजीर ऑलरेडी हिट हो गई थी, शोले ऑलरेडी हिट हो गई थी फॉर द स्क्रिप्ट ऑफ दीवार। सो दीवार की स्क्रिप्ट के लिए वो 8 लाख रुपए मांग रहे थे। कहते हैं गुलशन राय, जो कि इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे, जब उन्होंने ये स्क्रिप्ट सुनी तो सबसे ज्यादा अगर उन्हें कुछ टच किया वो था मेरे पास माँ है। ये लाइन पढ़ते ही वो रोने लगे। अच्छा, जावेद साहब और सलीम साहब की ये जो जर्नी रही है ना, उस पे एक बहुत ही खूबसूरत डॉक्यूमेंट्री आई है ऑन नेटफ्लिक्स, विच इज कॉल्ड एंग्री यंग मैन सीजन 1। उस पे जावेद साहब ने ना इस डायलॉग के पीछे की एक बहुत ही वैलिड, बहुत ही लॉजिकल कहानी बताई है। क्या है वो, अभी बताऊंगी। कम राइट बैक ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
2: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
1: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
3: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
1: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
4: एक ही होता है।
1: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

तो जावेद साहब का मानना था कि भाई अच्छाई तब तक नहीं पता चलती जब तक उसके सामने बुराई ना हो। पुरानी जीन्स पर हाय, मेरा नाम है श्रेया और बात कर रहे हैं आइकॉनिक डायलॉग्स की ऑफ हिंदी सिनेमा। उसमें एक इम्पोर्टेंट डायलॉग जो हमेशा के लिए दर्ज है, हम कभी ना कभी जरूर मारते हैं, और वो है मेरे पास माँ है। दीवार फिल्म के लिए जब जावेद साहब ने ये डायलॉग लिखा था ना, तो ही सेड कि ये स्टैंड अलोन डायलॉग नहीं हो सकता था। इस डायलॉग का जो शशि कपूर ने कहा निरूपा रॉय के लिए अमिताभ बच्चन से, ये तब तक वैल्यू नहीं करता जब तक अमिताभ बच्चन इससे पहले तक अपने मटेरियलिस्टिक चीजों को नहीं गिनवाते। तो इसीलिए जावेद साहब ने पहले अमिताभ बच्चन को डायलॉग दिए, मेरे पास घर है, बंगला है, गाड़ी है, तुम्हारे पास क्या है। और तब जब ये डायलॉग आता है कि मेरे पास माँ है, दैट वॉज वेरी वेरी इम्पैक्टफुल। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ श्रेया और आज ऐसे ही आइकॉनिक डायलॉग्स के पीछे की कहानियां चलती रहेंगी। तो बस गाने सुन करके फौरन वापस आओ।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: तेरा क्या होगा कालिया?
3: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
2: अब मिर्ची खा।
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

पुरानी जीन्स पर। श्रेया का जाने का टाइम हो गया है और जब मैं जाती हूँ तो आपको तो पता ही है मैं अपने साथ गाड़ी में आपको बैठा ले जाती हूँ। और कहाँ जाते हैं? अच्छा, आज का हाईवे हिट उन लोगों पे है जो ना जुबान से ज्यादा बात नहीं करते, उनको सामने वाले की नजरों से सब पता चल जाता है। पूरा कमरा भरा हो सकता है, पूरा हॉल भरा हो सकता है लोगों से, लेकिन इनकी बातें नजरों से चल रही होती हैं और शायद कुछ ऐसा कह रही होती हैं। बहुत कम लोगों की नजरें आपको प्यार के काबिल समझ पाती हैं। अगर ऐसी कोई नजर आपके पास है ना, उसे संभाल के रखना। दिस इज मी श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: होगा कालिया।
1: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
0: अब
2: मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: इस गाने को गाया है और कंपोज किया है विशाल मिश्रा ने और लिरिक्स लिखे हैं राजशेखर ने। फिल्म टॉक्सिक से सुनते रहिए तबाही, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: not Jeeturaj. Jeeturaj. Only on Mirchi. It's hot.
1: Hi. My name is Peter Parker.
2: Okay then, Spider-Man brand new day aa gayi hai. And for God's sake, please theater mein jaakar hi dekho is what Jeeturaj will tell you. Kyunki is film mein kahin chhoti chhoti aisi cheeze hain. Especially jab characters aapas mein baat karte hain, to unki whispers, unka pyar, unka ghussa, wo theater mein jo maza deta hai, wo kahin bhi nahi dega. And for God's sake, kisi se bhi story mat suno. Don't take any spoilers. Film mein kahin aisi cheeze hain jo tere ko itna surprise kar jayengi.
3: Spiders have three life cycles.
2: I just can't begin to tell you. I'll tell you the biggest thing. Spider-Man में villain कौन है? यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर suffocate होने लगता है? क्यों Spider-Man अपने आप में घुटने लगता है? ये reason उस villain पर जाकर रुकता है. I'm not going to tell you who it is. Also, तेरे में से कई लोग ये expect करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात Jacob Batno, also MJ अर्थात Zendaya and Peter Parker यानी Tom Holland. In this film, it's a little different. In fact, I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है. क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो. ऑल्सो देयर इज अ पर्टिकुलर सीन बिटवीन जॉन बर्नथॉल अर्थात फ्रैंक कैसल एके पनिशा एंड टॉम हॉलैंड अर्थात पीटर पार्कर, जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा. ऑल्सो इफ यू हैव किड्स अराउंड यू एंजॉय इट फुल्ली, क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं, तालियां बजाते हैं. एंड इट्स ऑल रिक्वायर्ड इन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे. बट आई मस्ट गिव यू अ डिस्क्लेमर. अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म. तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा. फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से Jeeturaj टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है. ओ ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माई रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची Jeeturaj, जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई हैं Jeeturaj ने. वो क्या है? ओके, आई टोल्ड यू, इंस्टाग्राम मिर्ची Jeeturaj. फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे. बाय द वे, कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या Zendaya एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है. फॉर गॉड सेक ब्रो, अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो. दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रेकमेंडेड बाय Jeeturaj विद फोर मिर्चीज.
0: साथ Jeeturaj, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

92.7 FM, Radio Mitri, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: जो सुनता है सबकी करे उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: समय बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: अपना टाइम आएगा, तू नंगा ही तो आया है क्या, घंटा लेकर जाएगा। अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, तू नंगा ही तो आया है क्या, घंटा लेकर जाएगा।
1: You are listening to 103.3 FM HD2 WPRP Princeton, New Jersey and 92.7 W224 CW Franklin Park, New Jersey. Radio Mirchi.
2: It's hot.

आर के जूल्स। मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आर के जूल्स। बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस, सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर। ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: Gen Z ने जेलसी को हैंडल करने का एक नया तरीका ढूंढ लिया है. आइए उनके पर्सपेक्टिव को समझते हैं.
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया.
3: सिस्टर, कई बार बहुत सारे जेन जी या जेन अल्फा इन लोगों से जब बात होती तो कई चीजें वो ऐसे कहते हैं, वो ऐसे वाक्या कहते हैं जो आपको लगता है हम गलत तो नहीं है गई. जैसे बहुत सिंपल सा एक डिबेट है कि भैया हम कई बार मजाक में भी कहते हैं कि शायद हमारी आखिरी जनरेशन है जिन्होंने अपने पेरेंट्स की भी सुनी और अपने बच्चों की भी सुन रहे हैं. और इस बात पे जेन जी जो होते हैं, जेन अल्फा होते हैं, वो कहते हैं भाई हम अपने पेरेंट्स की बात इसलिए नहीं सुनते क्योंकि उसमें लॉजिक नहीं, हम लॉजिक ढूंढते हैं. तो अगर हमें बोला जाता है तो पहले हम उसमें लॉजिक जाते हैं. आप अपने पेरेंट्स से डरते थे इसलिए आप वो काम करते हैं जो आपके पेरेंट्स बोलते थे. उस समय ये कॉन्वर्सेशन को किधर लिया जाए?
4: मुझे ऐसे लगता है कि दोनों हो सकता है. कईयों ने डर से भी किया होगा, कईयों ने रिस्पेक्ट से भी किया होगा. हमें ट्रस्ट था कि शायद हमारे पेरेंट्स जो कह रहे हैं उसमें हमारा भला ही होगा. आई एम नॉट डिनाइंग द फैक्ट कि अगर आज की जनरेशन कुछ समझना चाहती है या उसके अंदर अगर लॉजिक ढूंढ करके वो चीज करना चाहती है उसमें भी कुछ गलत नहीं है. आप समझ करके भी करते हैं, आप आंसर्स फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, देयर इज नथिंग रॉन्ग. लेकिन वो जेनरेशन अगर बिना उसके भी करती थी, इट वॉज आउट ऑफ रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट कि मेरे पेरेंट्स जो कह रहे हैं वो मेरे भले के लिए ही होगा. एंड इन मेजोरिटी केसेस उसमें भला होता भी था. तो ऐसा तो नहीं है कि हमने किया तो कोई हमारा बहुत नुकसान हो गया. एंड देन यू नो इट्स नॉट ओनली अबाउट जेनरेशन. आपको उस जेनरेशन में भी कुछ मिल जाएंगे जो हमेशा दे वर लुकिंग फॉर आंसर्स एंड वर इंक्विजिटिव. आपको इस जेनरेशन अबाउट जेनरेशन आपको उस जेनरेशन में भी कुछ मिल जाएंगे जो हमेशा दे वर लुकिंग फॉर आंसर्स एंड वर इंक्विजिटिव. आपको इस जेनरेशन में भी कोई मिल जाएंगे.

पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए। इट्स अ जर्नी। चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: जेलेसी कैसे हमें अपने असली गोल से भटका देती है, चलिए इस बात को समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, देवदत्त पटनायक जो हैं वो बहुत कमाल के मुझे इंसान लगते हैं। एक शो भी किया था, हमारे एक तरह से मित्र भी हैं, और उन्होंने बहुत कमाल का आर्टिकल लिखा था अभी रिसेंटली, उसका नाम है हाउ सॉल्टी आर यू, और उसमें लिखते हैं, मैंने यहाँ कॉपी करके लाया हूँ मैं, कि जेंजी ने ईर्ष्या के बारे में बात करने का एक जेंटल लगभग चंचल तरीका

0: खोज निकाला है, वो इसे सॉल्टी कहते हैं। हम सूचनाओं और ज्ञान से घिरे हुए हैं, फिर भी कोई हमें ईर्ष्या से निपटने का तरीका नहीं बताता। हम अपने भीतर की सॉल्टीनेस को, हम अपने भीतर की सॉल्टीनेस से कैसे निपटें और दूसरों की सॉल्टीनेस से कैसे निपटें?
1: ईर्ष्या एक फीलिंग है, हम सब कभी ना कभी उसको एक्सपीरियंस करते हैं, जेलसी, पर उसकी जो रूट है वो है कंपैरिजन।
0: जी,
1: कंपैरिजन और इंस्पिरेशन में फर्क होता है।
0: हाँ।
1: जब आप किसी से इंस्पायर्ड होते हैं तो आपको वो बात याद रहती है, विशेषता याद रहती है, विधि याद रहती है, पर व्यक्ति भूल जाता है। कंपैरिजन
0: हाँ।
1: में कई बार सीख भूल जाती है।
0: हाँ।
1: क्या सीखना है, क्या अपने जीवन में इंकल्केट करना है।
0: हाँ।
1: पर वो व्यक्ति याद हाँ। रहता है, एंड द कॉन्वर्सेशन, इनर कॉन्वर्सेशन इज क्वाइट नेगेटिव। इसको ही मिलता है, सब इसको ही प्रिविलेज देते हैं, यही आगे बढ़ता है, दैट इज क्रिएटिंग जेलसी। जब हमें ये समझ में आ जाता है कि मुझे मेरे कर्म का फल मिलना है, उसको उसके कर्म का फल मिलना है, तो वो कंपैरिजन खत्म हो जाता है, ईर्ष्या खत्म हो जाती है। आप हर एक की सफलता को देख करके खुश होते हैं, हर एक के फेलियर में आपको उनके प्रति सहानुभूति रहती है। बट द होल थिंग इज समटाइम्स व्हेन वी कंपेयर विद थिंग, उसको मेरा मिल गया, इसलिए वो सॉल्टीनेस जो आप कह रहे हैं वो जाती नहीं है।
2: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

मनुष्य के जीवन में आध्यात्म का अपना विशेष महत्व है। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने इस महत्व को समझ कुछ विशेष मंत्रों, श्लोकों एवं प्रार्थनाओं की रचना इस उद्देश्य से की थी कि मनुष्य जीवन की जटिलताओं के बीच अपने जीवन पथ को सहज सरल बना सके, अपने आराध्य और अपने बीच की दूरी मिटा सके। हिमालयन चांस में संग्रहित श्लोक एवं प्रार्थनाओं को आपने विभिन्न धार्मिक आयोजनों के अवसरों पर घर परिवार में नियमित पूजा पाठ के लिए अवश्य ही सुना होगा। इनके द्वारा पढ़ने वाले मन मस्तिष्क पर प्रभाव का अनुभव भी किया होगा। प्रत्येक घर परिवार के लिए ये एल्बम निश्चित रूप से संग्रहणीय, उपयोगी एवं धार्मिक रुचि पैदा कर घर में भक्तिभाव पूर्ण वातावरण का निर्माण करने में सक्षम है। श्रद्धा भक्ति के साथ सस्वर उच्चारित श्लोकों एवं प्रार्थनाओं का ये संगीतमय संग्रह श्रद्धालु सज्जनों को आत्मिक संतोष प्रदान करेगा, हमारा ऐसा विश्वास है।

0: हॉट।
1: हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: क्या जेलसी सच में मोटिवेशन बढ़ाती है या बस प्रेशर क्रिएट करती है? आइए इस नए पर्सपेक्टिव को एक्सप्लोर करते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: देवदत्त जो हैं वो माइथोलॉजी के बारे में एक तरह से एक्सपर्ट हैं, उन्होंने माइथोलॉजी से कहानी निकाल के यहाँ लिखी है। वाल्मीकि और हनुमान के बीच ईर्ष्या की बहुत सुंदर कहानी है। वाल्मीकि रामायण लिखते हैं और उनकी खूब प्रशंसा होती है, हम जानते हैं। ईर्ष्या भड़काने में माहिर जो नारद होते हैं वो उन्हें बताने आते हैं कि किसी ने तुमसे भी बेहतर रामायण लिखी है, तो वाल्मीकि की जो शांति वो भंग हो जाती है, और इस बात की पुष्टि करने के लिए वो निकल पड़ते हैं। तो हनुमान जी जो होते हैं वो केले के पेड़ों के जंगल में पाए जाते हैं, और वहां पे वो पत्तियों पर उन्होंने रामायण पूरी की पूरी खुदी होती है, मतलब छोटे छोटे पत्तियों से उन्होंने खोद के बहुत लंबे केले के पेड़ पर उन्होंने पूरी रामायण लिखी होती है। तो ये उनकी लिखी हुई रामायण वाल्मीकि की लिखी हुई रामायण से कहीं सुंदर होती है। तो वाल्मीकि घबरा जाते हैं, उनको लगता है कि उनका काम जो है वो धूमिल हो जाएगा, उनकी पहचान मिट जाएगी। और फिर हनुमान एक अद्भुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी कार्य करते हैं, वो अपनी ही पत्तियों पर लिखी हुई रामायण को खा जाते हैं। इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने जिज्ञासा में लिखी थी, वो राम को समझना चाहते थे। एक बार उनकी जिज्ञासा शांत हो गई तो उनके काम का उद्देश्य पूरा हो गया। प्रसिद्धि मायने नहीं रखती थी, चकाचौंध मायने नहीं रखती थी, ईर्ष्या मायने नहीं रखती थी। वाल्मीकि ने भूख और भय के कारण रामायण लिखी थी, हनुमान ने जिज्ञासा के कारण लिखी थी।
4: कई बार हम जो काम करते हैं, जैसे इसके अंदर बहुत सुंदर था उसके पर्पस क्या था
3: जी,
4: जो उसके अंदर की बात है कि आप कुछ भी करते हैं उसका पर्पस क्या है। आपने किया, अपने लिए किया, उसके अंदर सफलता भी मिल गई, पर कभी कभी पर्पस जो था भूख और
3: स्नेह मिले, आकर्षण मिले, वैलिडेशन मिले,
4: तब आपके अंदर एक फियर रहता है। तब आप फियर करते हैं, आप सिक्योर नहीं होते, आप थोड़े से इनसिक्योर होते हैं। इसलिए पर्पस क्या है वो बहुत जरूरी है।
3: बहुत खूबसूरत।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: पेरेंट्स का इमोशनल सपोर्ट बच्चों को बुलिंग के असर से कैसे प्रोटेक्ट करता है, इस इमोशनल स्ट्रेंथ की रियल पावर को और करीब से जानते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: इस बात से जो आप कह रहे हैं कि इमोशनल स्थिति के बारे में बात करते हैं कि कभी कभी दूसरे सिचुएशन के बारे में जो आपने बोला ना कि मेरी कोई गलती ही नहीं है, इसमें मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ, संगत भी मेरी सही है। कई बार बहुत होता है कि जलन के कारण ही मुझे कोई बुलिंग करना शुरू कर देता है। जैसे मेरी एक दोस्त है, उसकी बेटी इज गोइंग थ्रू ऑल ऑफ दिस और उसको तरह तरह के नाम से पुकारा जाता है, जिस तरह के कपड़े पहनते हैं उस पर आपत्ति की जाती है, और वो बिल्कुल नॉर्मल क्योंकि स्कूल कॉलेज में तो एक यूनिफॉर्म होता है तो यूनिफॉर्म पहन के जा रही है, लेकिन उसको परेशान किया जाता है, अलग तरह तरह के नाम लिए जाते हैं। तो इस समय पेरेंट के लिए तो जरूरी होता है कि भाई बच्चे को आप बताएं, देखो साइबर बुलिंग को टॉलरेट नहीं करना, प्लीज जाके प्रिंसिपल से बात करें वगैरह वगैरह,
4: बड़ों को बताएं
3: जितना हो सके। लेकिन बच्चा जिससे गुजर रहा है, जो उसके साथ हो रहा है, उससे उसको जूझने के लिए क्या करना चाहिए?
4: यही तो बात है ना, एक बच्चा है समझो, उसको आपने कहा कोई अलग अलग तरीकों से नाम से बुलाया जा रहा है, तो एक होगा ना जो उसको अलग अलग नाम से बुलाता होगा, दो चार होंगे जो उसको अलग अलग नाम से बुलाते होंगे, लेकिन अगर उस पेरेंट है या टीचर है, वो उस बच्चे को बार बार बताता है कि वो कौन है, भले उसको ये बुलाया जाता है। जैसे आई रिमेम्बर वन पर्सन शेयरिंग कि उसको कई तरह के नाम से, कोई पैंसी कहता था, कोई उसको कुछ कहता था, बुलाते थे, बट पेरेंट्स उसको सेलिब्रेट करते थे, उसको कहते थे अरे तुम स्पेशल हो, तुम यूनिक हो, तुम डिवाइन चाइल्ड हो। तो वो चीज उसके मन में इतना भरा हुआ था कि मेरे पेरेंट्स तो मुझे सेलिब्रेट करते हैं, वो तो मुझे डिवाइन चाइल्ड बोलते हैं, वो तो मुझे, सो दैट टुक ओवर व्हाट अदर पीपल वर सेइंग। बट अगर कोई भी उसको है नहीं बताने वाला कि वो कौन है,
3: तब वो और भी
4: फिर वो जो सारे शब्द हैं उसका इन्फ्लुएंस पड़ना शुरू हो जाएगा
3: और वो बिलीव करने लगेगा।
4: लाइक फॉर एग्जांपल, अब हम क्यों बात करते हैं कि हम थोड़ा बहुत भी कोई स्क्रिप्चर पढ़ें, थोड़ा बहुत भी अच्छा सुने। अब रोज परमात्मा हमको कहता है आई एम अ पावरफुल बींग,
3: जी बिल्कुल,
4: मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, आई एम गॉड्स चाइल्ड, आई एम स्पेशल सोल, आई एम वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मर। ये एक स्वमान है, मैं कौन हूँ। अब आप मुझे कह दें आप तो बेकार हैं, सो आई कैन गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय आपने जो बोला, लेकिन इफ आई एम इन दैट कॉन्शियसनेस, मुझे पक्का है मैं कौन हूँ, तो उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर मैं उस स्थिति में हूँ, मेरी वो स्मृति है, तो आपके शब्द का इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। बट अगर मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है ही नहीं, देन आप अप्रिशिएट करते हैं या क्रिटिसाइज करते हैं या जो आप बोलते हैं वो मेरी आइडेंटिटी बन जाती है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है ना कि मैं कौन हूँ।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: You are listening to 103.3 FM HD2 WPRP Princeton, New Jersey and 92.7 W224 CW Franklin Park, New Jersey. Radio Mir-

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: क्रिटिसिज्म को हर्ट की जगह ग्रोथ का टूल कैसे बनाएं? इस पर्सपेक्टिव शिफ्ट को अपनी इनर स्ट्रेंथ में कैसे बदलें? समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: तो चाहे आप बच्चे हो, पेरेंट हो, कोई भी हो, अपने आप को हमेशा ये याद दिलाते रहें कि आई एम अ पावरफुल सोल, मैं भगवान का बच्चा हूँ, मैं इससे गुजर सकता हूँ और मेरे से शक्तिशाली कोई नहीं है। तो जब वो प्रैक्टिस में रहेगी तो अगर कोई भी बात आएगी तो उस समय हम उसको डिफ्लेक्ट कर आसानी से कर सकते हैं।
4: दिस हैपेंस अ लॉट विद पीपल हु आर इन पब्लिक लाइफ आल्सो।
3: जी,
4: जैसे आप एक पब्लिक लाइफ में जाते हैं, आप एक स्पोर्ट्स पर्सन है, आप एक एक्टर है, होल वर्ल्ड कैन से एनीथिंग टू यू।
3: क्रिटिसिज्म तो बहुत मिलती है
4: ना। नहीं, आप ओपन हो गए ना। आज आप एक क्रिकेटर है, आप एक शॉट लेते हैं, आप एक मैच खेलते हैं, सबको हक होता है
3: कुछ भी बोलने का।
4: अब अगर वो ये भूल जाए एक बारी के लिए, कि वो भूल जाए कि वो कितना अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन है, उसने कितनी मेहनत करी है, कितनी मेहनत करके वो 11 में आया है, ठीक है आज उसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, लेकिन स्टिल अगर उसको ये स्मृति ही नहीं रहे कि मैं फिर भी एक इंडियन प्लेयर हूँ और मैं अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुँचा हूँ, केवल आज परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी, तो वो तो लोगों के क्रिटिसिज्म सुन करके टूट जाएगा। डू यू थिंक ही विल बी एबल टू परफॉर्म अगेन?
3: सही बात कर रही हैं। और बहुत लोगों के साथ होता भी है, और जो लोग अडिग खड़े रहते हैं उनके लिए आसान होता है।
4: ये समझना जरूरी है कि हम सबको चेंज नहीं कर सकते। आज ये तो दो चार बच्चे हैं स्कूल के, नहीं करना चाहिए, सबको काइंड होना चाहिए, कंपैशनेट होना चाहिए, पर एक है कि अब परफेक्ट होना चाहिए सब कुछ, और दूसरा है कि ठीक है कोई है भी जो थोड़ा ट्रोल करता है, क्रिटिसाइज करता है, उसको इतनी अहमियत देने की जगह जो आप हैं
3: उसको अहमियत दें।
4: उसको अहमियत दें।
3: बहुत खूबसूरत।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया। ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
1: Famous Indian astrologer Pandit Ramdev is now in New Jersey. Expert in palm reading, face reading, horoscopes and birth chart. Call Pandit Ramdev for all your astrological predictions on love, relationships, business and career. Call 732-366-6777.
2: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं. ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स.
3: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइंस की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल. ये भरोसा है साथ का साथ हर खुशी का. सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी. स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इसलिन, न्यू जर्सी.
4: प्यारी ब्राइड, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
5: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगा, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानी.
4: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन.
6: द मॉर्गेज इंडस्ट्री हैज चेंज्ड ओवर द इयर्स, पर हमारी ऑनेस्ट एडवाइस आज भी वही है.
7: जेसन एंड समीर आर ऑफिशियली रीलॉन्चिंग एसडी कैपिटल फंडिंग विद अ रिन्यूड फोकस ऑन यू.
6: बाइंग अ होम, आवर रेट सेवर विल बीट योर लॉक्ड रेट.
7: ऑलरेडी अ होम ओनर, ड्रॉप योर मंथली पेमेंट्स विद आवर फ्री रेट अलर्ट सिस्टम. एसडी कैपिटल फंडिंग सर्विस जिस पर सब करे भरोसा.
8: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं. दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक. मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स. बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस. रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर. आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2.
9: पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए. इट्स अ जर्नी. चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: 5G Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: सिस्टर, एक सवाल आया है, ये अनोनमस है। पूछते हैं कि जब भगवान पर भरोसा ही हिलने लगे और कोई रास्ता ना दिखे तब क्या करें?
3: भरोसा हमारा तब हिलता है जब कभी कभी हमें लगता है कि हमारी कोई इच्छा होती है। हम बहुत उसके लिए पुरुषार्थ करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, हमें लगता है हो जाना चाहिए। कभी कभी जब हमारे अनुसार नहीं होता लाइफ में, तब भरोसा हिलता है, हमें लगता है शायद भगवान ने हमारे साथ कुछ गलत किया। एक्चुअली में ये रियलाइजेशन होना कि हमारे साथ जो कुछ होता है वो हमारे कर्मों का फल होता है। दो चीजें, पहला सही गलत कर्म की पहचान देता है। उसका जो काम है, जब परमात्मा महावाक्य सुनते हैं, सत्संग करते हैं, तो हमें ये समझ में आता है राइट क्या है, रॉन्ग क्या है
2: जी।
3: और दूसरा, परमात्मा जिसको हम कहते हैं सुप्रीम पावर है, ऑलमाइटी अथॉरिटी है, सर्व शक्तियों का भंडार है, उससे हमें शक्ति मिलती है कि अगर हमारे से कोई गलत कर्म हो भी गया है, आज या गलत आज उसका कॉन्सिक्वेंस लौट कर आए, तो हम उसको फेस कर सके, हम उसमें हिले नहीं, हम स्टेबिलिटी से उसको स्वीकार कर सके और उसको फेस कर सके। पर हम परमात्मा से शक्ति नहीं मांगते, हम तो उससे नाराज हो जाते हैं कि ये मेरे सामने आया ही क्यों, ये बात ही क्यों आई, आपने ये बात क्यों भेजी। तो कई बार क्लैरिटी ना होने के कारण हमारा भरोसा हिल जाता है। बाकी वैसे जो परमात्मा को समझता है, किसी ने भी अगर उसका अनुभव किया है, तो वो आपको यही बताएगा कि कितना वो रहम का सागर है, कितना प्यार का सागर है, कितना ज्ञान का सागर है। और वो तो चाहता ही है कि हर एक को इतनी शक्ति मिले कि उसके जीवन में मेहनत नहीं हो, संघर्ष नहीं हो, बहुत आराम से बेफिकर बादशाह होकर के वो अपना जीवन क्रॉस कर सके।
2: स्टीवन फर्टिक नाम के एक अमेरिकन पास्टर हैं, उन्होंने किताबें भी लिखी हैं, बेस्ट सेलिंग ऑथर हैं, और एलिवेशन चर्च नाम का जो चर्च है उनके फाउंडर वो हैं। उन्होंने बहुत कमाल की एक बात कही जो मुझे इस संदर्भ में बहुत अच्छी लगती है। वो कहते हैं कि ईश्वर पर भरोसा करके प्रतीक्षा करने से भी कठिन काम ये है कि यही इच्छा करना कि काश हमने ऐसा किया होता। कि ज्यादातर हम प्रतीक्षा ही नहीं करते, उसको हम छोड़ देते हैं अपनी कामना करके, बस हमको लगता है अभी हो जाना चाहिए। और आप वैसे भी कह रही हैं कि वो हमें सिर्फ मार्गदर्शन देता है, बाकी हमें ही करना है।
3: हाँ, मैंने परमात्मा सबके लिए अगर कर दे तो परफेक्ट करेगा ना।
2: सही बात है।
3: जैसे एज अ पेरेंट, आप पेरेंट हैं, आप अपने बच्चे को गाइड कर सकते हैं, फिर उसके कर्म से उसकी डेस्टिनी बनती है। गाइड करने के बाद भी बच्चा कई बार आपका कहना नहीं मानता, आप देख भी रहे होते हैं कि ये अपनी तकदीर को लकीर लगा रहा है, पर तो भी आप क्या कर सकते हैं। ऐसे परमात्मा भी पढ़ा सकता है, समझा सकता है, गाइड कर सकता है, पावर दे सकता है, करना तो आपको ही है ना।
0: रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची।

0: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक। मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स। बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस। रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर। आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2।
1: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
2: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
1: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
2: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन।
3: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लायन मॉर्गेज, the king of mortgage industry.
4: Since over 15 years, Lion Mortgage has been assisting first-time home buyers with loan. Their experience and knowledge of mortgage industry really helps clients to get the best possible deals on refinance. A professional service with quick, accurate and impressive follow-up. Lion Mortgage offers special zero closing cost on refinance options.
1: For more information, call 732-339-3155. That is 732-339-3155.
0: अपने सपनों की ऊंचाई को छूने के लिए एम्स एजुकेशन हमेशा आपके साथ है।
5: The College of Health Sciences offers various degrees and certifications in pharmacy tech, medical billing and coding, EKG and phlebotomy, medical assistant and many more in-demand healthcare careers.
0: Get clinical experience and job assistance at the most reputed hospitals and medical centers. Training is provided online and on campus. For enrollment, call 908-222-0002 or visit aimseducation.edu.
6: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
7: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
6: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies' first choice.
8: The mortgage industry has changed over the years, but hamari honest advice aaj bhi wahi hai.
9: Jason and Sameer are officially relaunching SD Capital Funding with a renewed focus on you.
8: Buying a home, our rate saver will beat your locked rate.
9: Already a homeowner? Drop your monthly payments with our free rate alert system. SD Capital Funding, service jis par sab kare bharosa.
10: It's 7:30 AM. Mirchi time check. RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels. Best quality, best price.

0: Energy, it's hot.
1: Healthy mind के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते. Till then, सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 only on मिर्ची, it's hot.

0: कभी तो हंसाए।
1: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
3: सिस्टर तन्मय महात्रे लिखते हैं कि लोग जज करेंगे, इस डर को कैसे हटाएं, खास करके रिच और हाईली एजुकेटेड लोगों के सामने।
4: अगर हमें इस चीज का फियर रहता है कि लोग हमें जज करेंगे, ये क्लियर निशानी है कि हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट कम है। जब आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट कम होती है, तब आपको बाहर का वैलिडेशन चाहिए होता है। आपको चाहिए होता है कोई आपको अक्नॉलेज करे, कोई अप्रूव करे, कोई कहे कि आप जो कर रहे हो वो बहुत सही है, चाहे वो इन्फ्लुएंशियल है। किसी के लिए वो इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति का वैलिडेशन होगा, किसी के लिए एजुकेटेड व्यक्ति का वैलिडेशन मैटर करता होगा, किसी के लिए रिच व्यक्ति का वैलिडेशन मैटर करता होगा। सामने वाले का फीडबैक लेना, उससे अपने को बेटर बनाने में कोई हर्जा नहीं है।
3: सही बात है।
4: लेकिन अपने किए पर डाउट करना, जिस क्योंकि कोई व्यक्ति आपको अप्रूव नहीं कर रहा, वो लैक ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट है। दोनों में फर्क है। मैंने कन्विक्शन से कुछ किया, मुझे फेथ है, लेकिन फिर भी अगर सामने वाले का कोई फीडबैक है, सो आई एम नॉट सो रिजिड ऑल्सो, वो ईगो हो जाती है। आई एम ओपन टू देयर फीडबैक, और अगर मुझे लगता है कि उनके फीडबैक में कोई वैल्यू है, आई एम रेडी टू चेंज ऑल्सो, लेकिन मैं वो ही करूंगा जो आपको पसंद है।
3: वो नहीं
4: मुझे सही भी नहीं लगता, लेकिन मुझे उसमें वैलिडेशन मिलेगा तो मैं वो करूंगा। वो लैक ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट है।
3: एंड तन्मय, बहुत जरूरी है समझना कि आप कुछ करें या ना करें, लोग तो जज करेंगे।
4: मैंने ये बात बिल्कुल ठीक है कि कुछ भी आप करें, कुछ भी, लेकिन हर एक का कोई ना कोई ओपिनियन होगा, और वो सबका ओपिनियन आपके फेवर में हो ये नहीं हो सकता। इसलिए सबको खुश करने की, सबको प्लीज करने की ये हमारी
3: जरूरत नहीं है।
4: हाँ, ये नहीं होना चाहिए, पर्पस ही नहीं होना चाहिए।
3: सही बात।
1: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
1: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
0: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies' first choice.
2: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
3: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
2: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
4: कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं।
1: हजारों लोग एक तिरंगा एक दिल, और इस फीलिंग का नाम है इंडिया डे परेड 2026।
0: संडे ऑगस्ट 9th 1 PM ऑनवर्ड्स फ्रॉम इजलिन टू एडिसन on Oak Tree Road, featuring Lakshraj Singh Ji Maharaj, Richa Anirudh, Sanya Malhotra and more. Join the cultural fest and mela behind Umya Dham Temple.
5: Type C cable ke saath phone to charge kar loge. Khud ko kaise charge karoge? Mirchi Recharge Mornings, subah 6 se 8, only on Mirchi, it's hot.

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: सिस्टर, महेश बजाज जी लिखते हैं कि लव एट फर्स्ट साइट क्या होता है और अगर होता है तो क्यों होता है?
3: लव एट फर्स्ट साइट, जहाँ तक मैं समझती हूँ, कई बार हम कहते हैं ना, मुझे मेरा सोलमेट मिल गया।
2: हाँ।
3: होता क्या है कि जब आप किसी को मिलते हैं और आपको लगता है यही है।
2: हाँ।
3: आप उनको पहली बार नहीं मिल रहे होते हैं।
2: अच्छा, इसमें भी कोई पुराना कनेक्शन है?
3: 100% कनेक्शन है, तभी वो एनर्जी एकदम एक्सचेंज होती है और आपको लगता है यही है। ये कई चीजों में होता है।
2: हाँ।
3: हम किसी जगह पर जाते हैं, हमें लगता है हम यहाँ पहले आए हुए
2: पहले आ चुके हैं। देजा
3: हम किसी से मिलते हैं, हमें लगता है हम इनसे पहले मिले हुए हैं।
2: हाँ।
3: हम मिले हुए होते हैं।
2: हाँ।
3: हमारा कुछ कार्मिक अकाउंट होता है, और कार्मिक अकाउंट का मतलब बुरा ही नहीं होता।
2: हाँ।
3: कार्मिक अकाउंट किसी से हमें बहुत सुख मिलना होता है,
2: हो सकता है
3: किसी से हो सकता है कि हमारा कुछ दुख भी मिलना हो, पर वो एकदम लगता है यही है। अब कॉस्ट्यूम बदल गया पर सोल वही है। तो वो सोल के नजदीक आते ही एनर्जी एक्सचेंज होने लग जाती है, और इसीलिए हम उसकी तरफ ग्रेविटेट होने लगते हैं, और फिर हमारा जो भी कार्मिक अकाउंट है, जो भी रिश्ता है, वो फिर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है।
2: तो आशा करते हैं महेश बजाज जी आपको इसका जवाब मिल गया, लेकिन जिस तरह से आपने लिखा है मुझे लगता है बहुत पीड़ा में है, बहुत दर्द में है। तो अब सलमान खान की लाइफ से सीखिए। पहले उन्होंने फिल्म की थी मैंने प्यार किया, और फिर उन्होंने फिल्म की मैंने प्यार क्यों किया, तो मेरे को लगता है महेश बजाज भी उसी सिचुएशन में इस वक्त है।
3: एक्चुअली होता क्या है ना, इसमें कभी कभी हमें लगता है जब हम किसी की तरफ ग्रेविटेट होते हैं ना, हमें लगता है यही है।
2: हाँ।
3: तो आपको लगता है कि इससे तो मना एक अंदर में होता है कि ये परफेक्ट है।
2: हाँ।
3: पर होता उनके साथ हिसाब किताब है।
2: हाँ।
3: तो फिर कभी कभी हिसाब किताब के कारण जिस व्यक्ति से आपको बहुत प्यार होता है उससे बहुत दुख भी मिलने लगता है, उसकी किसी हैबिट से, किसी संस्कार से। फिर आपका मन कहता है कि Why did I gravitate in this direction? मना क्यों, वो क्यों का आपको आंसर नहीं मिल रहा होता। पर एक्चुअली में जिनके साथ हिसाब किताब होता है वो अपने बनकर आ जाते हैं। इसे कार्मिक अकाउंट सेटल करना जरूरी है। कई बार हम किनारा करते हैं, हम कहते हैं इनको छोड़ देते हैं। आप छोड़ देंगे वो फिर किसी ऐसे रूप में आ जाएंगे कि आप छोड़ भी नहीं पाएंगे। वो बिल्कुल बच्चे के रूप में ही आ गया। हाँ। बिल्कुल घर के मेंबर के रूप में ही आ गया। किनारा करना ऑप्शन नहीं है, सेटल करना ऑप्शन है।
0: रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

कैसे हो के जवाब में ठीक हूँ कह देने से कोई ठीक नहीं हो जाता। ठीक हूँ से मस्त हूँ कहने के लिए सुनिए मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey, South Asia's number one radio station, also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: It's 8 AM. Mirchi Time Check. RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels. Best quality, best price.
2: Mirchi Mornings. Mirchi Mornings.
1: Mirchi Mornings with Priscilla. Only on 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
2: Mirchi Mornings.
1: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
3: लाइफ का बिगेस्ट स्कैम पता क्या है? अलार्म हम सुबह 6 बजे का लगाते हैं और उठते 6:30 बजे हैं और फिर ब्लेम करते हैं स्ट्रेस को. यस, वी आर ह्यूमंस. गुड मॉर्निंग मेरे फेवरेट देसी ह्यूमन. कॉफी हाथ में है या सिर्फ मीटिंग का स्ट्रेस है साथ में? वेलकम टू मिर्ची मॉर्निंग्स. मेरा नाम है प्रिसिला और अगले कुछ घंटों के लिए ऑफिस, ट्रैफिक, लॉन्ड्री, घर के काम, ब्रेकफास्ट, सब कुछ साथ साथ में करना है. वैसे तुम्हारा दिन शुरू हुआ है या नहीं हुआ है पता नहीं, मेरा दिन काफी देर पहले शुरू हो चुका है. अब फिलहाल अगर तुम कम्यूट कर रहे हो, वर्क फ्रॉम होम के लिए तैयारी कर रहे हो, अपने ब्रेकफास्ट के बारे में सोच रहे हो या फिर अभी तक नींद ही खुली नहीं है तुम्हारी, मैं कुछ घंटों तक तुम्हारे साथ रहने वाली हूँ. और मेरे साथ होगा बॉलीवुड, थोड़ा सा गॉसिप, थोड़ी सी मस्ती, फील गुड अमेजिंग बातें एंड साथ साथ में अराउंड द वर्ल्ड की अपडेट्स, सम रैंडम फैक्ट्स एंड मिर्ची दार बैंगर्स एंड ऑब्वियसली मिर्ची की वाइब्स. मेरे यानी कि प्रिसिला के साथ फटाक से मुझे फॉलो कर लो. मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS. व्हाट्सएप नंबर है 9033647244. अभी चलाते मिर्ची दार बैंगर्स तुम्हारे लिए. स्टे ट्यून एंड स्टे हॉट.

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
3: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
2: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
3: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन।
4: एट तनिष्क, नो टू डायमंड्स आर एग्जैक्टली अलाइक। They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
5: Famous Indian astrologer Pandit Ramdev is now in New Jersey. Expert in palm reading, face reading, horoscopes and birth chart. Call Pandit Ramdev for all your astrological predictions on love, relationships, business and career. Call 732-366-6777.
6: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
7: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
6: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
8: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
9: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
8: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।
10: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Islin, New Jersey. Conditions apply.
11: तेरा क्या होगा कालिया?
12: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
11: अब मिर्ची खा।
13: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में। और चलो एक मिनट के लिए रिवाइंड मारकर पता करते हैं कि आज का दिन क्यों खास था हिस्ट्री में। सबसे पहले 1687 में सर आइजैक न्यूटन ने दुनिया को अपनी लॉज ऑफ मोशन और ग्रेविटी समझाई थी। और फिर 1811 में वेनेजुएला स्पेन से इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करके साउथ अमेरिका का ट्रेंड सेटर बन गया। 1852 में फ्रीडरिक डगलस ने एक पावरफुल स्पीच दी जो इक्वालिटी ऑफ फ्रीडम के लिए आज भी याद की जाती है। एंड फैशन लवर्स 1946 में पेरिस में बिकिनी ने अपना डेब्यू किया, मतलब कि एक ऐसा आउटफिट जो इतनी हेडलाइंस बनाकर गया। 1954 में एल्विस प्रेसली ने अपना पहला कमर्शियल सॉन्ग रिकॉर्ड किया था और रॉक एंड रोल ने बोला था माइक चेक I'm here। साइंस ने 1996 में हिस्ट्री बना दी थी जब डॉली द शीप दुनिया का पहला क्लोन्ड मैमल पैदा हुआ था। और ऑनलाइन शॉपिंग के शौकीन 1994 में आज के दिन अमेजोन सिर्फ एक ऑनलाइन बुक स्टोर था। हाँ जी, तब किसी ने इमेजिन भी नहीं किया होगा कि कुछ दिनों बाद रात को 2 बजे तक तुम टिश्यू पेपर और एयर फ्रायर सब कुछ वहां से ऑर्डर कर रहे होगे। वैसे अगर तुम्हें भी ऐसा कुछ पता है हिस्ट्री के बारे में तो मुझे बता सकते हो। तो मिर्ची प्रेस इज माय हैंडल नेम इंस्टाग्राम और एक्स पर है। देखो बड़ा आसान है मुझे ढूंढना, मिर्ची पी टाइप करोगे तो ही आ जाएगा। पर एक्स से जाओ, MIRCHIPRIS टाइप करो, मुझे ढूंढो, मुझे फॉलो करो, मुझसे बातें करो। और व्हाट्सएप पर भी नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। Stay tuned and stay hot.

0: prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
3: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at NRSPay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
4: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of U.S. Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
5: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
6: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
7: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी.
6: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
7: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इज़लिन.
8: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ. जेसन एंड समीर आर बैक एट SD कैपिटल फंडिंग. बीट योर लॉक्ड रेट विद आवर रेट सेवर टुडे.
9: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
10: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
9: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
11: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
12: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
11: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन.
13: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Islin, New Jersey. Conditions apply.
14: तेरा क्या होगा कालिया?
15: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार.
14: अब मिर्ची खा.
16: Radio Mirchi, it's hot.
17: किंज करो तारीफ तेरे चेहरे दी. किंज करो तारीफ तेरे

92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: Hot Jeeturaj. Only on Mirchi. It's hot.
1: Hi, my name is Peter Parker.
2: Okay then, Spider-Man brand new day aa gayi hai and for God's sake please theater mein jaakar hi dekho is what Jeeturaj will tell you kyunki is film mein kai chhoti chhoti aisi cheeze hain especially jab characters aapas mein baat karte hain to unki whispers unka pyar unka gussa wo theater mein jo maza deta hai wo kahin bhi nahi dega and for God's sake kisi se bhi story mat suno don't take any spoilers film mein kai aisi cheeze hain jo tere ko itna surprise kar jayengi
3: spiders have three life cycles
2: I just can't begin to tell you I'll tell you the biggest thing. Spider-Man में विलन कौन है? यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर सफोकेट होने लगता है? क्यों स्पाइडरमैन अपने आप में घुटने लगता है? ये रीजन उस विलन पर जाकर रुकता है। I'm not going to tell you who it is. Also, तेरे में से कई लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात Jacob Batno, also MJ अर्थात Zendaya and Peter Parker यानी Tom Holland. In this film, it's a little different. In fact, I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो ऑल्सो देयर इज अ पर्टिकुलर सीन बिटवीन जॉन बर्नथॉल अर्थात फ्रैंक कैसल एके पनिशर एंड टॉम हॉलैंड अर्थात पीटर पार्कर जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा ऑल्सो इफ यू हैव किड्स अराउंड यू एंजॉय इट फुल्ली क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं तालियां बजाते हैं एंड इट्स ऑल रिक्वायर्ड इन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बट आई मस्ट गिव यू अ डिस्क्लेमर अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज के पहली फिल्म में नहीं देखी है तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से Jeeturaj टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है ओह आल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माय रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची Jeeturaj जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई है Jeeturaj ने वो क्या है ओके आई टोल्ड यू इंस्टाग्राम मिर्ची Jeeturaj फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बाय द वे कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या Zendaya एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है फॉर गॉड्स सेक ब्रो अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रेकमेंडेड बाय Jeeturaj विद फोर मिर्चीज
0: साथ Jeeturaj ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
7: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at nrspay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
8: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of U.S. Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
9: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
10: Namaste, New Jersey. Frontier Ras is now open in Edison, New Jersey. From handloom saris and bridal couture to menswear and ready-to-wear, discover a 70-year legacy of Indian craftsmanship. The USA flagship store of Frontier Ras is now open at 1655 Oak Tree Road, Edison.
11: सुनो ब्राइड्स अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन
12: तो आइए फैशन क्वीन यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी
11: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन
12: विजिट टुडे 1358 Oak Tree Road, Iselin.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: गुड मॉर्निंग, मेरा नाम है प्रिसला और सुन रहे हो तो मिर्ची मॉर्निंग्स। और अभी टेम्परेचर है 68 डिग्री फारेनहाइट के आसपास, स्काई जो है वो प्रिटी क्लाउडी है, लेकिन फील हो रहा है टेम्परेचर अराउंड 70 डिग्री फारेनहाइट के आसपास। मतलब वेदर आज कह रहा है मैं कूल हूँ लेकिन तुम्हारे जितना नहीं। आज का टेम्परेचर रेंज रहने वाला है 67 से 84 डिग्री फारेनहाइट के बीच में और फील्स लाइक टेम्परेचर होगा 67 से 85 डिग्री फारेनहाइट के बीच में, यानी कि आज का तापमान और फील्स लाइक तापमान सिमिलर ही है। गुड न्यूज ये है कि लास्ट 24 आवर्स में देयर वाज जीरो रेन, लेकिन अगले 24 आवर्स में अराउंड 3 मिलीमीटर्स की बारिश लाइट रेन एक्सपेक्टेड है। तो अम्ब्रेला को कम्प्लीटली इग्नोर करने की जरूरत नहीं, लेकिन नहीं भी लेकर गए तो इतना बवाल नहीं मचने वाला है लाइफ में। और अगर आज का वेदर कल से कंपेयर किया जाए तो ऑलमोस्ट सेम स्टोरी है। कल का हाई था 85 डिग्री फारेनहाइट तक, आज 84 डिग्री फारेनहाइट तक जाने वाला है। और तुम अगर बाहर जाने वाले हो तो SPF 50++++ लगाकर ही जाना एंड मेरे दोस्त के प्लेयर बनकर ही जाना एंड ऑफ कोर्स मिर्ची की वाइब्स अपने साथ रखो और अपनी वाटर बॉटल भी कैरी करना। हैव प्लेंटी ऑफ वाटर एंड आई एम गोना प्ले प्लेंटी ऑफ मिर्चीदार बैंगर्स फॉर यू। मेरा नाम है प्रिसला, मुझसे कनेक्ट करो इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर भी लिख लो 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। अभी स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में और ये है मिर्ची आवा का ट्री। यहाँ पर मिलती है तुम्हें अपडेट्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। सबसे पहले रशिया ने अपना पहला MC-21 पैसेंजर एयरक्राफ्ट सक्सेसफुली टेस्ट फ्लाई किया है, जिसे रिपोर्ट्स के मुताबिक डोमेस्टिकली सोर्स्ड कंपोनेंट्स के साथ डेवलप किया गया है। प्लेन ने लगभग 1 hour and 23 minutes की टेस्ट फ्लाइट कंप्लीट की है, करीब 600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड और 6000 मीटर्स का एल्टीट्यूड टच किया है। एविएशन गीक्स के लिए दिस इज डेफिनेटली वन टू वॉच। एंड नंबर टू पर 20-year-old मोरक्कन फुटबॉलर फतेन बेन अमार एल अजीजी की स्पेन के सेउटा पहुंचने की कोशिश के दौरान ड्राउनिंग से डेथ हो गई। उनके परिवार के मुताबिक उनका शेंगेन वीजा उसी दिन अप्रूव हुआ था। उनके फुटबॉल क्लब ने कहा कि अनसेफ माइग्रेशन ने ड्रीम्स इनटू नाइटमेयर्स बदल दिए। एंड लास्टली, टीम इंडिया के विकेट कीपर बैटर ईशान किशन फिलहाल क्रिकेट ब्रेक के बीच में अपनी दूसरी इनिंग्स खेल रहे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI के पटना ऑफिस में असिस्टेंट मैनेजर के रोल में वापस ड्यूटी ज्वाइन करके। एंड दैट्स इट फॉर मिर्ची आवर का 3 फॉर दिस आवर विद मी प्रिसिला ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। अभी के लिए मिर्ची दर बैंगर्स तुम्हारे लिए प्ले करने वाली हूँ एंड यू गो एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स। मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर है 9033 Mirchi, that's 9033-647-244. Stay tuned and stay hot.

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
3: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
2: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन.
4: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
5: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at NRSPay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
6: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of U.S. Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
7: Looking for the best care for your child? 7 Days Pediatrics in Edison is here for you.
8: From newborn to adolescents, we offer comprehensive care. Get hassle-free same-day appointments, immunizations, and well-child visits.
7: Our multilingual staff is available evening and weekends, along with easy telehealth options. Proudly serving the Edison and Woodbridge areas. Book your appointments today. Visit 7dayspediatrics.com or call 732-307-0668.
9: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
8: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
9: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies' first choice.
10: Namaste, New Jersey. Frontier Ras is now open in Edison, New Jersey. From handloom saris and bridal couture to menswear and ready-to-wear, discover a 70-year legacy of Indian craftsmanship. The USA flagship store of Frontier Ras is now open at 1655 Oak Tree Road, Edison.
11: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ. जेसन एंड समीर आर बैक एट SD कैपिटल फंडिंग. बीट योर लॉक्ड रेट विद आर रेट सेवर टुडे.
12: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
13: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज.
12: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
13: विजिट टुडे, 1358 Oak Tree Road, Islington.
14: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Islington, New Jersey. Conditions apply.
15: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है.
16: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड.
15: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है.
17: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा.
15: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
18: एक ही होता है.
15: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची. बाकी जो है वो सिर्फ है. रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं. इट्स हॉट
19: मिर्ची, फ्रेश माल.
20: लव लॉस और होप का म्यूजिकल सफर वे जुनून.

0: इस गाने को गाया है सुबोध शर्मा ने, म्यूजिक दिया है मिथुन ने और लिरिक्स लिखे हैं सईद कादरी ने। फिल्म आवारापन 2 से सुनते रहिए बेजुनून, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
2: गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में और सुन रहे हो मिर्ची मॉर्निंग्स। और आज की गॉसिप जो है ना वो एक वेडिंग के मंडप से आई है। एक जेंजी कपल है जिनकी पर्पल हल्दी सेरेमनी इंटरनेट पर फुल ऑन वायरल हो गई है। हाँ जी, ट्रेडिशनल पीली हल्दी की जगह इन्होंने लैवेंडर कलर पेस्ट यूज किया है और सोशल मीडिया ने तुरंत अपनी जूरी बिठा दी है। कुछ लोगों ने मजाक में कपल को थानोस कपल भी कह दिया है और दूसरी साइड बोल रही है इट्स क्लासी, एस्थेटिक एंड बिल्कुल ही हटके है। सच बताऊं तो इंडियन वेडिंग्स में एक रूल तो पक्का है, शादी कपल की होती है लेकिन ओपिनियंस पूरे खानदान और पूरे इंटरनेट के होते हैं। वैसे तुम टीम क्लासिक येलो हल्दी हो या फिर टीम पर्पल वाइब्स, जो भी हो ये याद रखना कि शादी में कलर से ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है खुश रहना। और जिस टीम क्लासिक येलो हल्दी हो या फिर टीम पर्पल वाइब्स, जो भी हो ये याद रखना कि शादी में कलर से ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है खुश रहना। और जिससे शादी कर रहे हो उससे

0: पता नहीं।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
4: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
3: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
5: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
6: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन्स की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इसलिन, न्यू जर्सी।
7: कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं।
8: हजारों लोग, एक तिरंगा, एक दिल, और इस फीलिंग का नाम है इंडिया डे परेड 2026।
9: संडे अगस्त 9th 1 PM onwards फ्रॉम इसलिन टू एडिसन ऑन ओक ट्री रोड, फीचरिंग लक्ष्मीराज सिंह जी महाराज, ऋचा अनिरुद्ध, सानिया मल्होत्रा एंड मोर। जॉइन द कल्चरल फेस्ट एंड मेला बिहाइंड उमिया धाम टेम्पल।
10: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
11: Famous Indian astrologer Pandit Ramdev is now in New Jersey. Expert in palm reading, face reading, horoscopes and birth chart. Call Pandit Ramdev for all your astrological predictions on love, relationships, business and career. Call 732-366-6777.
12: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Islington, New Jersey. Conditions apply.
13: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा।
14: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: गुड मॉर्निंग माई बर्थडे सुपरस्टार. अगर आज तुम्हारा हैप्पी वाला बर्थडे है तो सबसे पहले एक जायंट मिर्ची स्टाइल हग एंड ढेर सारी गुड वाइब्स. मैं तुम्हारी कॉफी कभी ठंडी ना हो, जूम मीटिंग्स जल्दी खत्म हो जाए और घर से आने वाले लड्डूज जो है ना उनकी कैलोरीज काउंट ही ना हो. और देखते हैं आज तुम किन फेमस लोगों के साथ अपना स्पेशल डे शेयर कर रहे हो. आज के बर्थडे सेलिब्रिटीज में सबसे पहले है द वेरी चार्मिंग काजोल एंड द वेरी बबली जूनेलिया डिसूजा. देन वी गॉट Grey's Anatomy से जेसी विलियम्स, एक्ट्रेस एंड सिंगर ओलिविया होल्ट एंड द ब्रेडी बंच फेम मॉरीन मैकॉर्मिक. साथ में एनबीए लेजेंड पैट्रिक यूइंग, बास्केटबॉल सेंसेशन एंटनी एडवर्ड्स, स्पेन के फुटबॉल वंडर किड गावी, अल्टरनेटिव रॉक स्टार यंग ब्लड एंड रॉक गिटारिस्ट पैट स्मियर. और आज हम याद करते हैं उन दो लेजेंड्स को जिनकी बर्थ एनिवर्सरी आज के दिन है. सबसे पहले नील आर्मस्ट्रॉन्ग, वो इंसान जिन्होंने सबसे पहले मून पर कदम रखा, और साथ में फ्रेंच ऑथर गी डे मॉपासों जिनकी शॉर्ट स्टोरीज आज भी लिटरेचर लवर्स की फेवरेट हैं. तो अगर आज तुम्हारा हैप्पी बर्थडे है तो ये याद रखो तुम सिर्फ एक साल बड़े नहीं हुए हो बल्कि ऑफिशियली और एक्सपीरियंस्ड और ऑसम और इनक्रेडिबल हो चुके हो. बस बैक पेन का थोड़ा सा ध्यान रखो, बाकी तो तुम रॉक स्टार हो. और अगर तुम अपने शाउट आउट भेजना चाहते हो मुझे तो मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम इंस्टाग्राम और एक्स पर, दैट इज MIRCHIPRIS. व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033 6472. Stay tuned and stay hot.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
4: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
3: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इसलिन।
5: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी।
6: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस।
5: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस। कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस।
7: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लायन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
8: एंजॉय योर गोल्डन डेज विद कल्याण ज्वेलर्स। गेट अप टू 50% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस। विजिट कल्याण ज्वेलर्स एट ओक ट्री रोड, इसलिन, न्यू जर्सी। कंडीशंस अप्लाई।
9: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
10: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
9: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
10: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इसलिन।
11: दिस ड्राइव टाइम इज ब्रॉट टू यू बाय तनिष्क ज्वेलरी। हर ड्राइव बनेगी यादगार।
12: तेरा क्या होगा कालिया?
13: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
12: अब मिर्ची खा।
14: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Hello, ending the second hour of Mirchi Mornings with a bang. यानी कि Mirchi Mornings पर आने वाली है अब gold rate update. मेरा नाम है Priscilla.
2: Raj was wishing everyone happy and healthy morning. Gold trading at $4,020. $4,020 पर ट्रायंस के साथ आज सुबह gold के price trade कर रहे हैं. और इस साल के बिगनिंग में gold $5,600 पर ट्रायंस पीक टच कर चुका है. आज करेक्शन के साथ $4,020 पर ट्रायंस. डेफिनेटली एंट्री पॉइंट पड़ती है गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए. 1 ounce, 10 ounce, 100 grams, किलो बार्स, पैम सर्टिफाइड गोल्ड एंड सिल्वर बार्स में इन्वेस्ट करने के लिए राजवर्स की टीम के साथ कनेक्ट करें. थैंक यू. हैप्पी मॉर्निंग टू ऑल.
1: एंड देयर यू हैव इट. Mirchi Mornings पर सुनी तुमने एक्सक्लूसिव गोल्ड रेट अपडेट With me, Priscilla. Of course, follow me Insta and X पर. मेरा हैंडल है Mirchi Pris, that is MIRCHIPRIS. And WhatsApp का नंबर है 9033 Mirchi, that's 9033647244. For more such updates, stay tuned and stay hot.
0: This gold update is brought to you by Raj Jewels, Kingdom of Jewels, where tradition meets style.

0: Priscilla, it's hot.
1: गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में और टाइम हो गया है मिर्ची आवा का थ्री का। यहाँ पर हम अपडेट्स सुनेंगे फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। सबसे पहले रिपोर्ट्स के हिसाब से द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इज प्लानिंग एडिशनल फीस ऑन H-1B एंड L-1 वीजा एक्सटेंशन। सिंस इंडियंस अकाउंट फॉर अ लार्ज मेजोरिटी ऑफ H-1B एक्सटेंशन एप्लीकेशन, दे कुड बी द ग्रुप मोस्ट अफेक्टेड इफ द प्रपोजल मूव्स फॉरवर्ड। रिपोर्ट्स ऑल्सो इंडिकेट द एडिशनल फीस वुड बी पेड बाय एम्प्लॉयर्स। फिलहाल इट्स अ प्रपोजल बींग रिपोर्टेड, सो वील कीप एन आई ऑन हाउ इट डिवेलप्स। नंबर टू पर पाकिस्तान के बॉक्सर कुदरतुल्ला रिपोर्टेडली ग्लासगांव में टीम होटल से लापता हो गए। जब नेशनल कंटिंजेंट वापस घर लौटने की तैयारी कर रहा था, ऑफिशियल्स के मुताबिक उनका पासपोर्ट और रिटर्न टिकट टीम मैनेजर के पास ही था। अथॉरिटीज इस मैटर की जांच कर रही हैं। एंड लास्टली, साउथ कोरिया में 8 स्टूडेंट्स को अरेस्ट किया गया है आफ्टर अथॉरिटीज अलेज्ड दैट दे एंटर्ड ओसान एयरबेस विदाउट ऑथराइजेशन ड्यूरिंग अ प्रोटेस्ट व्हाइल शाउटिंग एंटी US स्लोगन्स। स्टूडेंट्स ने कहा है कि वो एक सेमी कंडक्टर प्रोजेक्ट से जुड़े इशू पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अथॉरिटीज फिलहाल इस मैटर की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। एंड दैट्स इट फॉर मिर्ची आवर का 3 फॉर दिस आवर। कनेक्ट करो मुझसे इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। एंड व्हाट्सएप पर नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

17. टॉरस यानी कि वृषभ राशि, आज किसी और का ड्रामा तुम्हारे नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन का पार्ट मत बनाओ। स्माइल करो, पॉपकॉर्न इमेजिनरी ही सही, लेकिन लाइफ एंजॉय जरूर करो। लकी कलर फॉर यू इज ऑरेंज, लकी नंबर इज 8। जेमिनी यानी मिथुन राशि, ओवर थिंकिंग को आज अनपेड इंटर्नशिप पर भेज दो, स्काई लिटरली नहीं गिरने वाला है, रिलैक्स। लकी कलर फॉर यू इज क्रिम्सन, लकी नंबर इज 29। कैंसर यानी कर्क राशि, दुनिया की सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आज घर फैमिली और अपने सर्कल पे फोकस करो, वही सबसे बड़ा डिफरेंस लाएगा तुम्हारी लाइफ में। लकी कलर फॉर यू इज ऑलिव, लकी नंबर इज 11। लियो यानी कि सिंह राशि, आज कॉन्फिडेंस ही तुम्हारा सुपर पावर है, एम हाई क्योंकि लायन परमिशन नहीं मांगता है, प्रेजेंस दिखाता है। लकी कलर फॉर यू इज गोल्ड, लकी नंबर इज 33। वर्गो यानी कन्या राशि, जो टेंशन तुम इमेजिन कर रहे हो, चांसेस है कि वो सिर्फ इमेजिनेशन ही निकलने वाला है, डीप ब्रेथ लो, सब मैनेजेबल होगा। लकी कलर फॉर यू इज लैवेंडर, लकी नंबर इज 6। एंड दैट वाज राशि's ओन नंबर 1। अगर तुम्हारी राशि अभी बाकी है, डोंट गो एनीवेयर, और डेली मिर्ची वाइब्स के लिए फॉलो करो मिर्ची प्रिस को ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। एंड राइट नाउ मिर्ची दैट बैंगर्स कमिंग अप योर वे, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: इस गाने को आवाज दी है अरिजीत सिंह ने, म्यूजिक दिया है अमाल मलिक ने और लिरिक्स लिखे हैं रश्मि विराग ने। आवारापन 2 से सुनते रहिए ये आवारापन, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ। रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
1: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: वेलकम बैक मेरे दोस्त, मैं हूँ तुम्हारी होस्ट, नाम है प्रिसिला और अब सुनने वाले हैं हम राशि जोन का पार्ट टू।
2: मिर्ची राशि जोन।
1: लिब्रा यानी कि तुला राशि, स्मॉल वरीज को जूम आउट कर दो, बिग पिक्चर ब्यूटीफुल लग रहा है ना, और गुड वाइब्स भी लाइन में है। लकी कलर फॉर यू इज टर्कोइज, लकी नंबर इज 24। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, हर गोल एग्जैक्टली वैसे कंप्लीट नहीं होता है जैसे प्लान किया हो, एडजस्टमेंट फेलियर नहीं होता है बल्कि स्मार्टनेस होती है। लकी कलर इज मरून, लकी नंबर इज 41। सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि, जो बर्डन कल माउंटेन लग रहा था आज मोलहिल लगेगा, यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक, लकी कलर इज स्टील, लकी नंबर इज 13। केप्रिकॉन यानी कि मकर राशि, किसी अपने को ऑनेस्ट एडवाइस की जरूरत है, आज दिल से बोलो लेक्चर मोड से नहीं, लकी कलर फॉर यू इज स्लेट कलर एंड लकी नंबर इज 27। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, बैलेंस ही आज का मैजिक वर्ड है, ना ओवर वर्क ना ओवर चिल, टीम वर्क में थोड़ा सा पेशेंस भी एड कर देना। लकी कलर इज इंडिगो, लकी नंबर इज 35। पाइसीज यानी कि मेन राशि, क्लोजेट हो या लाइफ हो, जो काम का नहीं है उसे गुड बाय बोल दो ना, स्पेस बनेगा तो अच्छी अच्छी चीजें भी आएंगी लाइफ में। लकी कलर इज मिंट ग्रीन, लकी नंबर इज 19। ओह दैट राइम्ड। एंड दैट्स इट फॉर राशि जोन पार्ट टू। मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स। मुझसे कनेक्ट करना है तो जाओ इंस्टाग्राम और एक्सपर्ट ढूंढो मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, और अगर व्हाट्सएप करना चाहते हो तो 9033 मिर्ची इज माय नंबर, 9033 6472444। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: You are listening to the MPZ Law Firm Show. Immigration woes, visa serve knows. US and Canadian immigration and nationality lawyers who speak your language.
4: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
5: नो
0: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट, ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स।
6: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
7: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन्स की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इसलिन, न्यू जर्सी।
8: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
9: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगाज, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
8: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
10: दिस ड्राइव टाइम इज ब्रॉट टू यू बाय तनिष्क ज्वेलरी। हर ड्राइव बनेगी यादगार।
11: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
12: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
11: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
13: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
11: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
14: एक ही होता है।
11: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: और बस आज का मिर्ची मॉर्निंग्स का प्लेलिस्ट यहाँ पर एंड नहीं हो रहा है। मैं यानी कि प्रिसिला जा रही हूँ यहाँ से टाटा बाय बाय बोलकर, लेकिन जाने के पहले तुम्हें कुछ बताकर जाती हूँ। स्ट्रेट फ्रॉम हॉलीवुड, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे ने बॉक्स ऑफिस पे लिटरली वेब फेंक दिया है, मतलब अपने जाल में ऑडियंस को फंसा लिया है। फिल्म ने रिलीज के सिर्फ 6 दिनों में ही $1 बिलियन का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन क्रॉस कर लिया है। इमेजिन मेकिंग इट द सेकेंड फास्टेस्ट मूवी एवर टू हिट दैट माइलस्टोन। नंबर वन पर अभी भी एवेंजर्स का एंड गेम है, लेकिन पीटर पार्कर ने भी बोल दिया है फ्रेंडली नेबरहुड, हा हा नहीं भाई, मैं ग्लोबल सुपरस्टार हूं। एंड ऑनेस्टली स्पाइडरमैन की लाइफ देखकर लगता है ना, ऑफिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, पर्सनल लाइफ, सुपर हीरो हो या देसी अडल्ट हो, बैलेंसिंग एक्ट तो सबको करना पड़ता है, राइट? और चाहे लाइफ एक मकड़ी के जाले से ही क्यों ना अटकी पड़ी हो, ओके आई नो दैट्स अ बैड जोक। तो इसी वजह से मेरी तरफ से इतना ही आज के लिए। थैंक यू फॉर लेटिंग मी बी पार्ट ऑफ योर कम्यूट, योर किचन प्लेलिस्ट, या फिर तुम्हारा वर्क फ्रॉम होम, या फिर डेस्क, या फिर तुम्हारे घर में किसी भी कोने में बैठ के तुमने अगर मुझे सुना है तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। कल फिर से मिलेंगे नए गाने, नए स्टोरीज और नई अपडेट्स लेकर आऊंगी तुम्हारे लिए। मेरा नाम है प्रिसिला, याद रखना, और ये भी याद रखना कि मुझे जाकर सोशल मीडिया पर फॉलो करना है। मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम, MIRCHIPRIS। इंस्टाग्राम और एक्स दोनों पर ही मैं उपलब्ध हूं, और साथ साथ में व्हाट्सएप पर भी 9033 मिर्ची इज माय नंबर, दैट्स 9033647244। फिलहाल के लिए टाटा बाय बाय फ्रॉम मी, यू स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: सुबह सुबह का टाइम हुआ करता था और स्कूल बस में सब चुप होते थे। क्यों? क्योंकि स्कूल असेंबली के लिए न्यूज जो ढूंढनी होती थी।
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा, and now you tune in with me on Mirji. और हाँ, हमारी जिंदगी में ऐसा भी तो एक टाइम हुआ करता था यार। आज की मॉर्निंग्स हम कहते हैं कि वी मस्ट गो स्लो, आराम से कॉफी इंजॉय करो एंड ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन बचपन की मॉर्निंग्स हमारी बहुत तूफानी हुआ करती थी यार। भागम भाग में तैयार होना, भागम भाग में नाश्ता करना, भागम भाग में बस पकड़ना, और फिर फाइनली जब बस में बैठ जाते थे तो सब शांत। क्यों? क्योंकि हम सब ना न्यूज लिख रहे होते थे। मुझे नहीं पता आपके स्कूल में ऐसा होता था कि नहीं होता था, लेकिन हमारे स्कूल में डेफिनेटली होता था कि यार हम सबको ना एक छोटी सी डायरी मेंटेन करनी पड़ती थी। वो डायरी हमेशा हमारी पॉकेट्स में रहा करती थी, एंड उस डायरी के अंदर रोज सुबह हमें न्यूज लिखकर ले जानी होती थी स्कूल, ताकि असेंबली में अगर अचानचूक किसी को बुला लिया जाए, जो कि होता भी था हमारे साथ, हमें न्यूज बोलनी आनी चाहिए ऑन द स्टेज। और इसीलिए सब अपने आप को बचाते हुए हर रोज सुबह बस के अंदर न्यूज ही लिख रहे होते थे, एक नेशनल, एक इंटरनेशनल और एक लोकल। तब ना ये सिस्टम बहुत बोर लगा करता था, बहुत चिढ़ होती थी, और दिमाग यही कह रहा होता था कि यार ये रोज सुबह क्या क्या टंडे लगाने पड़ते हैं यार, न्यूज़पेपर घर से लेकर आओ और फिर बस में बैठ के न्यूज टीपो। हमारे घर में ना दो न्यूज़पेपर आते थे इसी चक्कर में, एक जो मैं स्कूल लेकर जा पाऊं जब मुझे न्यूज लिखनी होती थी बस के अंदर, और दूसरा जो घर पे रह जाए ताकि बड़े पढ़ पाए। लेकिन ये जो चिड़न कुड़न बलन थी ना, और जो बोरियत होती थी इन सारे कामों को करते हुए, आज समझ आ रहा है कि ये अच्छी चीज थी यार। कसी जो न्यूज अपडेट रखने की आदत मुझे आज है ना, वो यहीं से तो आई है। वैसे ना लाइफ में और भी ऐसी कई सारी आदतें हैं जो हमें तब तो बहुत ही इरिटेटिंग लगा करती थी, क्योंकि तब करना पड़ता था क्योंकि हम छोटे हैं, लेकिन आज जब वो हमारी लाइफ में एक अच्छे तरीके से इन्वॉल्व है और डिसिप्लिन लेकर आ रही है ना, तो लगता है कि हाँ यार कुछ आदतें अच्छी होती हैं। बताऊंगी आपको थोड़ी देर में उन आदतों के बारे में, लेकिन अभी के लिए मिड डे मोहब्बत की गाड़ी को 90s के गियर में डालने की बारी आ चुकी है। यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: Inefficient,
3: very complex,
4: clumsy or
5: confusion ही confusion.
0: Disjointed software को use करना उतना easy नहीं जितना आप समझ रहे हैं. टूटे फूटे software से छुटकारा पाओ. अपने business के लिए Zoho One ले आओ. Zoho One is an all-in-one integrated software suite जिससे आप अपना पूरा business चला सकते हैं. Yes, you heard that right. You can run your entire business, sales, marketing से लेके customer support, accounting, operations या HR. काम अनेक, software एक, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
1: जय गुरुदेव. गायत्री चेतना सेंटर पिस्काटवे आपने अने आपना परिवार ने गुरु पूर्णिमा अने रुद्राभिषेक महोत्सव मा स्नेह भर्यू आमंत्रण आपे छे. शनिवार 1 ऑगस्टे सवारे 10 वागे शिवजी रुद्राभिषेक अने सांजे 5 वागे विराट दीप यज्ञ. रविवार 2 ऑगस्टे सवारे 10 वागे 251 कुंडिया गायत्री महायज्ञ. शांत कुंज हरिद्वार ना पूज्य संतो द्वारा वैदिक विधि मुजब अनुष्ठान अने डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी नी पावन उपस्थिति. 7323578200. जय गुरुदेव.
0: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. लॉग ऑन टू lionmtg.com.
6: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ. जेसन एंड समीर आर बैक एट SD कैपिटल फंडिंग. बीट योर लॉक्ड रेट विद आवर रेट सेवर टुडे.
7: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
8: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
7: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice. Sirf happy friendship day kahe ke kaam mat chalao. Get ready for the ultimate friendship day celebration. Jyotsana and Tarun Sharma of Cultivate Talents Unlimited present Dosti Special Jamming Night 1.0. Live band and Bollywood singers, shayari or non-stop open dance floor.
8: And the best part, sirf $65 mein 3-course dinner aur dher sari masti. Friday, August 7th, 7 PM at Royal Albert's Palace, New Jersey. Tickets available on sulekha.com or call 732-997-2409.
9: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा.
10: बैक टू बैक गाना सुनेगा.
11: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: रात में कपड़े प्रेस करके बैग जमा के सारी तैयारी करके सोना, ये हमारी बचपन की आदत थी। और जब रात में ये सारे काम करने पड़ते थे ना, आधी नींदों में थके हुए होते थे फिर भी, क्योंकि अगले दिन स्कूल है, तो बहुत आलस आता था यार। मम्मा इतना बोल बोल के पुश कर करके हमसे काम करवाती थी ताकि अगली सुबह हम स्कूल जाने के लिए लेट ना हो जाए। लेकिन ये आदत ना आज बड़ी अच्छी लगती है।
2: आज की बात 90s के साथ।
1: Hi, this is me, सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और बचपन की कुछ आदतें जो तब तो हमें लगता था कि बड़ी फोर्स्ड है, हम बड़े बेमन से किया करते थे, लेकिन आज लगता है कि यार अच्छा हुआ जो ये सब सीख गए, काम में आ रही है। उनमें से एक यही है, रात में सुबह की तैयारी करके रख लेना सारे कामों की। और उसमें से स्पेशली कपड़े प्रेस करने वाली जो आदत थी हमारी, ये बड़ी सही काम आ रही है यार आज के टाइम पर। मतलब मैं तो अब उन लोगों को भी बड़ा प्रेस करती हूँ जो मैं तो कर ही रही हूँ लेकिन खुद भी इस आदत को फॉलो कर रहे, क्योंकि काफी सारे लोग इस आदत को भूल भी जाते हैं। लेकिन आज भी जो लोग इस आदत पर अपना पूरा ध्यान फरमाते हैं वो मेरा ध्यान भी ले जाते हैं। और ऐसे लोगों को देखकर समझ में आता है, हाँ ये इंसान जो है ना, ये बड़ा डिसिप्लिन्ड है। So, जो कहां की चीज कहां जोड़ के हम इंसान की पर्सनालिटी ट्रेट निकाल लेते हैं कि ये इंसान डिसिप्लिन है क्योंकि ये रात में अपने कपड़े प्रेस करके सोता है। और हाँ, ये बात सच्ची है कि मुझे वो लड़की पसंद है जो रात में अपने सुबह की तैयारी कर लेते हैं। इनफैक्ट पता है, आज भी मेरे साथ ऐसा होता है कि अगली सुबह की जब तैयारी कर रही होती हूँ ना, रात में अपने कपड़े वपड़े प्रेस करके रख रही होती हूँ, तो ऐसा फील आ रहा होता है जैसे कि स्कूल की तैयारी कर रही हूँ। आज तक ये फील कभी नहीं आया है कि मैं बड़ी हो गई हूँ और मुझे ऑफिस जाने की या कहीं बाहर जाने की तैयारी करनी पड़ रही है। आज भी स्कूल वाला ही फील आ रहा होता है, जो फील शायद आपको भी समझ आए, जो सुबह भी आता है। अगर कभी ऐसा होता है कि हम अपने रूटीन से पहले सुबह सुबह उठ जाते हैं किसी काम के चलते, तो ऐसा लगता है जैसे स्कूल जाने के लिए उठे। यू कैन टेक द किड आउट ऑफ द स्कूल, लेकिन यू कैन नॉट टेक द स्कूल आउट ऑफ दैट किड जो आज भी हमारे अंदर कहीं बसा हुआ है। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: 92.7 FM, Radio Mitri, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot.
1: Saad Jeetu Raj. Only on Mirchi. It's hot.
2: Hi, my name is Peter Parker.
3: Okay then, Spider-Man brand new day aa gayi hai. And for God's sake, please theater mein jaakar hi dekho is what Jeetu Raj will tell you. Kyunki is film mein kahi chhoti chhoti aisi cheeze hain. Especially jab characters aapas mein baat karte hain, to unki whispers, unka pyar, unka ghussa, wo theater mein jo maza deta hai, wo kahi bhi nahi dega. And for God's sake, kisi se bhi story mat suno. Don't take any spoilers. Film mein kahi aisi cheeze hain jo tere ko itna surprise kar jayengi.
4: Spiders have three life cycles.
3: I just can't begin to tell you. I'll tell you the biggest thing. Spider-Man में villain कौन है? यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में एक पूरा का पूरा शहर suffocate होने लगता है? क्यों Spider-Man अपने आप में घुटने लगता है? ये reason उस villain पर जाकर रुकता है. I'm not going to tell you who it is. Also, तेरे में से कई लोग ये expect करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात Jacob Batrano, also MJ अर्थात Zendaya and Peter Parker यानी Tom Holland. In this film, it's a little different. In fact, I can go ahead and tell you कि ये film पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है. क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो. Also, there's a particular scene between John Bernthal, अर्थात Frank Castle, A.K.A. Punisher, and Tom Holland, अर्थात Peter Parker, जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा. Also, if you have kids around you, enjoy it fully, क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं, तालियां बजाते हैं, and it's all required in Spider-Man Brand New Day. But I must give you a disclaimer. अगर तूने Spider-Man के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज YouTube पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म. तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा. फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से Jeetu Raj टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है. ओ ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माय रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची Jeetu Raj, जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई हैं Jeetu Raj ने. वो क्या है? ओके, आई टोल्ड यू, इंस्टाग्राम मिर्ची Jeetu Raj. फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे. बाय द वे, कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या Zendaya एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है. फॉर गॉड्स सेक ब्रो, अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो. दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे, रेकमेंडेड बाय Jeetu Raj विद फोर मिर्चीज.
1: साथ Jeetu Raj, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: Looking for the best care for your child? 7 Days Pediatrics in Edison is here for you.
8: From newborn to adolescents, we offer comprehensive care. Get hassle-free same-day appointments, immunizations, and well child visits.
7: Our multilingual staff is available evening and weekends, along with easy telehealth options. Proudly serving the Edison and Woodbridge areas. Book your appointments today. Visit 7DaysPediatrics.com or call 732-307-0668.
9: You are listening to the MPZ Law Firm Show. Immigration woes, visa serve knows. US and Canadian immigration and nationality lawyers who speak your language.
10: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
11: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
10: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन.
12: तेरा क्या होगा कालिया?
13: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
12: अब मिर्ची खा.
14: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: आजकल जो हम हमेशा अपने साथ एक बॉटल रखते हैं कैरी करते हुए, हमें लगता है कि हम बॉलीवुड को कॉपी कर रहे हैं. नो वेज, ये आदत हमारे बचपन की है.
2: आज की बार 90s के साथ.
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा. और ये आदत हमने स्कूल से सीखी है यार, जब रोज बॉटल भरकर ले जाना हमारे लिए लाजमी हुआ करता था. इनफैक्ट कभी कभी तो ऐसा लगता था कि यार ये बॉटल और कैरी करनी पड़ती है, क्योंकि वो लटकाने वाली बॉटल होती थी, कैरी करने वाली बॉटल नहीं हुआ करती थी. हमेशा एक बॉटल हमारे गले में लटकी रहती थी, कंधे पे लटकी रहती थी, या कैसे भी करके उसे हमें कैरी तो करना ही होता था. तब बड़ा जोर आता था, लेकिन अब लगता है कि यार ये जो स्किन के हाइड्रेशन के लिए आदत पड़ी है ना, ये बड़ी सही पड़ी है यार. हमें लग रहा होता है कि हमने बॉलीवुड से ये सारी चीजें सीखी हैं, लेकिन नहीं बाबा, हमने ये आदत जो है ये बचपन में ही सीख ली थी. टू कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड स्कूल में टीचर्स कब से कहा करती थी यार. और अब जो हमें ये बोझ नहीं लगता है ना कि हमें बॉटल भी कैरी करनी है, वो इसी वजह से, क्योंकि बचपन में हम इसके ऑलरेडी आदि और इत्यादि हो गए थे. बॉलीवुड ने सिर्फ और सिर्फ इन बॉटल्स को थोड़ा फैंसी कर दिया है, लेकिन ये जो आदत है ना, इसका क्रेडिट बॉलीवुड को नहीं दे सकते बॉस, बचपन को देना जरूरी है. यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा. On Mirchi, it's hot.

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: बिपाशा बसु जो नो एंट्री में इतना छा गई थी, क्या आपको पता है वो नो एंट्री में होने ही नहीं वाली थी।
0: मिर्ची फिल्मी गुल्लक।
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। And well, बिपाशा बसु का जो कैरेक्टर था, that was supposed to be played by प्रियंका चोपड़ा। लेकिन फिर हुआ ये कि प्रियंका चोपड़ा को बैकआउट करना पड़ गया, क्योंकि वो मुझसे शादी करोगी की शूट में बिजी थी और नो एंट्री की शूट पे नहीं आ पा रही थी। तो उन्होंने जो एडवांस भी लिया था वो भी उनको वापस करना पड़ गया था। लेकिन बिपाशा बसु की जैसे ही एंट्री हुई, एक्चुअली हुआ ये कि इतनी लास्ट मिनट एंट्री हुई ना कि वो एक वेकेशन से लौटी थी और उन्होंने वजन बढ़ा लिया था। अब ये जो कैरेक्टर उनको प्ले करना था वो तो हम सबको ही पता है कि बड़ा हॉट एंड सेक्सी कैरेक्टर था। इनफैक्ट इन एन इंटरव्यू कहीं जॉन अब्राहम को मैंने ये भी बोलते हुए सुना था कि बिपाशा जो थी वो बीमार भी पड़ गई थी, जिसकी वजह से उनके वर्कआउट्स और डाइट्स जो हैं वो पूरी तरीके से कंप्लीट ही नहीं हो पा रहे थे। यानी कि हुआ था सोने पे अभागा। लेकिन फिर भी इस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए बिपाशा बसु ने पूरी मेहनत करी और पूरी कोशिश करी कि वो कामयाब हो पाए। एंड इनफैक्ट वो कामयाब हुई भी। आज भी हमें बिपाशा बसु का वो कैरेक्टर इन नो एंट्री स्टिल याद है। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Zara. Only on Mirchi. It's hot.
1: बचपन से हम इस गाने को गुनगुनाते आए हैं और आज इसकी धुन की सच्चाई सामने आ गई है.
2: Mirchi, Thugs of Filmistan.
1: Well, त्रिदेव का ये गाना.
3: Oh, yeah.

अब आप भी सोच रहे होंगे कि क्या यार सारा दोनों धुने एक के बाद एक बजा दी, लेकिन नहीं, ये एक्चुअली दो अलग अलग जगहों से उठाई हुई धुने हैं। एक तो जो मैंने आपको सुनाई वो त्रिदेव की थी, एंड ये जो म्यूजिक जहां से इंस्पायर्ड है, रादर कॉपीड है, इज मायमी साउंड मशीन का द रिदम इज गोना गेट यू। यार वैसे तिरछी टोपी वाले ने तो शौक से एज अ फैशन स्टेटमेंट ये टोपी पहनी थी, लेकिन म्यूजिक डायरेक्टर विजू शाह ने तो पूरी ऑडियंस को ही टोपी पहना दी। वाह, स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: अपने सपनों की ऊंचाई को छूने के लिए एम्स एजुकेशन हमेशा आपके साथ है.
3: The College of Health Sciences offers various degrees and certifications in pharmacy tech, medical billing and coding, EKG and phlebotomy, medical assistant and many more in-demand healthcare careers.
2: Get clinical experience and job assistance at the most reputed hospitals and medical centers. Training is provided online and on campus. For enrollment, call 908-222-0002 or visit aimseducation.edu.
4: The mortgage industry has changed over the years, but hamari honest advice aaj bhi wahi hai.
5: Jason and Sameer are officially relaunching SD Capital Funding with a renewed focus on you.
4: Buying a home, our rate saver will beat your locked rate.
5: Already a homeowner? Drop your monthly payments with our free rate alert system. SD Capital Funding, service jis par sab kare bharosa.
6: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
7: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
6: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
8: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए Lion Mortgage. The king of mortgage industry.
9: Since over 15 years, Lion Mortgage has been assisting first-time home buyers with loan. Their experience and knowledge of mortgage industry really helps clients to get the best possible deals on refinance. A professional service with quick, accurate and impressive follow-up. Lion Mortgage offers special zero closing cost on refinance options.
10: For more information, call 732-339-3155. That is 732-339-3155.
11: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं. ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स.
12: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन्स की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल. ये भरोसा है साथ का साथ हर खुशी का. सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी. स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इज़लिन, न्यू जर्सी.
13: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है.
14: Of the crowd.
13: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है.
15: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा.
13: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
16: एक ही होता है.
13: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची. बाकी जो है वो सिर्फ है. रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं. इट्स हॉट.
17: It's 12:30 p.m. Mirchi time check. RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels. Best quality, best price.

0: ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: जय गुरुदेव। गायत्री चेतना सेंटर पिस्कारोवे की ओर से आप और आपके परिवार को गुरु पूर्णिमा एवं रुद्राभिषेक महोत्सव में स्नेहपूर्ण आमंत्रण। शनिवार 1 अगस्त को सुबह 10 बजे शिवजी रुद्राभिषेक और शाम 5 बजे विराट दीप यज्ञ। रविवार 2 अगस्त को सुबह 10 बजे 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ, शांति कुंज हरिद्वार के पूज्य संतों द्वारा वैदिक विधि से अनुष्ठान और डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी की पावन उपस्थिति। अधिक जानकारी के लिए 7323578200। जय गुरुदेव।
4: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
5: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
4: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
6: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
7: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगाज, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
6: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
8: तेरा क्या होगा कालिया?
9: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
8: अब मिर्ची खा।
10: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: लकी अली एंड सुनिधि चौहान की आवाज में दिस गाना इज फ्रॉम द फिल्म सुर, जो कि कैसेट के साइड बी का चौथा गाना है।
0: मिर्ची 90s कैसेट।
1: आ भी जा, ये गाना मुझे बहुत खूबसूरत लगता है यार। हालांकि गाना थोड़ा सैड है, मेलैंकली है इस गाने के अंदर, लेकिन ये गाना जो है ये पॉजिटिविटी की बात कर रहा होता है, क्योंकि इस गाने में यही गाया गया है कि आ भी जा ए सुबह आ भी जा, और रात को कर विदा दिल रुबा आ भी जा। यानी कि हम जो वो टनल के एंड में एक लाइट ढूंढ रहे होते हैं ना, दिस गाना इज समवेयर अराउंड दैट फैक्ट ओनली। अब ये सुबह ना किसी के लिए मोहब्बत हो सकती है, ये सुबह किसी के लिए कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, ये सुबह किसी के लिए सिर्फ और सिर्फ जीने की एक वजह हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि इंसान कौन सी सिचुएशन में, और उस सिचुएशन के हिसाब से उस इंसान के लिए ये सुबह क्या मायने रखती है। इस गाने में हालांकि मोहब्बत के बारे में बात की गई है, और तभी ये कहा गया है कि मैं हूँ गगन तू है जमीन, अधूरी सी मेरे बिना, रात को कर विदा दिल रुबा भी जा। लेकिन वही वाली बात है कि हम लाइफ में अभी फिलहाल किस चीज को रोमांटिसाइज कर रहे हैं, क्या ऐसी चीज है जो हमें चाहिए और तहे दिल से हम उस चीज के लिए दुआएं कर रहे हैं। मेरी दुआ भी आपके लिए है कि आपकी वो दुआ कबूल हो जाए और जाते जाते यही गाना हो जाए। क्या बोलते हो, ये गाना आपके लिए लगाती भी जा रही हूँ। एंजॉय द ट्रैक, एंड मैं अब कह देती हूँ कि हम है रही प्यार के, लेकिन फिर मिलेंगे चलते चलते। बाकी आप अपना अच्छा खासा ख्याल रखिएगा, और यहाँ के अलावा मिल जाइएगा मुझे ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा। Stay tuned to Mirchi, 'cause it's hot.

मुझे लगता है हर किसी के अंदर एक बावर्ची होता है। पुरानी जीन्स पर हाय, मैं हूँ श्रेया। और सबने ना कभी कुछ ना कुछ तो कुक किया होता है, फिर चाहे वो हॉस्टल में तुम्हारे 2 मिनट नूडल्स हो या फिर चाय। तो हम सब कहीं ना कहीं तो बावर्ची होते ही हैं। इसी टाइटल को रखकर ऋषिकेश दा ने उस जमाने की एक बड़ी ही खूबसूरत फिल्म बनाई विद राजेश खन्ना एस बावर्ची एंड जया बच्चन जी। इस फिल्म में बहुत सारे कैरेक्टर्स थे, एके हंगल साहब, असरानी साहब, दुर्गा खोटे। तो आज ना इसी मूवी की कहानियां बताऊंगी जो कि मैं कुक नहीं करके आई हूँ, वो सच में ये खट्टी मीठी किस्से एक्चुअली में ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ दिस फिल्म हुए थे। शुरुआत करेंगे फिल्म की कास्ट और क्रेडिट से। वापस आओ श्रेया के साथ ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: Oh no!
4: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट, ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स।
5: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए, इसीलिए लायन मॉर्गेज, द किंग ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री।
6: सिंस ओवर 15 इयर्स, लायन मॉर्गेज हैज बीन असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स विद लोन। देयर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री रियली हेल्प्स क्लाइंट्स टू गेट द बेस्ट पॉसिबल डील्स ऑन रीफाइनेंस। अ प्रोफेशनल सर्विस विद क्विक, एक्यूरेट एंड इंप्रेसिव फॉलो अप। लायन मॉर्गेज ऑफर्स स्पेशल जीरो क्लोजिंग कॉस्ट ऑन रीफाइनेंस ऑप्शंस।
2: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155, दैट इज 732-339-3155.
7: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
8: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
7: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
9: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
10: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
9: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
0: Listener mein back to back gana sunega. Back to back gana sunega. Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot. Ah, आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

इससे पहले तक किसी भी फिल्म में ऐसा नहीं हुआ था। पुरानी जीन्स पर हाय, मैं हूँ श्रेया और आज ना ऋषिकेश दा, राजेश खन्ना, जया भादुड़ी जी की फिल्म बावर्ची की बात हो रही है। आपको पता है इससे पहले किसी भी इंडियन फिल्म में ऐसा नहीं हुआ था कि कास्ट और क्रेडिट को ना दिखाया जाए। हर फिल्म में जैसे क्रेडिट दिए जाते हैं ना, ये फिल्म पहली ऐसी फिल्म थी जिसमें क्रेडिट्स फिल्म के शुरुआत में नहीं दिए गए। फिर क्या किया गया, अगर आपने ये फिल्म देखी है तो पता होगा, और अगर नहीं देखी है या फिर बहुत पहले देखी थी तो मैं याद दिलाऊंगी। कम राइट बैक विद मी श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have

0: Have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
1: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
2: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
3: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
2: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
4: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी।
5: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस।
4: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस। कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस।
6: ओह नो,
1: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब। इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स।
7: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
1: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइंस की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का, साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इजलिन, न्यू जर्सी।
8: तेरा क्या होगा कालिया?
9: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
8: अब मिर्ची खा।
10: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
1: It's 1:30 p.m. Mirchi time check. RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels, best quality, best price.
11: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।

ये यूनिक आइडिया फिल्म के डायरेक्टर ऋषिकेश दा का था। पुरानी जींस पर हाय, मैं हूँ श्रेया एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द लेजेंडरी फिल्म बावर्ची, जो कि ऋषिकेश मुखर्जी ने बनाई थी। राजेश खन्ना थे, जया बच्चन थी और भी बहुत सारे एक्टर्स थे। अब इस फिल्म में पहली बार ऐसा हुआ कि क्रेडिट्स नहीं दिए गए, यानी देयर वर नो टाइटल कार्ड्स। तो फिर क्या किया गया था? इसमें अमिताभ बच्चन जी के वॉइस ओवर ने हर एक कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया था और ये यूनिक आइडिया पहली बार किसी फिल्म में देखा गया था। अच्छा, अमिताभ बच्चन उस टाइम पे बहुत बिजी थे, लेकिन अपने बिजी स्केड्यूल में से क्यों उन्होंने टाइम निकाला, ये अभी बताऊंगी श्रेया के साथ। वापस आओ ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: Looking for the best care for your child? 7 Days Pediatrics in Edison is here for you.
5: From newborn to adolescents, we offer comprehensive care. Get hassle-free same-day appointments, immunizations, and well child visits.
4: Our multilingual staff is available evening and weekends, along with easy telehealth options. Proudly serving the Edison and Woodbridge areas. Book your appointments today. Visit 7DaysPediatrics.com or call 732-307-0668.
6: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
7: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगाज, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
6: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इसलिन।
8: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी।
9: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस।
8: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस। कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस। सिर्फ हैप्पी फ्रेंडशिप डे कह के काम मत चलाओ। गेट रेडी फॉर द अल्टीमेट फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेशन। ज्योत्सना एंड तरुण शर्मा ऑफ कल्टीवेट टैलेंट्स अनलिमिटेड प्रेजेंट दोस्ती स्पेशल जैमिंग नाइट 1.0। लाइव बैंड एंड बॉलीवुड सिंगर्स, शायरी और नॉन स्टॉप ओपन डांस फ्लो।
9: एंड द बेस्ट पार्ट, सिर्फ $65 में 3-course डिनर और ढेर सारी मस्ती। फ्राइडे ऑगस्ट 7th 7 PM एट रॉयल अल्बर्ट्स पैलेस, न्यू जर्सी। टिकट्स अवेलेबल ऑन sulekha.com और कॉल 732-997-2409।
10: दिस ड्राइव टाइम इज ब्रॉट टू यू बाय तनिष्क ज्वेलरी। हर ड्राइव बनेगी यादगार।
11: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
12: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
11: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
13: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
11: मॉरल ऑफ द स्टोरी, नंबर वन सिर्फ एक ही होता है,
14: एक ही होता है।
11: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची। बाकी जो है वो सिर्फ है, रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

टाइटल्स के साथ एक्सपेरिमेंट ये पहले कभी किसी ने नहीं सोचा था। इट वॉज द फिनोमिनल ऋषिकेश मुखर्जी जिन्होंने ये सोचा भी और अपनी फिल्म बावर्ची में किया भी। पुरानी जीन्स पर हाय, मेरा नाम है श्रेया और मैं बात कर रही थी द लेजेंडरी फिल्म बावर्ची की, ऋषिकेश दा की डायरेक्टेड, जिसमें बावर्ची बने थे राजेश खन्ना, उनकी लव इंटरेस्ट बनी थी जया बच्चन जी। और इस फिल्म में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि कास्ट एंड क्रू के नाम नहीं दिए गए थे, बल्कि एक बहुत यूनिक आइडिया सोचा ऋषिकेश दा ने, एंड दैट वाज कि हर एक कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करने के लिए अमिताभ बच्चन का वॉइस ओवर यूज किया गया। अब अमिताभ बच्चन उस टाइम पे बहुत बिजी थे, तो ऋषिकेश दा उनसे ये फेवर मांगने में थोड़ा कतरा रहे थे। उन्होंने जया जी से वाइल्ड शूटिंग द फिल्म ऐसे ही मुस्कुरा के बात बात में कह दिया कि काश अमित ये काम कर पाता। ये बात जया जी ने घर जा करके अमित जी को डिनर पे बताई। अमिताभ बच्चन और जया जी के लिए ऋषिकेश दा फादरली फिगर थे, हमेशा से एक बड़े भाई थे। जैसे ही अमित जी ने ये बात सुनी, वो ऋषिकेश दा के घर पहुंच गए और उनसे नाराज होके कहा, दादा ये बात आप मुझसे आके नहीं कह सकते थे, आपको जया की जरूरत पड़ी इसके लिए। ऋषिकेश दा ने मुस्कुरा दिया और उसके बाद तो वी ऑल नो व्हाट हैपेंड। पुरानी जीन्स पर ऐसे बहुत सारे किस्से हैं मेरे पास, तो बस वापस आओ श्रेया के साथ।

इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ना ये दोनों डेटिंग फेज में थे। पुरानी जीन्स पर उस जमाने के गाने, उस जमाने की बातें, इस जमाने की श्रेया के साथ। अच्छा, तो मैं बात कर रही थी बावर्ची की थोड़ी देर पहले। तो इस फिल्म के दौरान अमिताभ बच्चन और जया जी ना एक दूसरे से मिलजुल रहे थे, एक दूसरे को समझ रहे थे, वो प्यार में धीरे धीरे पड़ रहे थे। तो क्या होता था कि अमित जी जया जी को मिलने फिल्म के सेट पे जाते थे। अब सेट पे तो उनको उस टाइम के सुपरस्टार काका यानी राजेश खन्ना भी मिलते थे, जिन्हें अमिताभ बच्चन थोड़े अखरते थे। अच्छा, काका उस टाइम पे अपने स्टारडम के खुमार में भी थे। अमिताभ बच्चन बिजी जरूर थे, उनके पास फिल्में बहुत थीं, लेकिन जनरली उनकी फिल्में इतनी खास चल नहीं रही थी। ऐसे में काका उनको ताने मारा करते थे, रिमार्क्स पास किया करते थे। क्या अमिताभ बच्चन को गुस्सा आया या फिर उनकी तब की गर्लफ्रेंड जया जी को, बताऊंगी थोड़े से गानों के बाद। मुझे बहुत मजा आता है आपको ऐसे सस्पेंस में छोड़ के जाने में, क्योंकि फिर मुझे यकीन होता है कि आप वापस यहाँ होंगे। सो कम राइट बैक पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ श्रेया।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: अपने सपनों की ऊंचाई को छूने के लिए एम्स एजुकेशन हमेशा आपके साथ है।
4: The College of Health Sciences offers various degrees and certifications in pharmacy tech, medical billing and coding, EKG and phlebotomy, medical assistant and many more in-demand healthcare careers.
3: Get clinical experience and job assistance at the most reputed hospitals and medical centers. Training is provided online and on campus. For enrollment, call 908-222-0002 or visit aimseducation.edu.
5: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
6: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन्स की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इसलिन, न्यू जर्सी।
7: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
8: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
7: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
9: यू आर लिसनिंग टू द एमपीजी लॉ फर्म शो। Immigration woes, visa serve knows. US and Canadian immigration and nationality lawyers who speak your language.
10: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
11: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
10: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

जब अमिताभ बच्चन एंड जया जी वर डेटिंग, वो एक दूसरे को मिल रहे थे, जान रहे थे, समझ रहे थे, धीरे धीरे प्यार में पड़ रहे थे। तो अमित जी के पास बड़ी सारी फिल्में थी, वो बिजी भी थे, लेकिन उनकी फिल्में इतनी चल नहीं रही थी। ऐसे में द सुपर सक्सेसफुल राजेश खन्ना जब उनको सेट पे देखते तो ऑफकोर्स उन्हें वो कॉम्पिटिशन लगते और वो उनको बहुत सारे ताने मारते। अमिताभ बच्चन भी सुन लेते, जया बच्चन भी सुन लेती। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब काका ने एक बहुत ही खराब शब्द कहा। इस शब्द को सुन करके जया जी का सब्र का बांध टूट पड़ा और उन्होंने काका को जाकर के उनके कान में एक ऐसी बात बोली जिसके बाद से उन्होंने कभी भी अमिताभ बच्चन को कुछ नहीं कहा। वो शब्द क्या था अभी बताऊंगी। श्रेया के साथ वापस आओ, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं।
4: हजारों लोग एक तिरंगा एक दिल, और इस फीलिंग का नाम है इंडिया डे परेड 2026।
5: संडे अगस्त 9th 1 PM onwards फ्रॉम इसलिन टू एडिसन ऑन ओक ट्री रोड फीचरिंग लक्ष्यराज सिंह जी महाराज, ऋचा अनिरुद्ध, सानिया मल्होत्रा एंड मोर। जॉइन द कल्चरल फेस्ट एंड मेला बिहाइंड उमिया धाम टेम्पल।
6: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।

0: ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
1: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
0: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
2: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
3: सिर्फ हैप्पी फ्रेंडशिप डे कह के काम मत चलाओ। गेट रेडी फॉर द अल्टीमेट फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेशन। ज्योत्सना एंड तरुण शर्मा ऑफ कल्टीवेट टैलेंट्स अनलिमिटेड प्रेजेंट दोस्ती स्पेशल जैमिंग नाइट 1.0। लाइव बैंड एंड बॉलीवुड सिंगर्स, शायरी और नॉन स्टॉप ओपन डांस फ्लो।
4: एंड द बेस्ट पार्ट, सिर्फ $65 में 3-course डिनर और ढेर सारी मस्ती। फ्राइडे ऑगस्ट 7th 7 PM एट रॉयल अल्बर्ट पैलेस, न्यू जर्सी। टिकट्स अवेलेबल ऑन sulekha.com और कॉल 732-997-2409।
5: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
6: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
7: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
8: It's 2:30 PM. Mirchi time check. RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels. Best quality, best price.
9: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: मनहूस, ये कह के बुलाया था काका ने अमिताभ बच्चन जी को। पुरानी जीन्स पर हाय, मैं हूँ श्रेया और आज बात हो रही है बावर्ची फिल्म की। इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले ऋषिकेश दा, फिल्म के मेन लीड राजेश खन्ना और फिल्म की हीरोइन जया बच्चन। ये वो टाइम था जब जया बच्चन जया बहादुरी थी और अमिताभ बच्चन बहुत सारी फिल्में कर रहे थे लेकिन उनकी फिल्म सक्सेसफुल नहीं हो रही थी, वो फिल्में फ्लॉप होती जा रही थी एक के बाद एक। ये वो टाइम था जब जया जी और अमिताभ बच्चन प्यार करने लगे थे एक दूसरे से, तो अमित जी ना बावर्ची के सेट पे उनसे मिलने जाते थे और हाँ ऋषिकेश दा तो उनके दोस्त ही थे। ऐसे में राजेश खन्ना को बहुत अखड़ते थे। राजेश खन्ना चलते फिरते अमिताभ बच्चन को कोई ना कोई ताना मार ही देते थे। पर एक दिन ऐसा आया जब जया जी के सब्र का बांध टूट गया और वो था जब राजेश खन्ना ने अमिताभ बच्चन को कहा, मनहूस, तुम मनहूस हो, जिस भी फिल्म में जाते हो वो फ्लॉप हो जाती है। ये बात जया जी के दिल पे सीधे जाके चुभी। उनको इतना गुस्सा आया कि अमित जी उन्हें चाय पे वापस बैठाते रहे, बैठ जाओ छोड़ो जाने दो। जया जी गुस्से में उठी, राजेश खन्ना के पास गई और उनके कान में कहा, एक दिन पूरी दुनिया देखेगी कि ये आदमी क्या बनेगा और आप क्या रह जाएंगे। इस एक लाइन के बाद वो वापस आके चाय पीने लगी। एंड आफ्टर दिस काका ने अमिताभ बच्चन को कभी ताना नहीं मारा। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ श्रेया और भी किस्से हैं उस जमाने के, तो गाने सुन करके यहीं वापस आना।
1: होठों पे रंगत है, दिल में मोहब्बत है, क्या जिसमें औरत है, बस जन्नत ही जन्नत है।

अच्छा एक और चीज में ये फिल्म बावर्ची खास थी। पुरानी जीन्स पर हाय, मेरा नाम है श्रेया और आज मूवी बावर्ची की बात कर रहे हैं। राजेश खन्ना, जया बच्चन एंड ऑफ कोर्स डायरेक्टेड बाय ऋषिकेश मुखर्जी। राजेश खन्ना यानी काका उस टाइम पे ना सुपरस्टार थे, बल्कि कहा जाता है कि इंडिया के वो फर्स्ट सुपरस्टार थे। उनके साथ हर हीरोइन ने कई सारी फिल्मों में काम किया था, फिर चाहे वो शर्मिला टैगोर हो, मुमताज जी हो, आशा पारेख हो, जीना तमान हो, तनुजा जी हो, ऑल ऑफ देम। लेकिन सिर्फ एक हीरोइन थी जो उस टाइम पे अपने स्टारडम के पीक पे थी, पर काका से थोड़ी दूरी बना के चलती थी। उन्होंने राजेश खन्ना के ऑपोजिट एज इज लव इंटरेस्ट सिर्फ एक ही फिल्म में काम किया और वो थी बावर्ची। जया जी और राजेश खन्ना की ये रोमांटिकली पेयर अप होने वाली पहली और आखिरी फिल्म थी, इसीलिए है ना ये यूनिक फिल्म, क्योंकि ऋषिकेश दा इन दोनों को एक साथ ले आए थे इस पिक्चर में। पुरानी जीन्स पर मेरा नाम है श्रेया, वापस आओ, बातें तो अभी बहुत सारी बाकी हैं उस जमाने की।

0: बहुत कुछ हुआ, क्या हुआ पता नहीं. ज़ारा खान का गाना दैट वाज मूव बॉडी दिस वीक ऑन गाना नंबर 10. ये गाना जब इस काउंटडाउन से बाहर भी हो जाएगा तो शायद याद नहीं रहेगा, बिकॉज इट डिड नॉट मेक मी फील एनीथिंग एंड फीलिंग इज एवरीथिंग.
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची.
0: आई सेड व्हाट आई सेड. बंदी का नाम है आरजे कनिका. दिस इज द गाना इंडी टॉप 10. द शो इज अबाउट द सॉन्ग्स व्हिच मेक यू फील समथिंग. पॉप सॉन्ग्स जो आर्टिस्ट अपनी आजादी से अपनी कहानी सुनाने के लिए लिखते हैं. किसी बड़ी फिल्म निर्देशक एक्टर एक्ट्रेस के लिए गाने नहीं बनते हैं, पर हर तरह के गाने होते हैं. कुछ मासी एंड कुछ ऐसे गाने जो शायद इतने बड़े स्केल पे नहीं फटते, लेकिन जितने लोग उन्हें सुनते हैं वो कुछ फील करने पे मजबूर हो जाते हैं. ऐसे ही एक गाने को आज हम शाउट आउट देने वाले हैं. गाने का नाम है तारे बाय फरक. इससे पहले कि मैं वो गाना चलाऊं, आई वॉन्ट यू टू थिंक समथिंग. सोचो एक परिंदा पिंजरे में इतने दिन रह रहा है कि जब दरवाजा खुला तो उड़ना ही भूल गया. जिंदगी भर जिस आसमान को देखता रहा, अब जब वो आसमान उसके सामने है उसे डर लगने लगा कि अभी आगे कैसे जाना है, पहला कदम कैसे लेना है. एंड एक्चुअली ये परिंदे की बात ही नहीं है, ये हम सब हैं. हम सबके अंदर कहीं ना कहीं टू बी ऑनेस्ट एक चुल होती है ना, एक छोटा सा कीड़ा छुपा बैठा है. कुछ तो करना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं. कोई लिखना चाहता है, कोई गाना चाहता है, किसी के अंदर कोई कलाकार, फिल्म, पेंटिंग, कोई आइडिया जिसका बिजनेस करना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं. पर हमने क्या किया, उसको लेके सारी विशेस को एक अलमारी के अंदर डाल दिया कि चलो पहले जिंदगी बना लेते हैं फिर सोचेंगे. अब वो अलमारी बंद ही रह गई और वो सपना अंदर ही रह गया. लेकिन मान लो एक दिन, हाइपोथेटिकल सिचुएशन, वो जो सारी विशेस हैं वो पूरी हो गई, अलमारी खुल गई, सपना बाहर आ गया, जो परमिशन चाहिए थी वो मिल गई, जो पैसा चाहिए था, वक्त चाहिए था, वो आपके सामने है, आसमान दिख रहा है खुला सामने. तो फिर सोचने वाली बात है कि क्या मैं और आप एकदम उड़ जाएंगे या उस दरवाजे को देखते ही रहेंगे और डर जाएंगे उस परिंदे की तरह जो अब इतना यूज्ड हो गया है अपनी सिचुएशन से, अपने सर्कमस्टेंसेस से, कि आजादी कैसी लगती है वो भूल ही चुका है. इसका कोई सही जवाब नहीं है और आपको मुझे तो बिल्कुल नहीं बताना है, पर सोचने वाली बात है. और यही सोचते सोचते अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए. ये गाना बिल्कुल आपको उसी कश्मकश में लाके खड़ा करेगा. पहचान छोड़ दी जीरो से दोबारा शुरू करने वालों के लिए. आर्टिस्ट का नाम है फरक, गाने का नाम है तारे. It's playing right next for you on Gaana Indie Top 10. Bandi ka naam hai Kanika. Enjoy.

लफ्ज कुछ ऐसे हैं, गवाया इस कदर के, गौर फरमाइएगा, गवाया इस कदर के, पाने को अब कुछ बचाना है। परिंदा कैद पिंजरे में, परिंदा कैद पिंजरे में, उसे डर आसमां का है।

यार ये गाना ऐसी फील्स को हिट करता है जो जेन्युइनली मैंने छुपा दी थी अपने अंदर। गाने का नाम है तारे बाय फरक, साथ में उनकी आवाज है शाश्वत बलान की। अभी सिर्फ सुनना नहीं है, ठीक है, अपने अंदर के उस छुपे हुए आर्टिस्ट को निकालो। @RJKanika इंस्टाग्राम पर आके मुझे बताओ दैट जो भी आप जॉब कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, व्हाटएवर यू डू, अगर आपको आपकी विश पूरी करने का एक चांस मिल जाए तो क्या करोगे, क्या है वो अंदर की चिल, @RJKanika इंस्टाग्राम पर आके मुझे बताओ। नाउ बैक टू द काउंटडाउन, अगले वाले गाने की बारी। हर्ष नसी की आवाज होने की कॉम्पोजिशन, गाने का नाम है साडी सुन। द सॉन्ग फीचर्स एल्विश यादव, पिछले हफ्ते से दो पोजीशन नीचे ड्रॉप होके साडी सुन इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 9। उसके बाद एक नई नवेली एंट्री, गाने का नाम आरजू बाय नूर खान एंड मधुर एक्सो। आरजू ने डेब्यू किया है दिस वीक ऑन गाना नंबर 8। यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10, बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय। Number 9. How chup kar la

0: Mirchi.
1: Iscabana, puscabana, sacabana.
2: Rambala.
1: Burga, burga. La virtua la burga.
2: Mirchi, burga.
3: हेलो
4: हाँ जी बोलिए
3: क्या बोलूँ जी आप बोलिए
4: आप बोलिए ना
3: कॉल आपने किया आप बोलिए
4: कॉल मैंने किया है हेलो
3: अरे बोलो भाई कॉल तुमने किया बोलो क्या हुआ
4: अरे आपका दिमाग तो खराब नहीं हुआ यार मैं यहाँ सो रहा हूँ आपने मुझे कॉल कर रहे हैं आप कह रहे हैं कि कॉल तूने किया है यार आपने नंबर मेरा डायल किया है मेरे घर बेल बजी है यार
3: तुम्हारे यहाँ बेल बजी तो मेरे यहाँ हो जाएगा अरे फोन मैंने नहीं किया यार
4: फोन आपने यहाँ बेल बजी यार मेरे यहाँ भी बेल बजी है
3: नींद में है क्या
4: मैं नींद में ही था आपने डिस्टर्ब कर दिया मैं देख रहा हूँ नंबर
3: क्या बेल मेरे यहाँ बजी है
4: आ जाते हैं उठ के मैं तो फोन काट रहा हूँ फोन रखी तरह हेलो हाँ बताइए
3: तेरी जेब में फोन रखा होगा वो बटन दबा होगा बार बार
4: बात करनी है तो बात कर लीजिए आप दो बार फोन कर चुके हैं आप कह नहीं रहे हैं कि यार बात करनी है आप बताइए मुझे प्लीज क्या काम है
3: हेलो
4: फिर कोई यार आपका दिमाग तो खराब नहीं है यार मैं आपसे प्यार से बात करे जा रहा हूँ तो आप उसका नजायज फायदा उठा रहे हैं
3: जी मैं आपको परेशान नहीं कर रहा मैं खुद यहाँ पे परेशान हूँ मैं गाड़ी चला रहा हूँ इस टाइम मैं फोन नहीं कर रहा
4: तो आप गाड़ी चलाइए नहीं आप अपनी गाड़ी चलाइए आप अपना काम करिए फोन मत करिए मुझे कम से कम यार फोन मत करिएगा बस यहाँ पे
3: फोन नहीं कर रहा अभी
4: आप देखिए बदतमीजी से बात मत करिए आप समझ गए मैं यहाँ से लेफ्ट चाटा मार दूंगा बता रहा हूँ मैं यहाँ से है ना मेरे चप्पल लेके आ ये मेरे हाथ में चप्पल है मैं बता रहा हूँ मैं
3: चप्पल
4: पता नहीं कहाँ कहाँ से आता है मैं सो रहा हूँ यहाँ पे फोन
3: क्यों आराम कर दिया तुम
4: जीना बता रहा हूँ यहाँ से भाग इस बार अगर कर दिया ना बता रहा हूँ दांत तोड़ दूंगा चप्पल है मेरे हाथ में
3: फोन आ रहा है मेरी फोन जो तेरे बस में हो वो तू करना चाहे तो तू कर ले
4: देखिए जो मेरे बस में था वो मैं कर चुका हूँ मेरी बात सुनिए अभिषेक मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ तुम रेडियो मिर्ची पे हो तुम्हारी आवाज़ें सारी बाहर आ रही हैं तुम मुर्गा बन गए हो ये सारी कॉल्स मैंने करी थी
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
6: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
7: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
8: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
9: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
8: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
10: प्यारी ब्राइड्स क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर
11: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज
10: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन
12: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2
13: द मॉर्गेज इंडस्ट्री हैज चेंज्ड ओवर द इयर्स पर हमारी ऑनेस्ट एडवाइस आज भी वही है
14: जेसन एंड समीर आर ऑफिशियली रीलॉन्चिंग SD कैपिटल फंडिंग विद अ रिन्यूड फोकस ऑन यू
13: बाइंग अ होम आवर रेट सेवर विल बीट योर लॉक्ड रेट
14: ऑलरेडी अ होम ओनर ड्रॉप योर मंथली पेमेंट्स विद आवर फ्री रेट अलर्ट सिस्टम SD कैपिटल फंडिंग सर्विस जिस पर सब करे भरोसा
15: Looking for the best care for your child? 7 Days Pediatrics in Edison is here for you.
16: From newborn to adolescents, we offer comprehensive care. Get hassle-free same-day appointments, immunizations, and well child visits.
15: Our multilingual staff is available evening and weekends, along with easy telehealth options. Proudly serving the Edison and Woodbridge areas. Book your appointments today. Visit 7DaysPediatrics.com or call 732-307-0668.
17: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
16: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
17: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
18: Tera kya hoga, Kalia?
19: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
18: Ab, mirchi kha.
6: Radio Mirchi, it's hot.
10: Gotta, gotta, gotta.
0: रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।

0: एश किंग की आवाज में, गाने का नाम है किनिया सोनी, पिछले हफ्ते से अपनी पोजीशन पर बरकरार, दिस वीक ऑन गाना नंबर 6। उससे पहले संजू राठौड़ की आवाज में हमने सुना बैंगल्स, पिछले हफ्ते से एक पोजीशन ऊपर जम करके दिस वीक ऑन गाना नंबर 7।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: हेलो हेलो, स्वागत है आपका, दिस इज गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ, कोई गाना सजेस्ट करना है, बातें बतानी हो, बिंदास आके हिट मी अप। इट्स टाइम फॉर अ गाना स्पॉटलाइट ऑफ द वीक। एंड आज मैं जिस आर्टिस्ट से आपको मिलवाना चाहती हूँ, ट्रस्ट मी, इनके गाने को सुनने के बाद आप ये सवाल पूछोगे कि यार कनिका इससे पहले क्यों नहीं रिकमेंड किया। आर्टिस्ट का नाम है खोसला रघु। इस नाम में दो आर्टिस्ट हैं, ऋषभ रघुवंशी एंड संचित खोसला। टुगेदर दे मेक खोसला रघु। इनकी स्टोरी इज टफ ऑफ ड्रीम्स। ये दो दोस्त हैं, बोर्डिंग स्कूल में साथ में पढ़ते थे। एंड आपने भी अपने दोस्त से कभी तो कहा होगा कि यार साथ में कुछ शुरू करते हैं, साथ में म्यूजिक करते हैं, साथ में ये करते हैं, और कहीं ना कहीं वो रह जाता है कुछ लोगों का। पर संचित एंड ऋषभ एज आर्टिस्ट, हम सबका वो सपना जी रहे हैं, एंड दे आर सो गुड एट व्हाट दे डू। कोई बहुत बड़ी बैकिंग के साथ उन्होंने शुरू नहीं किया, काफी ऑनेस्ट सॉन्ग राइटिंग एंड देयर अबिलिटी टू कनेक्ट विद देयर ऑडियंस। गानों में आपको फुल कंटेम्प्रेरी पॉप, क्लासिकल, हैवी वोकल्स, एवरीथिंग दैट मेक्स अस फील है कि कौन से वाला गाना है, वो सारे एलिमेंट्स मिलेंगे। इट साउंड्स वेरी न्यू एंड मॉडर्न येट रूटेड इन हिंदुस्तानी क्लासिकल। I remember many conversations with both of them, and वो कभी भी ट्रेंड्स के पीछे भागते ही नहीं है। They just make the songs जो उन्हें पसंद हैं, and उनके कई सारे गाने Instagram पर already ट्रेंड कर चुके हैं। So yes, they are trendsetters। जो गाना आज हम स्पॉटलाइट करने वाले हैं, उस गाने का नाम है बेवजह। ये उस पहले वाले प्यार की बात है जो धीरे से ना आपकी पूरी दुनिया पे टेक ओवर कर लेता है। उनकी राइटिंग, म्यूजिक बहुत ऑनेस्ट है। अगर आप इंस्टाग्राम पे इन दोनों को देखेंगे तो जिस तरह से वो म्यूजिक बनाने के प्रोसेस के बारे में बात करते हैं, वो भी बहुत ऑनेस्ट है। आई स्वेयर मैंने कोई ऐसे आर्टिस्ट नहीं देखे जो अपने फैंस के साथ ये तक शेयर करते हैं कि इस गाने को बनाने के पैसे कितने लगे, इसका हमने कितना कमाया, अगर आप ये शुरू करोगे तो ये गलती मत करना। That's how you build loyal listeners. And Khosla Raghu, Gaana Indi Top 10 ki taraf se super mad respect to you guys. Apne radio sets ki volume badha lijiye. Gaane ka naam hai Bewajah. Khosla Raghu ki nayi album ka pehla gaana. It's playing right next for you only on Gaana Indi Top 10. Bandi ka naam hai Kanika. Enjoy.

0: prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: कंधों से मिलते हैं, कंधे कदमों से कदम मिलते हैं।
3: हजारों लोग एक तिरंगा एक दिल और इस फीलिंग का नाम है इंडिया डे परेड 2026.
4: संडे अगस्त 9th 1 PM onwards फ्रॉम इसलिन टू एडिसन ऑन ओक ट्री रोड फीचरिंग लक्ष्यराज सिंह जी महाराज रिचा अनिरुद्ध सानिया मल्होत्रा एंड मोर जॉइन द कल्चरल फेस्ट एंड मेला बिहाइंड उमिया धाम टेम्पल.
5: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. लॉग ऑन टू lionmtg.com.
6: सिर्फ हैप्पी फ्रेंडशिप डे कह के काम मत चलाओ. गेट रेडी फॉर द अल्टीमेट फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेशन. ज्योत सिन्हा एंड तरुण शर्मा ऑफ कल्टीवेट टैलेंट्स अनलिमिटेड प्रेजेंट दोस्ती स्पेशल जैमिंग नाइट 1.0. लाइव बैंड एंड बॉलीवुड सिंगर्स, शायरी और नॉनस्टॉप ओपन डांस फ्लो.
7: एंड द बेस्ट पार्ट, सिर्फ $65 में 3-course डिनर और ढेर सारी मस्ती. फ्राइडे अगस्त 7th 7 PM एट रॉयल अल्बर्ट्स पैलेस न्यू जर्सी. टिकट्स अवेलेबल ऑन sulekha.com और कॉल 732-997-2409.
8: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं. ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स.
9: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन्स की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल. ये भरोसा है साथ का साथ हर खुशी का. सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी. स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड इसलिन न्यू जर्सी.
10: Inefficient,
11: very complex,
12: clumsy और
13: confusion.
14: Disjointed software को use करना उतना easy नहीं जितना आप समझ रहे हैं. टूटे फूटे software से छुटकारा पाओ. अपने business के लिए Zoho One ले आओ. Zoho One is an all-in-one integrated software suite जिससे आप अपना पूरा business चला सकते हैं. Yes, you heard that right. You can run your entire business, sales, marketing से लेके customer support, accounting, operations या HR. काम अनेक, software एक, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
15: It's 3:30 PM. Mirchi time check. RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels. Best quality, best price.
16: Batting to kafi sare karte hain. Virat, ek hi hota hai.
17: Kohli goes down the ground. Kohli goes out of the ground.
16: Filmon mein villain ko dhote to bahut hain. Par Bachchan, ek hi hota hai.
18: Isse apni jeb mein rakh le, Peter. Ab ye taala main teri jeb se chabi nikal kar hi kholunga.
16: Moral of the story? नंबर वन सिर्फ एक ही होता है,
19: एक ही होता है.
16: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची. मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है. रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं. इट्स हॉट.

0: दिलजीत दोसांझ की आवाज, गाने का नाम है डीलर। 19 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, पिछले हफ्ते से एक पोजीशन नीचे ड्रॉप होकर डीलर इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 4।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस इज द शो जहां हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों का रिपोर्ट कार्ड हम आपके लिए लेकर आते हैं। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाएं, मेरा हैंडल इज @RJKanika। इट्स टाइम फॉर व्हाट वी कॉल हमारी कैसेट क्लासिक, जहाँ पर हम 90s एंड 2000s के आइकॉनिक इंडी पॉप गानों को फीचर करते हैं। द सॉन्ग वी फीचर्ड लास्ट वीक वॉज

And the song we're going to feature this week is... गाने का नाम है तेरे मेरे साथ और आर्टिस्ट का नाम बता देती हूँ पर बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती बिकॉज लकी अली की आवाज ऐसी है कि पहले सेकंड में हम पहचान जाते हैं कि ओ ऑफ कोर्स दिस इज लकी अली। अब मेरा काम तो गाने के बारे में बात करना, गाने सुनाने का है, लेकिन कभी कभी जब सड़कों पे निकलती हूँ, लोगों से बात करती हूँ, उनसे उनके रिएक्शंस जानने की कोशिश करती हूँ अबाउट दीज लेजेंडरी आर्टिस्ट, तब समझ में आता है दैट लकी अली जैसे आर्टिस्ट ने पॉप म्यूजिक के लिए कितना कुछ कॉन्ट्रीब्यूट किया है। उन्होंने इतने बड़े हिंदी फिल्मों के लिए गाने किए हैं जैसे एक पल का जीना, अनजाना अनजानी में उनका गाना था, पर जितने लोगों से बात करो उनका नाम सुनते ही सब उन्हें एक पॉप स्टार बोलते हैं। उनके अपने पॉप सॉन्ग्स, वो खुली सड़क, वो गिटार, वो लाल गाड़ी, धूप में लकी अली गाने गा रहे हैं, और ये किसी फिल्म के गाने नहीं है, ये उनकी अपनी एल्बम के गाने हैं। दैट्स जस्ट द मैजिक दैट दिस मैन हैज। आप कभी इनका लाइव परफॉर्मेंस अटेंड करें, क्राउड कमाल की होती है, आपको 70 साल के लोग भी मिलेंगे और 20 साल के लोग भी। इंटरनेट पर जो उनकी क्लिप्स हैं, उनके गानों के वीडियोस हैं, उनके कमेंट्स के नीचे हर उम्र के लोग मिलेंगे और एक ही जैसी बातें करेंगे। वन ऑफ दोस रेयर आर्टिस्ट जो सारी जनरेशंस के फासले मिटा रहे हैं। और जो ये वाला गाना है तेरे मेरे साथ, अक्स एल्बम का गाना है, इसका वीडियो क्यूबा में शूट हुआ था, धूप, खुली सड़क, एकदम फ्री फीलिंग। गाना सुन के आप बहुत हल्का हल्का फील करोगे और सनी फील करोगे। इट्स वेरी सनशाइन वाला सॉन्ग, टॉक्स अबाउट कनेक्शन बिटवीन टू पीपल, कि जब सारा जग सोता है। ये गाना उस अजीब से खास से कनेक्शन की बात करता है जो वर्ड्स में बोलना मुश्किल है, तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लो। लगी अली की आवाज में दिस इज तेरे मेरे साथ प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ओनली ऑन कैसेट क्लासिक। बंदी का नाम है आरजे कनेका। एंजॉय।

अगर सनशाइन इमोजी एक गाना होता ना तो लकी अली का दिस सॉन्ग वुड बी इट बिकॉज वाओ How do you do this? Lucky Ali ki awaaz mein, this was Tere Mere Saath on our cassette classic this week at RJ Kanek on Instagram par jaldi aao. 90s 2000s ka wo jo bhi gaana hai jisko sun ke aaj bhi aap bade khush ho jaate ho na ki yaar इस गाने में ही बात थी वही वाला गाना जानना है मुझे एट आरजे कनेगा पर आके हमारे साथ शेयर करो मैं और अश्काय हम दोनों आपकी सारी सजेशंस को बहुत सीरियसली लेते हैं एंड वी माइट फीचर योर सॉन्ग नेक्स्ट वीक नाउ बैक टू द काउंटडाउन अगले वाले गाने की तरफ बढ़ते हैं आदित्य रिखारी रावत और कुटले खां का गाना गाने का नाम ए अजनबी 15 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार ए अजनबी इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 3 यू आर लिसनिंग टू गाना इन द टॉप 10 बंदी का नाम है कनेगा एंजॉय नंबर 3

0: Indie Top 10
1: Kanika ke saath on Mirchi.
2: Mirchi sun rahe hain aap, bandi ka naam hai RJ Kanika, show ka naam hai Gaana Indie Top 10. Ye wo show hai jahan hafte ke top 10 hottest pop gaanon ka countdown hum aapke liye lekar aate hain. हफ्ते के टॉप 10 गानों में एक नई एंट्री थी. हमने अपने 90s 2000s के आइकॉनिक इंडी पॉप गाने को शाउट आउट दिया. गाना नंबर 10 से गाना नंबर 3 का सफर पूरा कर चुके हैं. नाउ बिफोर वी मूव ऑन टू द टॉप 2 सॉन्ग्स ऑफ द वीक, एक क्विक रीकैप करते हैं राइट फ्रॉम द टॉप. ज़ारा खान का गाना मूव बॉडी दिस वीक ऑन गाना नंबर 10. उसके बाद हर्ष नुसी का साडी सुन दिस वीक ऑन गाना नंबर 9. नूर खान एंड मधुर एक्सो के आरजू ने इस हफ्ते डेब्यू किया ऑन गाना नंबर 8. देन संजू राठौड़ का बैंगल्स ऑन गाना नंबर 7. एश किंग का किनिया सोनी 4 हफ्तों से स्ट्रॉन्ग दिस वीक ऑन गाना नंबर 6. अनीश सरकार हृदय का उड़ी उड़ी 8 हफ्तों से स्ट्रॉन्ग ऑन द काउंटडाउन दिस वीक ऑन गाना नंबर 5. दिलजीत दोसांझ का डीलर इज द मोस्ट सीनियर सिटीजन सॉन्ग ऑफ द काउंटडाउन 19 हफ्तों से बरकरार दिस वीक ऑन गाना नंबर 4. 15 हफ्तों से डटा हुआ ये गाना आदित्य रिखारी रैवटों कुटले खा का गाना अ कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग कॉल्ड ए अजनबी दिस वीक ऑन गाना नंबर 3. एंड द टॉप 2 सॉन्ग्स ऑफ द वीक, कोई रीशफल नहीं हुआ है, ये दोनों गाने इन पोजीशंस पर डटे हुए हैं 18 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार. बंजारे द आर्टिस्ट का गाना, गाने का नाम है बैरन, पिछले हफ्ते से अपनी पोजीशन पर बरकरार बैरन दिस वीक ऑन गाना नंबर 2. एंड द न्यूमेरो उनो सॉन्ग ऑफ द वीक, मिट्टा रॉर की आवाज, उन्हीं की कॉम्पोजिशन, गाने का नाम है शीशा. 18 हफ्तों से ये गाना भी डटा हुआ है, शीशा दिस वीक ऑन गाना नंबर 1. दोनों गाने बैक टू बैक ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय. नंबर 2.

0: Hot Jeeturaj. Jeeturaj. Only on Mirchi. It's hot.
1: Hi, my name is Peter Parker.
2: Oh, Kaden, Spider-Man brand new day aa gayi hai. And for God's sake, please theater mein jaakar hi dekho is what Jeeturaj will tell you. Kyunki is film mein kahin chhoti chhoti aisi cheeze hain. Especially jab characters aapas mein baat karte hain, to unki whispers, unka pyar, unka ghussa, wo theater mein jo maza deta hai, wo kahin bhi nahi dega. And for God's sake, kisi se bhi story mat suno. Don't take any spoilers. Film mein kahin aisi cheeze hain jo tere ko itna surprise kar jayengi.
3: Spiders have free life cycle.
2: I just can't begin to tell you. I'll tell you the biggest thing. Spider-Man में villain कौन है? यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर suffocate होने लगता है? क्यों Spider-Man अपने आप में घुटने लगता है? ये reason उस villain पर जाकर रुकता है. I'm not going to tell you who it is. Also, तेरे में से कई लोग ये expect करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात Jacob Batalon, also MJ अर्थात Zendaya and Peter Parker यानी Tom Holland. In this film, it's a little different. In fact, I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है. क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो. Also, there's a particular scene between John Bernthal, अर्थात Frank Castle, A.K.A. Punisher, and Tom Holland, अर्थात Peter Parker, जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा. Also, if you have kids around you, enjoy it fully, क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं, तालियां बजाते हैं, and it's all required in Spider-Man Brand New Day. But I must give you a disclaimer. अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म. तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा. फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से Jeeturaj टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है. ओह ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माई रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची Jeeturaj, जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई हैं Jeeturaj ने. वो क्या है? ओके, आई टोल्ड यू, इंस्टाग्राम मिर्ची Jeeturaj. फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे. बाय द वे, कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या जेंडाया एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है. फॉर गॉड्स सेक ब्रो, अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो. दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रेकमेंडेड बाय Jeeturaj विद फोर मिर्चीज.
0: Jeeturaj, only on Mirchi. It's hot.
4: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
5: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
4: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies' first choice.
6: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
7: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगाज, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
6: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इज़लिन.
8: दिस ड्राइव टाइम इज ब्रॉट टू यू बाय तनिष्क ज्वेलरी. हर ड्राइव बनेगी यादगार.
9: लिसनर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा.
10: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: Mirchi.
1: Iscabana, puscabana, sacabana. Yambala. Murga, murga. La virpa, la murga.
0: Mirchi, murga.
2: Hello.
3: Hi. से आपके फोन पे फ्री कॉल है। अगर आप चाहते हैं कि अभी के अभी आपका बिल आधा हो जाए तो कृपया दो दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिल घर पे आए तो एक दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपके बिल में कोई भी गलती ना हो तो कृपया नौ दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपको बिल की पूरी पुष्टि चाहिए, समरी चाहिए, तो कृपया नौ नौ दबाइए। अगर आप चाहते हैं कि जो आपने कॉल करी है सिर्फ उसी का बिल आए तो दबाइए तीन तीन। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि दूसरा पड़ोसी कोई कॉल कर रहा है और उसकी कॉल आपके बिल में ना आए तो दबाइए छः छः। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिल आपके ही नंबर का आना चाहिए, किसी दूसरे का नहीं आए, तो दबाइए पाँच पाँच। धन्यवाद। अगर आपको बिल पेपर पे चाहिए, पेपर बिल चाहिए, तो दबाइए सात सात। धन्यवाद। अगर आप स्कीम लेना चाहते हैं और अडॉप्ट करना चाहते हैं इस स्कीम को अगले महीने से, तो दबाइए 3,07,739।
2: हेलो।
3: हाय, ये से फिर से आपके फोन पे कॉल है। अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में आपकी इस तरह की कॉल ना आए तो दबाइए 4,19,83,93।
4: मैं रेडियो मिर्ची से सर नवेद बोल रहा हूँ। आप क्या खेल खेले जा रहे हैं यार? अपने मोबाइल से कभी ये दबा रहे हैं, कभी वो दबा रहे हैं। आप थके नहीं हैं? आप रेडियो मिर्ची पे हैं? आपका
2: वही मैं सुधरा था, मतलब लगा।
3: अगर आपको इस सबसे मजा आया हो तो कृपया दबाए 5,07,339। हो गया।
2: हाँ जी।
3: कुकड़ू को
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
6: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
7: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
8: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
9: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
8: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
10: From the finest kitchens in India, a 1,000-year-old tradition of Khandani chef's recipes, comes the Naan. The same traditional taste, flavor, and freshness, guaranteed. Deep cow, to jano.
11: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
12: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
11: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
12: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इज़लिन।
13: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ। जेसन एंड समीर आर बैक एट SD कैपिटल फंडिंग। बीट योर लॉक्ड रेट विद आवर रेट सेवर टुडे।
14: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
15: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
14: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies' first choice.
16: Famous Indian astrologer Pandit Ramdev is now in New Jersey. Expert in palm reading, face reading, horoscopes and birth chart. Call Pandit Ramdev for all your astrological predictions on love, relationships, business and career. Call 732-366-6777.
17: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
12: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
17: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।

0: This hour is brought to you by Raj Jewels.
1: Sham Shandar, let's go Nautanki, have a funky time.
2: लाइफ में ना एक दोस्त ऐसा जरूर होना चाहिए जो आपकी आधी बात सुनकर ही बोल दे कि चलो निकल पड़ते हैं। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और ना ज्यादा रीजन पूछना, ना कोई कैलकुलेशन करना, बस साथ चल पड़ना। ऐसे ही वो दोस्त होते हैं जिनके लिए कहा जाता है कि दोस्तों में ना चलेबिलिटी देखनी चाहिए, क्योंकि यही वो दोस्ती होती है जिनकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। तो दोस्तों, अगर आप भी उस स्पेशल दोस्त के साथ निकल पड़ना चाहते हो फ्रेंडशिप डे मनाने यार यादगार बनाने के लिए, तो आपके लिए आ रहा है दोस्ती स्पेशल जैमिंग नाइट 1.0, जहां होंगे लाइव बैंड, सोलफुल म्यूजिक, शायरी, डांस और एक डेलिशियस 3-course डिनर एक ही शाम में। इतने सारे मेमोरीज। डेट नोट डाउन कर लीजिए, August 7th शुक्रवार की शाम 7 बजे से लेकर रॉयल अल्बर्ट्स पैलेस में। और मिर्ची लिसनर्स के लिए तो एक अनोखा कॉन्टेस्ट, आपको बस आपके वो चलेबिलिटी वाले दोस्त के नाम पर टाइप करना है दोस्ती और उनके लिए एक प्यारा सा बॉलीवुड गाना डेडिकेट करना है। और हो सकता है अगले लकी विनर आप हो जिन्हें मिलेगा दोस्ती स्पेशल जैमिंग नाइट 1.0 के टिकट। तो जल्दी से टाइप कीजिए दोस्ती और अपने दोस्त के लिए बॉलीवुड गाना डेडिकेट कीजिए और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजिए 9033647244, या फिर आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हो @RJMirchiSiddhi SIDTHI। और अगर इस इवेंट के टिकट्स बुक करने हैं तो आपको कॉल करना है ज्योत्सना शर्मा को 7329972409, या फिर आप sulekha.com पर जाकर भी दोस्ती स्पेशल जैमिंग नाइट 1.0 के टिकट्स बुक कर सकते हो। और चलिए अब दोस्ती के नाम एक गाना जो हर जनरेशन के दोस्तों की प्लेलिस्ट में जरूर होना चाहिए, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milci.
1: Iscabana, Puscabana, Sacabana, Rabana, Burga, Burga. La Virtua, la Burga. Milci, Burga.
2: हेलो विनीत जी।
3: हाँ जी
2: विनीत जी नमस्कार, जनता बैंड से बोल रहा हूँ सर। क्या हाल चाल है, शादी की तैयारियाँ चल रही हैं?
3: सही हाँ, मैं तो चल रही है।
2: हाँ तो मैं आपसे ये पूछ रहा था, बारात कितने बजे निकलेगी यहाँ से जो आदमी भेजने बैंड के लिए?
3: 7:30 बजे तक।
2: सर थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आ गई हमारे, जो वो आपने बुक किया था ना बैंड वाले, वो बंदे कम रह गए हैं। वो बंदे राजस्थान से आने थे, वो वहाँ पे रह गए हैं।
3: 9:30-10 बजे तक ये बताओ ना, बचा जाएगा?
2: सर आप चिंता ना करें, आप घोड़ी पे चढ़ेंगे, हम बैंड वाले एक है मेरे पास, वो भेज रहा हूँ सर, वही वो सब संभाल लेगा, आप फिक्र ना करें।
3: पागल हो गए हो क्या, क्या बजाएगा अकेला वो?
2: मैं आपके वही, एक सेकंड रुकिए सर। हेलो मिस्टर थॉमस। सर ये मिस्टर थॉमस को आए हैं, ये बजाते हैं और ये नहीं, ये अच्छा अच्छा सुनाएंगे आपको, आप चिंता ना करें। और सर ये स्पेशली मैं आपको इसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं ले रहे, ये बाहर से आए हैं सर। सर आप बात करना चाहेंगे मिस्टर थॉमस से?
3: मैं क्या बात करूं यार अकेला क्या बजाएगा?
2: नहीं वही मैं आपको बता रहा हूँ सर, आप मिस्टर थॉमस का एक चीज सुन लीजिए, मैं आपको कह रहा हूँ आप घोड़ी पे चलेंगे आपको मजा आ जाएगा। मिस्टर थॉमस ये जरा सर के विनीत जी की शादी है, इनको बता दीजिए क्या। ये सुनिए, ये देखिए। हाँ विनीत जी मजा आया, ये मिस्टर थॉमस ये
3: क्या बजा रहे हैं, ये सुना आपने?
2: सर आप समझ नहीं पा रहे हैं, ये स्पेशल बजा रहा है सर। मैं आप तो चिंता ऐसे कर रहे हैं, आपकी शादी मेरी शादी है सर, आप इस बात को समझो। घोड़ी कितने बजे चल रहे हैं सर?
3: मैं घोड़ी तो चढ़ी जाऊंगा यार।
2: अच्छा सर मेरी बात सुनिए, जब आप घोड़ी चलेंगे ना मिस्टर थॉमस, घोड़ी चलने वाले चलाएंगे?
3: हेलो हेलो।
2: हाँ मेरे को पूरी उम्मीद है सर, कैसा लगा आपको?
3: ये बारात का बजा रहा है, किसी के श्राद्ध का बजा रहा है ये?
2: विनीत जी मैं आपको ये बता रहा था, ये मिस्टर थॉमस ना पहले ये आपका ये नहीं होता है, ये कॉफिन ले जाने वाला काम करते थे, इनका काम मेरी बात सुनिए, अभी पहले कॉफिन वाला करते थे, आप बारात ज्वाइन कर लिए सर।
3: अरे कॉफिन ऑफिन कर दिया क्यों, तुम
4: विनीत, मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ। सबसे पहले तो मुबारक हो, आपकी शादी होने वाली है, मैं भी आऊंगा, और आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपके साथ मजाक किया है, आपका मुर्गा बन गया है सर, आप बुरा मन मानिए।
3: अच्छा भैया
5: आप मेरे यहाँ बजाने वाले थे, बजाने वाले थे।
6: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
7: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
8: Famous Indian astrologer Pandit Ramdev is now in New Jersey. Expert in palm reading, face reading, horoscopes and birth chart. Call Pandit Ramdev for all your astrological predictions on love, relationships, business and career. Call 732-366-6777.
9: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
10: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
9: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
11: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
12: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
11: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इसलिन।
13: एट तनिष्क, नो टू डायमंड्स आर एग्जैक्टली अलाइक, they're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
14: From the finest kitchens in India, a thousand-year-old tradition of Khandani chefs' recipes, comes the naan. The same traditional taste, flavor, and freshness, guaranteed. Deep cow, to jaano.
15: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
16: Batting to kafi sare karte hain. Virat ek hi hota hai.
17: Kohli goes down the ground. Kohli goes out of the ground.
16: Filmon mein villain ko dhote to bahut hain, par Bachchan ek hi hota hai.
18: Ise apni jeb mein rakh le Peter. Ab ye taala main teri jeb se chabi nikal kar hi kholunga.
16: Moral of the story? नंबर वन सिर्फ एक ही होता है, एक ही होता है।
0: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
1: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
2: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
3: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
4: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
5: It's 5:30 PM. Mirchi time check. RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels, best quality, best price.
6: Sham Shardar, let's do not donkey, have a funky time.
7: कुछ लोगों को देखते ही ना लगता है कि इन्हें अलग दिखने के लिए कभी एफर्ट्स ही नहीं करने पड़ते होंगे। वो कहते हैं ना, सम थिंग्स शाइन विदाउट ट्राइंग। शाम शांता लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और कभी किसी की स्माइल, कभी उनका कॉन्फिडेंस, तो कभी बस उनकी प्रेजेंस। और वही बात चीजों पर भी लागू होती है। मतलब कुछ चीजें ना ट्रेंड्स के साथ नहीं चलती, वो हर दौर में अपनी चमक खुद लेकर आती है। और शायद इसीलिए डायमंड्स को सिर्फ ज्वेलरी नहीं, टाइमलेस एलिगेंस कहा जाता है। और अगर आप भी अपनी कलेक्शन में वो हमेशा वाली चमक ऐड करना चाहते हो, तो तनिष्क प्रेजेंट्स Festival of Diamonds, avail up to 25% on diamond value and making charges, or old gold above 18 carat exchange karne par 0% deductions. Terms and conditions apply. Aur dosto, mujhe bhi batana ki aapke hisab se kisi insaan ki sabse khoobsurat quality kya hoti hai? Unki smile, unka confidence ya unka kindness. Tell me on Insta RJ Mirchi Siddhi, SIDDHI. Aur tab tak ek aisa gana sunte hai jiski chamak kabhi purani nahi hoti. Only on Mirchi, it's hot.

0: साथ जीतू राज, only on मिर्ची, it's hot.
1: Hi, my name is Peter Parker.
2: Okay then, Spider-Man brand new day आ गई है, and for God's sake, please theater में जाकर ही देखो, is what जीतू राज will tell you, क्योंकि इस फिल्म में कई छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं, especially जब characters आपस में बात करते हैं, तो उनकी whispers, उनका प्यार, उनका गुस्सा, वो theater में जो मजा देता है, वो कहीं भी नहीं देगा, and for God's sake, किसी से भी story मत सुनो, don't take any spoilers, फिल्म में कई ऐसी चीजें हैं जो तेरे को इतना surprise कर जाएंगी.
3: Spiders have three life cycles.
2: I just can't begin to tell you. I'll tell you the biggest thing. Spider-Man में villain कौन है? यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर suffocate होने लगता है? क्यों Spider-Man अपने आप में घुटने लगता है? ये reason उस villain पर जाकर रुकता है. I'm not going to tell you who it is. Also तेरे में से कई लोग ये expect करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात Jacob Batalon, also MJ अर्थात Zendaya and Peter Parker यानी Tom Holland. In this film it's a little different. In fact I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है. क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो. Also there's a particular scene between John Bernthal अर्थात Frank Castle aka Punisher and Tom Holland अर्थात Peter Parker जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा. Also if you have kids around you enjoy it fully क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं तालियां बजाते हैं and it's all required in Spider-Man brand new day. But I must give you a disclaimer. अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म. तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा. फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतूराज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है. ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माई रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतूराज जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई हैं जीतूराज ने. वो क्या है? ओके आई टोल्ड यू इंस्टाग्राम मिर्ची जीतूराज. फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे. बाय द वे कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या जेंडाया एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है. फॉर गॉड्स सेक ब्रो, अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो. दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रेकमेंडेड बाय जीतूराज विद फोर मिर्चीज.
0: साथ जीतूराज, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: From the finest kitchens in India, a 1,000-year-old tradition of Khandani chef's recipes comes the Naan. Same traditional taste, flavor, and freshness guaranteed. Deep Cow, the Jano.
7: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
8: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ. जेसन एंड समीर आर बैक एट SD कैपिटल फंडिंग. बीट योर लॉक्ड रेट विद आर रेट सेवर टुडे.
9: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
10: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगाज, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
9: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू.

एक एल्बम जिसके सारे के सारे गाने सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और जहाँ इतने सारे गाने बनते हैं, कभी कोई हिट होते हैं, कभी कोई फ्लॉप, लेकिन कभी कभार कुछ ऐसे एल्बम्स बन जाते हैं ना जिसके सारे के सारे गाने एक से बढ़कर एक होते हैं, जिसको आप स्किप ही नहीं कर सकते और वो टाइमलेस रह जाते हैं। जी हाँ, 2007 की मूवी सलाम इश्क, वो एक ऐसा बॉलीवुड म्यूजिक का एल्बम था जिसके यार इतने अमेजिंग गाने थे। मतलब ये एल्बम नहीं था, ये तो थी एक म्यूजिकल थाली, क्योंकि 6 अलग कहानियां और उससे भी ज्यादा उनके अमेजिंग से जज्बात जो कि कैप्चर हुए थे हर एक गानों में। तो चलिए, इसी का एक गाना है सलाम इश्क द टाइटल ट्रैक। दोस्तों इसमें तो यार 6 जोड़ियां एक ही फ्रेम में दिख रही थी और लोगों ने कहा कि ये ना कहीं ना कहीं बॉलीवुड का एवेंजर्स मोमेंट था, क्योंकि वैसे तो एवेंजर मोमेंट 2008 में आया था, लेकिन बॉलीवुड ने बहुत ही पहले, इट वॉज वे अहेड ऑफ इट्स टाइम, 2007 इतने सारी जोड़ियां एक साथ, इतने सारे सिंगर्स एक साथ आए थे इस एक गाने के लिए सलाम इश्क द टाइटल ट्रैक। वैसे तो यार सॉन्ग का स्केल और ग्रैंडियर देख के यही लगता था कि किसी अवार्ड शो के लिए ही ये गाना बनाया हो, क्योंकि शूटिंग के लिए भी इतना मैसिव सेट डिजाइन हुआ था और सारी जोड़ियों को एक ही दिन में सिंक प्रैक्टिस करनी थी। तो जी हाँ, सारे जो बॉलीवुड की जोड़ियां थी वो तो इस गाने में थी, लेकिन सारे जो म्यूजिकल सिंगर्स यानी सोनू निगम, श्रेया घोषाल, कुणाल गांजावाला और भी कई सारे सिंगर्स एक ही साथ इस गाने में थे, तो ये गाना तो एक शादी थीम बनना ही था। चलिए सुनते हैं सलामे इश्क टाइटल ट्रैक फ्रॉम द मूवी सलामे इश्क। लेकिन आप भी बताइए वो कौन सा ऐसा एल्बम है जिसका कोई भी गाना आप स्किप नहीं कर पाते। टेल मी ऑन इंस्टा एट RJ मिर्ची सिद्धि, SIDDHI। और तब तक सलामे इश्क का ये टाइटल ट्रैक राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: This hour is brought to you by Raj Jewels.
1: Sham Shandar, let's go Nautanki, have a funky time.
2: एक ऐसा एल्बम जिसके सारे के सारे गाने सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी। और जी हाँ, बातें हो रही है यार कि कभी कभी कुछ ऐसे एल्बम्स बन जाते हैं कि जिसका कोई भी गाना मन ही नहीं करता कि हम स्किप करें। और वो जब जमाना आता था ना कि जब कैसेट्स आती थी, तो एक ऐसी कैसेट उस एल्बम की बाय करना तो फुल ऑन पैसा वसूल लगता था। और ऐसा ही एक एल्बम था 2007 का, सलामे इश्क, जिसके यार हर एक गाना बहुत ही अमेजिंग था। सलाम है, इस टाइटल ट्रैक के बारे में तो हम बात कर ही चुके हैं, लेकिन और एक गाना इस एल्बम का, तेनु लेके, जो कि गाया गया है सोनू निगम एंड महालक्ष्मी अय्यर ने। वैसे तो यार इस गाने के लिए सलमान खान ने जो डांस किया था और उनकी जो एंट्री आई थी, वो एंट्री कई सारी शादियों का एंथम बन गया था। मतलब इतने सारे दुल्हों ने उसी गाने पर अपनी एंट्री की है कि यार बस तेनु मैं लेके जावांगा, ये एक शादी के लिए बहुत ही बेस थीम बन गया था। और ना सिर्फ शादी के लिए यार, मतलब प्रपोजल के लिए भी यही गाना यूज करते थे। जी हाँ, ऑलमोस्ट फॉर अ डेकेड ये चला, जब तक कि नए गाने नहीं आए। तो वन ऑफ द हिट सॉन्ग्स ऑफ दिस एल्बम, तेनु लेके मैं जावांगा, सोनू निगम और महालक्ष्मी अय्यर ने गाया हुआ ये गाना, वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक सॉन्ग। तो चलिए इसे प्ले करते हैं, लेकिन और भी एक गाना बाकी है इसी एल्बम का। वैसे आप भी मुझे अपनी रिक्वेस्ट जल्द से जल्द भेज सकते हो, डीएम मी ऑन इंस्टा एट RJ मिर्ची सिद्धी SIDDHI, कि इस एल्बम का आपको कौन सा गाना पसंद है, जल्दी से बताइए। और तब तक के लिए तेनु लेके मैं जावांगा, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepep Tiempo a la murga. ¡Michi murga!
1: हेलो हाँ जी बोलिए
2: क्या बोलूँ जी आप बोलिए
1: आप बोलिए ना
2: कॉल आपने किया आप बोलिए
1: कॉल मैंने किया है हेलो
2: अरे बोलो भाई कॉल तुमने किया बोलो क्या हुआ
1: अरे आपका दिमाग तो खराब नहीं हुआ यार मैं यहाँ सो रहा हूँ आपने मुझे कॉल कर रहे हैं आप कह रहे हैं कि कॉल तूने किया है यार आपने नंबर मेरा डायल किया है मेरे घर बेल बजी है यार
2: तुम्हारे यहाँ बेल बजी तो मेरे यहाँ हो जाएगा अरे फोन मैंने नहीं किया यार
1: फोन आपने यहाँ बेल बजी यार मेरे यहाँ भी बेल बजी है
2: नींद में है क्या
1: मैं नींद में ही था आपने डिस्टर्ब कर दिया मैं देख रहा हूँ नंबर
2: क्या बेल मेरे यहाँ बजी है
1: आ जाते हैं उठ के मैं तो फोन काट रहा हूँ फोन रखी तेरे हेलो हाँ बताइए
2: मेरी जेब में फोन रखा होगा वो बटन दबा होगा बार बार
1: बात करनी है तो बात कर लीजिए आप दो बार फोन कर चुके हैं आप कह नहीं रहे हैं कि यार बात करनी है आप बताइए मुझे प्लीज क्या काम है हेलो
2: फिर कोई
1: यार आपका दिमाग तो खराब नहीं है यार मैं आपसे प्यार से बात करने जा रहा हूँ तो आप उसका नजायज फायदा उठा रहे हैं
2: जी मैं आपको परेशान नहीं कर रहा मैं खुद यहाँ पे परेशान हूँ मैं गाड़ी चला रहा हूँ इस टाइम मैं फोन नहीं कर रहा
1: तो आप गाड़ी चलाइए नहीं आप अपनी गाड़ी चलाइए आप अपना काम करिए फोन मत करिए मुझे कम से कम यार फोन मत करिएगा बस यहाँ पे
2: फोन नहीं कर रहा अभी
1: आप देखिए बदतमीजी से बात मत करिए आप समझ गए मैं यहाँ से रैप चाटा मार दूंगा बता रहा हूँ मैं यहाँ से है ना मेरे चप्पल लेके आ रहा ये मेरे हाथ में चप्पल है मैं बता रहा हूँ मैं
2: चप्पल
1: पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते मैं सो रहा हूँ यहाँ पे फोन क्यों
2: आराम कर दिया तुम
1: जीना बता रहा हूँ यहाँ से भाग इस बार अगर कर दिया ना बता रहा हूँ दांत तोड़ दूंगा चप्पल है मेरे हाथ में
2: फोन आ रहा है मेरी फोन जो तेरे बस में हो वो तू करना चाहे तो तू कर ले
1: देखिए जो मेरे बस में था वो मैं कर चुका हूँ मेरी बात सुनिए अभिषेक मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ तुम रेडियो मिर्ची पे हो तुम्हारी आवाज़ें सारी बाहर आ रही हैं तुम मुर्गा बन गए हो ये सारी कॉल्स मैंने करी थी
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट दिस गोल्ड अपडेट इज ब्रॉट टू यू बाय राज जूल्स किंगडम ऑफ जूल्स वेयर ट्रेडिशन मीट्स स्टाइल Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
4: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
5: सुनो ब्राइड्स अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन
6: तो आइए फैशन क्वीन यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी
5: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन
6: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड इजलिन
7: एट तनिष्क नो टू डायमंड्स आर एग्जैक्टली अलाइक They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
8: Kisi zamane mein माँ हाथों से घिसती प्यार से कूटती मुस्कुराकर पीसती अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए खुशियों के स्वाद चखती वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी दीप खाओ तो जानो
9: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
10: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
9: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
11: Tera kya hoga, Kalia?
12: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
11: Ab, mirchi kha.
13: Radio Mirchi, it's hot.

लाइफ में ना एक दोस्त ऐसा जरूर होना चाहिए जो आपकी आधी बात सुनकर ही बोल दे कि चलो निकल पड़ते हैं, शाम शांता लाइफ सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि, और ना ज्यादा रीजन पूछना, ना कोई कैलकुलेशन करना, बस साथ चल पड़ना। ऐसे ही वो दोस्त होते हैं जिनके लिए कहा जाता है कि दोस्तों में ना चलेबिलिटी देखनी चाहिए, क्योंकि यही वो दोस्ती होती है जिनकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। तो दोस्तों, अगर आप भी उस स्पेशल दोस्त के साथ निकल पड़ना चाहते हो फ्रेंडशिप डे मनाने या यादगार बनाने के लिए, तो आपके लिए आ रहा है दोस्ती स्पेशल जैमिंग नाइट 1.0, जहां होंगे लाइव बैंड, सोलफुल म्यूजिक, शायरी, डांस और एक डेलिशियस 3-course dinner एक ही शाम में। इतने सारे मेमोरीज, डेट नोट डाउन कर लीजिए, August 7th शुक्रवार की शाम 7 बजे से लेकर रॉयल आल्बर्ट्स पैलेस में। और मिर्ची लिसनर्स के लिए तो एक अनोखा कॉन्टेस्ट, आपको बस आपके वो चलेबिलिटी वाले दोस्त के नाम पर टाइप करना है दोस्ती, और उनके लिए एक प्यारा सा बॉलीवुड गाना डेडिकेट करना है, और हो सकता है अगले लकी विनर आप हो जिन्हें मिलेगा दोस्ती स्पेशल जैमिंग नाइट 1.0 के टिकट्स। तो जल्दी से टाइप कीजिए दोस्ती और अपने दोस्त के लिए बॉलीवुड गाना डेडिकेट कीजिए, और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजिए 9033647244, या फिर आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हो @RJMirchiSiddhi SIDDHI। और अगर इस इवेंट के टिकट्स बुक करने हैं तो आपको कॉल करना है ज्योत्सना शर्मा को 7329972409, 7329972409, या फिर आप sulekha.com पर जाकर भी दोस्ती स्पेशल जैमिंग नाइट 1.0 के टिकट्स बुक कर सकते हो। और चलिए अब दोस्ती के नाम एक गाना जो हर जनरेशन के दोस्तों की प्लेलिस्ट में जरूर होना चाहिए, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: At 6:30 PM, Mirchi Time Check, RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels, best quality, best price.
1: Sham Sharda, let's do not donkey, have a funky time.
2: एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शारदा लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और वैसे इतने सारे गाने जहां बनते हैं, कुछ फ्लॉप कुछ हिट, लेकिन यार कुछ ऐसे एल्बम्स बनते थे जिसका हर एक गाना एक से बढ़कर एक होता था। और 2007 में रिलीज हुआ एक ऐसा एल्बम सलामे इश्क, जी हाँ, शंकर महादेवन के मैक्सिमम कंपोजिशन इस एल्बम के लिए थे। और हर एक गाना यार ब्लॉकबस्टर था, मतलब आप स्किप ही नहीं कर सकते, चाहे वो बाबू जी धीरे चलना का रिमिक्स वर्जन ही क्यों ना हो। तो यार इसी एल्बम का एक जो सॉन्ग है वो बहुत ही खास है, एंड दैट इज मेरा दिल दिल मेरा, संग बाय शान एंड निहिरा जोशी। वैसे तो यार इस गाने को जब फिल्माया गया था तो इतने सारे कपल्स हैं इस मूवी में, जॉन अब्राहम विद्या बालन हो, उनकी केमिस्ट्री तो बहुत ही अमेजिंग थी, फिर चाहे हमारी प्रियंका चोपड़ा और सलमान खान हो, लेकिन यार सबसे ज्यादा जो अमेजिंग केमिस्ट्री थी जिसने लोगों का दिल जीत लिया था, दैट वॉज शैनन एसरा एंड गोविंदा की। मतलब ये गाना स्पेसिफिकली जिसमें शैनन एसरा ने बहुत सारे एथनिक कॉस्ट्यूम्स पहने थे और गोविंदा बीन गोविंदा अलग अलग जगहों पे डांस किए जा रहे थे, मतलब कहीं हवेलियों के सामने कहीं ट्रक पर, दिस सॉन्ग वॉज रियली रियली ब्यूटिफुली पिक्चराइज्ड। और गोविंदा के डांस मूव्स, मतलब दे वर किलिंग इट, दे वर टोटली किलिंग इट। तो वेरी वेरी क्यूट सॉन्ग और बहुत ही क्यूट जोड़ी लग रही थी शैनन एसरा और गोविंदा की। वैसे यार ये गाना इतना ज्यादा प्यारा है तो यू कैन लिसन टू इट एनी टाइम। तो अभी मैं आपके लिए बजाने वाली हूं मेरा दिल दिल मेरा, संग बाय शान एंड निहिरा जोशी। लेकिन आप भी मुझे बता सकते हो इस एल्बम का आपका कौन सा फेवरेट गाना है। टेल मी ऑन इंस्टा एट आर जे मिर्ची सिद्धि, SIDDHI। और तब तक के लिए सलाम इश्क का मेरा दिल, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
0: Namaste, New Jersey. Frontier Ras is now open in Edison, New Jersey. From handloom saris and bridal couture to menswear and ready-to-wear, discover a 70-year legacy of Indian craftsmanship. The USA flagship store of Frontier Ras is now open at 1655 Oak Tree Road, Edison.
3: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
4: कंधों से मिलते हैं, कंधे कदमों से कदम मिलते हैं।
0: हजारों लोग एक तिरंगा एक दिल, और इस फीलिंग का नाम है इंडिया डे परेड 2026।
5: संडे अगस्त 9th 1 PM onwards फ्रॉम इस्लिन टू एडिसन ऑन ओक ट्री रोड फीचरिंग लक्ष्मीराज सिंह जी महाराज, ऋचा अनिरुद्ध, सानिया मल्होत्रा एंड मोर। जॉइन द कल्चरल फेस्ट एंड मेला बिहाइंड उमिया धाम टेम्पल।
6: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
0: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन्स की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इस्लिन, न्यू जर्सी।
7: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
8: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
7: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
8: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इस्लिन।
9: This drive time is brought to you by Tanishq Jewelry. हर ड्राइव बनेगी यादगार।
0: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
10: कोहली goes down the ground, Kohli goes out of the ground.
0: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
11: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
0: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
12: एक ही होता है।
0: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

गरबा का मूड हो या ऑफिस का बोर्डम, दीप गुजराती स्नैक्स की बीट ही काफी है। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी और सूरती स्पेशल तीखा मिक्स भटानी कानी। एवरी बाइट में लगता है दैट यू आर डूइंग डांडिया एंड दैट टू विद फ्लेवर्स, स्पाइसी क्रंची और देसी फन, या जिसकी गूंज ना मिर्ची सिद्धी के स्टूडियो तक भी पहुंच जाती है। तो आज ही ट्राई कीजिए दीप गुजराती स्नैक्स, सूरत से आया फ्लेवर का फेस्टिवल, क्योंकि दीप खाओ तो जानो। तब तक के लिए सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: This hour is brought to you by Raj Jewels.
1: Sham Shandar, let's do non-tanky, have a funky time.
2: शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और स्वागत है आपका आज की इस खूबसूरत शाम में। वैसे खूबसूरत शाम के खूबसूरत गाने तो बज ही रहे हैं, लेकिन यार एक ऐसा खूबसूरत एल्बम निकला था जिसके सारे के सारे गाने अमेजिंग थे। 2007 की रिलीज्ड सलामे इश्क की मूवी का जो गाना है, सॉरी जो एल्बम है, उसके सारे के सारे गाने अमेजिंग थे यार। शंकर एहसान लॉय ने इस एल्बम को कंपोज किया था और इसके काफ़ी सारे गानों के बारे में हमने ऑलरेडी बात की है, लेकिन एक गाना है जो आपने रिक्वेस्ट किया है। जी हाँ, आदित्य पाटिल एडिसन में जो रहते हैं, उन्होंने एक गाना रिक्वेस्ट किया इसी एल्बम का, एंड दैट इज दिल क्या करे संग बाय अदनान सामी। वैसे तो यार दोस्तों, सलामे इश्क का टाइटल ट्रैक तो अमेजिंग था ही, लेकिन उसी टाइटल ट्रैक का एक अलग वर्जन बनाया गया था दिल क्या करे इस गाने में, अदनान सामी की मैजिकल वॉइस में। और एक खास बात थी इस गाने की कि यार इस गाने का जो पूरा मूड है, पूरा रोमांटिक मूड है, यू नो पूरा रोमांस ओवरलोडेड है इस गाने में, लेकिन उस रोमांस के वाइब को रखने के लिए यानी सेटअप करने के लिए रिकॉर्डिंग स्टूडियो में ना सिर्फ एक कैंडल जलाई थी ताकि एक नो अच्छा सा मूड सेट हो जाए और अदनान सामी एकदम हैप्पी ये गाना गा पाए, एकदम अमेजिंग मूड में, शाम वाले मूड में। और ऐसा ही कुछ हुआ, बस रिकॉर्डिंग स्टूडियो में एक कैंडल जलाई गई थी और उसी कैंडल की लाइट में अदनान सामी ने अपनी मैजिकल आवाज में ये गाना गाया। तो चलिए आदित्य के लिए बजाते हैं दिल क्या करे फ्रॉम द वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक एल्बम्स सलामे इश्क 2007 की रिलीज। वैसे दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा कोई एल्बम पता है जिसके सारे के सारे गाने आपको पसंद है तो टेल मी ऑन इंस्टा एट RJ मिर्ची सिद्धि SIDDH चाहे, क्योंकि बजाते हैं यार उस एल्बम के सारे गाने राइट हियर ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Milci.
1: Escabana, escabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La vieja la burga. Milci, burga.
2: Hello?
3: Hi. You... से आपके फोन पे फ्री कॉल है। अगर आप चाहते हैं कि अभी के अभी आपका बिल आधा हो जाए तो कृपया दो दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिल घर पे आए तो एक दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपके बिल में कोई भी गलती ना हो तो कृपया नौ दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपको बिल की पूरी पुष्टि चाहिए, समरी चाहिए, तो कृपया नौ नौ दबाइए। अगर आप चाहते हैं कि जो आपने कॉल करी है सिर्फ उसी का बिल आए तो दबाइए तीन तीन। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि दूसरा पड़ोसी कोई कॉल कर रहा है और उसकी कॉल आपके बिल में ना आए तो दबाइए छः छः। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिल आपके ही नंबर का आना चाहिए, किसी दूसरे का नहीं आए, तो दबाइए पाँच पाँच। धन्यवाद। अगर आपको बिल पेपर पे चाहिए, पेपर बिल चाहिए, तो दबाइए सात सात। धन्यवाद। अगर आप स्कीम लेना चाहते हैं और अडॉप्ट करना चाहते हैं इस स्कीम को अगले महीने से, तो दबाइए 3,07,739।
2: हेलो।
3: हाय, ये से फिर से आपके फोन पे कॉल है। अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में आपकी इस तरह की कॉल ना आए तो दबाइए 4,19,83,983।
4: मैं रेडियो मिर्ची से सर नवेद बोल रहा हूँ। आप क्या खेल खेले जा रहे हैं यार? अपने मोबाइल से कभी ये दबा रहे हैं, कभी वो दबा रहे हैं। आप थके नहीं हैं? आप रेडियो मिर्ची पे हैं? आपका
2: तो वही मैं सुधरा था, मतलब।
3: अगर आपको इस सबसे मजा आया हो तो कृपया दबाए 5,07,339,000। हो गया।
2: हाँ जी।
3: कुकड़ों को
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स पटाक।
6: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
7: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
8: Famous Indian astrologer Pandit Ramdev is now in New Jersey. Expert in palm reading, face reading, horoscopes and birth chart. Call Pandit Ramdev for all your astrological predictions on love, relationships, business and career. Call 732-366-6777.
9: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
10: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
9: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
11: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
12: मिस इंडिया लाए हैं लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
11: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
13: एट तनिष्क, नो टू डायमंड्स आर एग्जैक्टली अलाइक। They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
14: Oh no!
15: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट, ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स।
16: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं, सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक। मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस। रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर, आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2।
17: तेरा क्या होगा कालिया?
18: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
17: अब मिर्ची खा।
19: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

हर सीजन की अपनी एक पर्सनालिटी होती है और समर की पर्सनालिटी मुझे सबसे ज्यादा फिल्मी लगती है। शाम शांता लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और दिन लंबे होते हैं, शामें धीरे धीरे उतरती है और लगता ही नहीं कि घर जाने की कोई जल्दी है। पार्क्स में बच्चे खेल रहे होते हैं, कोई आइसक्रीम लेकर वॉक कर रहा होता है, कोई यार लॉन चेयर निकाल कर बस हवा इंजॉय कर रहा होता है। और मुझे ना समर की सबसे प्यारी बात ही यही लगती है कि ये सीजन हमें घर से बाहर निकलने का बहाना दे ही देता है। कोई ग्रैंड प्लान की जरूरत नहीं होती, कभी कभी बस एक छोटी सी इवनिंग ड्राइव भी पूरे दिन का मूड चेंज कर देता है। तो आज अगर घर जाते वक्त थोड़ा लंबा रूट मिल जाए तो शायद शॉर्टकट लेने की जरूरत ही नहीं। और बताइए दोस्तों, समर की कौन सी एक ऐसी चीज है जिसके बिना वो कंप्लीट ही नहीं लगता? आइसक्रीम, बारबेक्यू, लॉन्ग ड्राइव्स या सनसेट वॉक्स? डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI, क्योंकि यार मेरा तो कोई भी सीजन एक प्यारे से गाने के बगैर कंप्लीट ही नहीं लगता। तो चलिए बजाते हैं वही गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: ਮੈਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਖਰੀਦਣੇ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ।
3: I enjoy using inefficient and complex software, mama.
4: अरे मुझे कोई ट्रैक करे मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्राइवेसी का चिंता ही नहीं है रे बाबा।
5: अगर आप इनमें से नहीं हैं, तो आपके बिजनेस के लिए Zoho One सही है। Zoho One is an all-in-one integrated software suite जिससे आप अपना पूरा बिजनेस चला सकते हैं। Yes, your entire business. Zoho One is easy to use, साथ साथ प्राइवेसी और प्रोटेक्शन का भी बड़ा ध्यान रखता है। काम अनेक, सॉफ्टवेयर एक, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
6: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
7: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन्स की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का, साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी। स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इसलिन, न्यू जर्सी।
8: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
9: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
8: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
10: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी।
11: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइस।

0: Jersey. Conditions apply.
1: लिस्नर है मैं बैक टू बैक गाना सुनेगा
2: बैक टू बैक गाना सुनेगा
1: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: at 7:30 PM. Mirchi Time Check, RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels, best quality, best price.
1: Sham Shandar, let's do not donkey, have a funky time.
2: लाइफ में ना एक दोस्त ऐसा जरूर होना चाहिए जो आपकी आधी बात सुनकर ही बोल दे कि चलो निकल पड़ते हैं। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और ना ज्यादा रीजन पूछना, ना कोई कैलकुलेशन करना, बस साथ चल पड़ना। ऐसे ही वो दोस्त होते हैं जिनके लिए कहा जाता है कि दोस्तों में ना चलेबिलिटी देखनी चाहिए, क्योंकि यही वो दोस्ती होती है जिनकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। तो दोस्तों, अगर आप भी उस स्पेशल दोस्त के साथ निकल पड़ना चाहते हो फ्रेंडशिप डे मनाने या यादगार बनाने के लिए, तो आपके लिए आ रहा है दोस्ती स्पेशल जैमिंग नाइट 1.0, जहां होंगे लाइव बैंड, सोलफुल म्यूजिक, शायरी, डांस और एक डेलिशियस 3-course डिनर एक ही शाम में। इतने सारे मेमोरीज। डेट नोट डाउन कर लीजिए, August 7th शुक्रवार की शाम 7 बजे से लेकर रॉयल अल्बर्ट्स पैलेस में। और मिर्ची लिसनर्स के लिए तो एक अनोखा कॉन्टेस्ट, आपको बस आपके वो चलेबिलिटी वाले दोस्त के नाम पर टाइप करना है दोस्ती और उनके लिए एक प्यारा सा बॉलीवुड गाना डेडिकेट करना है। और हो सकता है अगले लकी विनर आप हो जिन्हें मिलेगा दोस्ती स्पेशल जैमिंग नाइट 1.0 के टिकट्स। तो जल्दी से टाइप कीजिए दोस्ती और अपने दोस्त के लिए बॉलीवुड गाना डेडिकेट कीजिए और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजिए 9033647244, या फिर आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हो @RJMirchiSiddhi SIDTHI। और अगर इस इवेंट के टिकट्स बुक करने हैं तो आपको कॉल करना है ज्योत्सना शर्मा को 7329972409, या फिर आप sulekha.com पर जाकर भी दोस्ती स्पेशल जैमिंग नाइट 1.0 के टिकट्स बुक कर सकते हो। और चलिए अब दोस्ती के नाम एक गाना जो हर जनरेशन के दोस्तों की प्लेलिस्ट में जरूर होना चाहिए, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Saad Jeeturaj. Only on Mirchi. It's hot.
1: Hi, my name is Peter Parker.
2: Okay then, Spider-Man brand new day aa gayi hai and for God's sake please theater mein jaakar hi dekho is what Jeeturaj will tell you kyunki is film mein kahi chhoti chhoti aisi cheeze hain especially jab characters aapas mein baat karte hain to unki whispers unka pyar unka gussa wo theater mein jo maza deta hai wo kahi bhi nahi dega and for God's sake kisi se bhi story mat suno don't take any spoilers film mein kahi aisi cheeze hain jo tere ko itna surprise kar jayengi
3: spiders have three life cycles
2: I just can't begin to tell you I'll tell you the biggest thing. Spider-Man में विलन कौन है यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर सफोकेट होने लगता है क्यों स्पाइडरमैन अपने आप में घुटने लगता है ये रीजन उस विलन पर जाकर रुकता है I'm not going to tell you who it is. Also, तेरे में से कई लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात जेकब बैटनो also MJ अर्थात जेंडाया and Peter Parker यानी टॉम हॉलैंड in this film it's a little different. In fact, I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो ऑल्सो देयर इज अ पर्टिकुलर सीन बिटवीन जॉन बर्नथॉल अर्थात फ्रैंक कैसल एके पनिशर एंड टॉम हॉलैंड अर्थात पीटर पार्कर जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा ऑल्सो इफ यू हैव किड्स अराउंड यू एंजॉय इट फुल्ली क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं तालियां बजाते हैं एंड इट्स ऑल रिक्वायर्ड इन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बट आई मस्ट गिव यू अ डिस्क्लेमर अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्म में नहीं देखी है तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतूराज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है ओ ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माई रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतूराज जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई है जीतूराज ने वो क्या है ओके आई टोल्ड यू इंस्टाग्राम मिर्ची जीतूराज फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बाय द वे कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या जेंडाया एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है फॉर गॉड सेक ब्रो अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रेकमेंडेड बाय जीतूराज विद फोर मिर्चीज
0: साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: Sirf happy friendship day kehke kaam mat chalao. Get ready for the ultimate friendship day celebration. Jyot Sinha and Tarun Sharma of Cultivate Talents Unlimited present Dosti Special Jamming Night 1.0. Live band and Bollywood singers, shayari or non-stop open dance floor.
7: And the best part, sirf $65 mein 3-course dinner aur dher sari masti. Friday, August 7th, 7 PM at Royal Albert's Palace, New Jersey. Tickets available on sulekha.com or call 732-997-2409.
8: Suno brides, agar apni shaadi mein लगना है एकदम क्वीन
9: तो आइए फैशन क्वीन यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज
8: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन
9: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड इजलिन
10: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
11: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155 लॉग ऑन टू lionmtg.com
12: दिस ड्राइव टाइम इज ब्रॉट टू यू बाय तनिष्क ज्वेलरी हर ड्राइव बनेगी यादगार
13: तेरा क्या होगा कालिया
14: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार
13: अब मिर्ची खा
15: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट

0: की टाइम।
1: शाम शाम दालक सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि और इसी प्यारी सी एनर्जी के साथ आई एम साइनिंग ऑफ फॉर टुनाइट। और वैसे तो हमने आज थोड़ी लोकल, थोड़ी फिल्मी, थोड़ी ओटीटी और बहुत सारी नॉस्टैल्जिया शेयर की है और होप आज की जो आपकी शाम है थोड़ी सी लाइटर और ज्यादा फिल्मी बन गई हो। और इसी के साथ कल मिलते हैं फिर एक बार विथ नई गपशप और नए सॉन्ग रिक्वेस्ट। तो अपनी सॉन्ग रिक्वेस्ट की लिस्ट रेडी रखना, सेंड मी ऑन इंस्टा @ RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और आप कहीं ना जाइए क्योंकि मिर्ची रोशी आने वाली है लव के नए फंडे लेकर। तो तब तक के लिए सुनते रहिए मिर्ची, इट्स हॉट।

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: यार तू चिल कर, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है? आई लव यू अ लॉट और मैं चाहता हूँ कि तू मेरी फैमिली को मिले,